एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 51 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे विविध भारती से हिंदी समाचार, और उसके तुरंत बाद होगा वंदन मार कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महात्मा बुद्ध का ये कथन है कि हर दिन को ऐसी जियो जैसे आज ही तुम्हारी नई शुरुआत हुई हो। अतीत को क्षमा करो, भविष्य पर विश्वास रखो और वर्तमान में मुस्कुराओ। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो

हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, मर कर भी अमर

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा की ठीक बात यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान भाग 207। 6:45 पर कार्यक्रम होगा संगीत सरिता श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी आज प्रसारित होगी। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं 6:45 पर। सुबह 7 बजे का समय है भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का। सुबह 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम ही राही प्यार के और 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर और सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होगा। फिल्मकार मणिरत्नम पर केंद्रित होगा ये कार्यक्रम। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए सेहतनामा दांतों की देखभाल। इस विषय पर डॉक्टर जयेश गोगे से यूनुस खान की बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। सुबह 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम और दिन में 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल। सुरीला सफर ये कार्यक्रम सुनिए दिन में 1 बजे से और दिन में 2 बजे कार्यक्रम होगा त्रिवेणी। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे सदा बहार नगमे। दिन में 3 बजे विशेष सखी सहेली कार्यक्रम होगा। इसमें आप सुनेंगे अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी से ममता सिंह की बातचीत। जी हाँ, दिन में 3 बजे सखी सहेली और ये कार्यक्रम लाइव होगा। याद रखिए दिन में 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी से ममता सिंह की बातचीत। 4:00 पिटारा के अंतर्गत सेल्युलॉइड के सितारे बांसुरी वादक पारस नाथ से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। 5:00 कार्यक्रम होगा छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन और 7:00 जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। रात 8 बजे का समय है हवा महल कार्यक्रम का। सुनिए झलकी ससुराल का नौकर। लेखक हैं संतोष श्रीवास्तव और निर्देशक राकेश धुंडियाल। रात 8:15 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक। रात 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए और रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक और अभिनेता राज कपूर पर।

रात 10 बजे कार्यक्रम होगा छाया गीत। रात 10:30 पर ढलती जाए रात ये कार्यक्रम और रात 11 बजे रंग तरंग। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 207।

श्री राम के प्रेम में शिथिल पड़ गए अयोध्यावासी। मात्र दो ही कोस चल पाए थे कि दिन ढल गया। अतः उपयुक्त स्थान देख सबने बिना खाए पिए वहीं रात्रि विश्राम किया। उस रात सीता जी ने स्वप्न में देखा कि प्रभु के वियोग में भरत संतप्त शरीर लिए पूरे समाज के साथ वहां पधारे हैं। सभी लोग उदास और दुखी हैं। साधुओं की सूरत बदली हुई है। सीता का स्वप्न सुनकर श्री राम व्यथित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि ये स्वप्न अच्छा नहीं है, अवश्य ही कोई अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा। चित्त की शांति के लिए उन्होंने स्नान आदि करके त्रिपुरारी का पूजन तथा साधु संतों का सम्मान किया। देवताओं मुनियों आदि का वंदन कर श्री राम उत्तर दिशा में देखने लगे, जिधर आकाश में धूल छा रही थी। पशु पक्षी आश्रम की ओर भागते आ रहे थे। मन में चिंता हो आई, क्या बात है। उसी समय कोल फीलों ने भरत शत्रुघ्न के आगमन का समाचार सुनाया। श्री राम हर्षित हो गए। फिर ये सुनकर कि भरत शत्रुघ्न के साथ चतुरंगिनी सेना भी है, शंका हुई कि इस प्रकार उनके आने का क्या कारण हो सकता है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 207।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है
2: FM 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए जानिए आज और कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। पहले एक नजर आज के प्रसारणों पर। आज सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। आकाशवाणी के हिसार केंद्र से ही हम प्रसारित करेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। समय रहेगा सुबह 7:40। 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेगा समाचार प्रभात और 8:15 पर होंगे अंग्रेजी समाचार। 8:30 पर विविध भारती के प्रसारण आप सुन सकेंगे। 9:00 भारत के गूंज और 9:30 आज के फनकार।

आज सुबह 10 बजे आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम नमस्ते हिसार आप सुनेंगे। 11 बजे विविध भारती से सुनिएगा रंग तरंग और 12 बजे यादों की महफिल। 1:05 पर प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे। 1:10 पर आप सुनेंगे विविध भारती की गीतमाला। 2 बजे राष्ट्रीय हिंदी समाचार। 2:30 बजे विविध भारती से सदाबहार नगमे फिल्मी गीत। 3 बजे सखी सहेली और 4 बजे हालो फरमाइश कार्यक्रम आप सुन सकेंगे।

आज शाम 5 बजे आकाशवाणी के हिसार केंद्र से सुनिएगा ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ही फरमाइश, 6 बजे हिंदी समाचार, कार्यक्रम रूपरेखा 6:05 पर और प्रादेशिक समाचार 6:10 पर। भक्ति संगीत हम आपके लिए प्रसारित करेंगे 6:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का अगला भाग आप सुन सकेंगे 6:30। 7 बजे सुनिएगा किसानवाणी कार्यक्रम और 7:30 बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम हरे गांव।

8 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम लोकमंच। 8:30 बजे खुला आकाश के अंतर्गत सुनेगा यादों के झरोखे से। राष्ट्रीय हिंदी समाचार होंगे 8:45 पर। विविध भारती के प्रसारण आप सुनेंगे 9 से 10 बजे तक।

10 बजे सुनेगा व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, और 11 बजे राष्ट्रीय हिंदी समाचार और अंग्रेजी में समाचार होंगे।

कल की सुबह की सभा का आगाज होगा 5:55 पर। 6 बजे हिंदी में समाचार होंगे। 6:05 पर होगा वंदनवार कार्यक्रम। कार्यक्रम रूपरेखा सुनेगा 6:45 पर। संस्कृत समाचार 6:55 पर। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 7 बजे और 7:05 पर आप सुनेंगे। हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग प्रसारित होगा 7:10 पर। सुप्रभात हम लेकर आएंगे आपके लिए कल सुबह 7:40 पर। समाचार प्रभात का वक्त होगा 8 बजे। 8:15 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 8:30 बजे विविध भारती के प्रसारण हम आपको सुनवाएंगे। दस बजे सुनिएगा रोज की तरह कल भी नमस्ते हिसार कार्यक्रम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। 11 बजे विविध भारती से रंग तरंग। 12 बजे यादों की महफिल। 1:05 पर हिंदी प्रादेशिक समाचार। विविध भारती की गीतमाला 1:10 पर। 2 बजे अंग्रेजी में समाचार होंगे। 2:15 पर हिंदी समाचार आप सुनेंगे। 2:30 बजे विविध भारती से सदाबहार नगमे प्रसारित होंगे और 3 बजे सखी सहेली आप सुनेंगे। 4 बजे का वक्त होगा कार्यक्रम आज के मेहमान का जो आप सुनेंगे विविध भारती से। कल शाम 5 बजे आकाशवाणी के हिसार केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड। 6 बजे हिंदी समाचार कार्यक्रम रूपरेखा 6:05 पर। प्रादेशिक समाचार 6:10 पर। भक्ति संगीत का समय होगा 6:20। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का अगला भाग 6:30 बजे प्रसारित होगा। 7 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम खेती किसाना सिद्धि। 7:30 बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम म्हारे गांव। फिल्म संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा कल 8:00 बजे। 8:30 बजे हरियाणा के गलियारे से ये कार्यक्रम सुन सकेंगे।

0: 8:45 पर राष्ट्रीय हिंदी समाचार सुनिएगा। 9 बजे अंग्रेजी में समाचार होंगे। 9:15 पर विविध भारती से आपके लिए चित्रलोक कार्यक्रम होगा। 10 बजे सुनिएगा व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। और सभा के अंत में यानी रात 11 बजे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है।
1: बच्चों की एक अलग दुनिया होती है। और यदि आपको चाहिए इस दुनिया में एंट्री तो ढूंढिए अपने भीतर छुपे बच्चे को।
2: Aeroplane, aeroplane, up in the sky. Where are you going? Flying so high. Over the mountain, over the sea. Aeroplane, aeroplane, please take me.
0: बचपन की मुस्कुराहटों और गुदगुदाहटों से भरा कार्यक्रम बाल सभा
1: हर रविवार सुबह 10:30 पर
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
3: अर्ज किया है राजे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। राजे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे राजे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने राजे को समझाया,
4: अरे बुद्धू मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
1: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
0: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
1: हर मंगलवार शाम 5 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
5: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
1: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
0: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है
1: तो कोई संगीत का शिरोमणि,
0: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए आपके घर में आपके बेहद करीब।
1: कार्यक्रम एक शख्सियत
0: हर सोमवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
0: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.3 MHz पर। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और उसके तुरंत बाद हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्यशश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमार भारतदेशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेशसचिवः विक्रम मिश्री अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेशव्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपतेः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागरादि नीतिषु म्यांमार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपति भवने म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ति राष्ट्रपतेः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यांमार देशः भारतस्य दक्षिण पूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्नास्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक सम्बन्धान् दृढयिष्यति। वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीगोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः

0: नूतना पणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धि भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशत 98-मिता शुल्कमुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: Of our shared future.
0: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षताम् कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः, प्रवक्ता च डॉक्टर संवित पात्रावर्यः नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य 12 वर्षाणां सेवायाः विषये, संघटनात्मक विस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
4: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
5: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से

0: भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरू भाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defense, border management and culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, the Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India and the US have finalized most elements of the first phase of the bilateral trade agreement and negotiations are now focused on a few minor issues, commas and full stops. He said that the US team is in New Delhi to hold talks on finalizing the first phase of bilateral trade agreement BTA. The talks will take place in New Delhi from today till Thursday. India's chief negotiator is Darpan Jain, additional secretary in the Department of Commerce, while the US team is led by its chief negotiator, Brendan Lynch. 5 newly appointed Supreme Court judges will take oath today. Chief Justice of India, Suryakant, will administer the oath of office to the judges. President Draupadi Murmu, after consultation with the Chief Justice of India, has appointed 5 new judges to the Supreme Court. According to a notification issued by the Law Ministry, Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, Justice Sheel Nagu, Chief Justice of Bombay High Court, Justice Shri Chandrasekhar, Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, Justice Sanjeev Sajdeva, and Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh High Court, Justice Arun Balli, have been elevated as Supreme Court judges. Senior Advocate Venkita Subramani Mohana has also been appointed as a judge

0: नई सुबह नए सवेरे की शुरुआत आकाशवाणी सार कार्यक्रम हरियाणवी लोकरंग के साथ। आज के लोकरंग के कलाकार हैं राजवीर शर्मा कमास खेड़िया वे साथी। कार्यक्रम की शुरुआत में यो रागनी
1: ए रचड़िया।

0: का कुछ तुम्हारा भी लेना चाहिए।
1: धर्मशाला पे मानस रहना चाहिए।

आदर कर ले, आदर कर ले त्याने शीश नवावे, तुलसी दासी इसे बंदिया ने ईश्वर रोज मिलावे। करे वो मर ब्रह्म पदवी पावे, गुरु मानस

घर घर आंदन की कदी प्रवाणी नहीं जान बिना इस दुनिया में मानस की का।

0: आज के लोक रंग के कलाकार हैं राजवीर शर्मा कमास खेड़िया वे साथी।
1: एरी रोटी तो टुकड़ा।

desi kavasari tamidina dellamallane

ये था आज का कार्यक्रम लोकरंग। दिन की अच्छी शुरुआत जोश उमंग और उत्साह के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ आज का लोकरंग कार्यक्रम समाप्त करने की दें अनुमति सारे बहन भाइयों ने। राम राम।

0: बच्चों की एक अलग दुनिया होती है। और यदि आपको चाहिए इस दुनिया में एंट्री तो ढूंढिए अपने भीतर छुपे बच्चे को।
1: एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग? फ्लाइंग सो हाई, ओवर द माउंटेन, ओवर द सी, एरोप्लेन एरोप्लेन प्लीज टेक मी।
2: बचपन की मुस्कुराहटों और गुदगुदाहटों से भरा कार्यक्रम बाल सभा,
0: हर रविवार सुबह 10:30 पर
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
0: नया बेहतर है
3: क्योंकि तुम ही हो,
2: किंतु पुराना बेहतरीन।
4: दिल चीज़ क्या है?
0: नया श्रेष्ठ है
3: केसरिया तेरा,
2: किंतु पुराना श्रेष्ठतम।
0: नया उत्कृष्ट है
3: तेरी गलियां,
2: किंतु पुराना अनमोल।
4: चुरा लिया है तुमने जो दिल था।
0: नया अनूठा है
2: किंतु पुराना अनुपम।
0: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे,
2: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में,
0: हर बुधवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। क्या आप परेशान हैं?
3: मैं परेशान, परेशान, परेशान, परेशान।
0: क्या आप खुश हैं?
4: आज मैं ऊपर।
2: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
5: पाप के नखरे नूचे कर दे।
0: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
6: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
2: या आप प्यार में हैं?
7: पहला पहला प्यार है।
0: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
8: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
2: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
0: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
2: कार्यक्रम संदेश आपके, गीत हमारे, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
9: FM एंड 102.3 MHz पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

एक नई सुबह, नई रोशनी और नई संभावनाओं के साथ आप सभी को सादर प्रणाम, सुप्रभात। श्रोताओं, जब रात की चुप्पी टूटती है और सूरज अपनी पहली किरण धरती को भेंट करता है, तो प्रकृति हमें याद दिलाती है हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। बात करें आज के मौसम की, तो सुहानी सुबह से शुरू हुआ आज का मौसम साफ और गर्म रहेगा। आज का तापमान 37 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और दिन में धूप खिली रहेगी।

और अब आज का सुविचार, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखना जान लेता है वही जीवन की परीक्षा में सदा उत्तीर्ण होता है। इसी विचार को अपने मन में संजोते हुए आगे के कार्यक्रम की ओर आइए बढ़ते हैं।

यहाँ तक कि एक दूसरे को नमस्कार करने में भी राम राम का प्रयोग करते हैं। अब हम उस दिव्य ग्रंथ के पाठ की ओर बढ़ रहे हैं जो मर्यादा, भक्ति और आदर्शों का मार्ग दिखाता है। आइए शांतिचित्त और श्रद्धा भाव के साथ श्री रामचरितमानस के पावन पाठ का श्रवण करें।

बहुबिधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतरधान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। अर्थात बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा कर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को चले। हर गण मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी, अति सभीत नारद पही आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। अर्थात शिवजी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वो अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम न विप बुनि राया, बड़ अपराध कीन्ह पल पाया, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। इसका अर्थ है, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिवजी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब आप शाप दूर करने की कृपा कीजिए, दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। निसिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धरिहि विष्णु मनुज तनु तहिया। अर्थात तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो, तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होइहु मुकुत नपुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निसाचर काल ही पाई। अर्थात युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वो दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कलप एहि हेतु प्रभु, लीनहु मनज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भूभिभार।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुप्रभात, और सुप्रभात में अब एक प्रेरक कहानी।

बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में एक संत रहते थे। उनका पहनावा साधारण, जीवन सरल और विचार बहुत ऊंचे थे। लोग उन्हें महान संत कहते थे, पर वो खुद को केवल सेवक मानते थे। संत का दिन प्रार्थना से शुरू होता, सेवा में बीतता और आत्मचिंतन में समाप्त होता। आश्रम के पास ही एक गांव था। गांव के लोग अक्सर संत के पास अपनी समस्याएं लेकर जाते। कोई धन चाहता, कोई पद, कोई बदला तो कोई सफलता। संत सबकी बात ध्यान से सुनते और फिर मुस्कुराकर कहते, जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो भीतर ही छिपा है। पर लोग ये बात समझ नहीं पाते थे। एक दिन गांव में एक बहुत धनी व्यापारी आया। उसके पास धन था, प्रतिष्ठा थी, पर मन में शांति नहीं थी। वो संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज मैं सब कुछ पाकर भी दुखी हूं, मुझे बताइए सुख कैसे मिलेगा। संत ने व्यापारी को ध्यान से देखा और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे साथ जंगल चलना। व्यापारी हैरान हुआ पर मान गया। अगली सुबह दोनों जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाकर संत ने व्यापारी से कहा, इस पेड़ को देखो, ये फल देता है, छाया देता है, पर बदले में कुछ नहीं मांगता। फिर आगे बढ़े, इस नदी को देखो, ये सबको जल देती है पर अपना नाम नहीं पूछती। व्यापारी चुपचाप सुनता रहा। अंत में संत बोले, अब बताओ इनमें और तुम में क्या अंतर है। व्यापारी बोला, मैं तो केवल अपने लिए जीता हूं। संत ने मुस्कुराकर कहा, यही दुख का कारण है। जब जीवन केवल मैं तक सीमित हो जाता है तो सुख बाहर चला जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीना सीख लेता है वही सच्चा सुख पाता है। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसका घमंड टूट गया और जीवन की दिशा बदल गई। कुछ समय बाद वही व्यापारी गरीबों की सहायता करने लगा, विद्यालय बनवाए, अनाथों का सहारा बना। एक दिन वो फिर संत के पास आया और बोला, महाराज

अब मेरे पास पहले से कम धन है पर मन में अपार शांति है। संत ने कहा, जब मन भर जाता है तो वही सबसे बड़ा धन होता है। ये कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि संत होना वस्त्रों से नहीं, विचारों से होता है। सच्चा सुख संग्रह में नहीं, सेवा में है। जब अहंकार झुकता है तभी आत्मा उठती है। जीवन का उद्देश्य केवल पाना नहीं, देना भी है। संत हमें ये नहीं सिखाते कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि ये सिखाते हैं कि दुनिया में रहकर मानव बनो। अगर हर व्यक्ति अपने भीतर के संत को पहचान ले तो ये संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा।

0: चाहिए सुबह सुबह ताजा खबरें।
1: और मिसेज वर्मा को सिर्फ संगीत।
2: मैं अलबेली घूमू अकेली।
0: दादा दादी को मिल जाए कोई ऐसा जो उनके साथ उनके समय की बातें करे।
3: अभी न जाऊं छोड़ कर।
1: और बच्चों के लिए जरूरी है ज्ञान।
0: कैसा हो यदि सब कुछ मिले एक ही जगह एक ही समय पर।
1: सुनिए संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार
0: रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
0: श्रोताओं आज की ये सुबह आपके मन में सकारात्मकता भर दे, आपके विचारों को ऊंचाई दे और आपके कर्मों को दिशा दे। इसी शुभकामना के साथ कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सुबह नए विचारों के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी हिसार।

यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी समाचार होंगे।

0: घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
4: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी

0: श्री ऑनलाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति ऑनलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमेरिका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2-3 ब्रांचेस।
1: वही प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi

0: फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
1: वैली 4 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आए 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पंवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित लद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को

0: आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर-18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउंग क्लाइंग सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup. Myanmar President Ooi Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defense, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
2: The Foreign Secretary said that both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in areas of trade and investment, health, education, energy, and critical technologies like artificial intelligence. The Myanmarese leader, accompanied by a high-level delegation, will travel to Mumbai today for business and industry interactions and site visits. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said, India and the United States have finalized most elements of the first phase of the bilateral trade agreement, and negotiations are now focused on a few minor issues, commerce and full stops. We have a report.
4: Commerce Minister Piyush Goyal said that the team from United States is in New Delhi to hold talks on finalizing the first phase of bilateral trade agreement, BTA. The talks

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों, आज संगीतकार इलैयाराजा का जन्मदिन है, उन्हें भी हम शुभकामनाएं देते हैं। संगीतकार, संगीत रचयिता, संगीत संयोजनकर्ता, कंडक्टर, ऑर्केस्ट्रेटर, बहुवाद्य यंत्रक, वादक, गीतकार और पार्श्व गायक हैं वो। और मुख्य रूप से उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों के लिए कार्य किया है और उन्हें विपुल संगीतकारों में से एक माना जाता है। 39 वर्षों से अधिक के अपने करियर में उन्होंने 8600 से अधिक गीतों की रचना की। 9 भाषाओं में लगभग 1523 फीचर फिल्मों के लिए उन्होंने संगीत दिया है और लोग उन्हें प्यार से मास्टरो कहते हैं। तो एक बार फिर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। और अब शमिता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, अमिताभ बच्चन की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत इलैयाराजा का।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमार साहब कह रहे थे कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साथ एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना तो आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झंकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

1956 में मद्रास यानी चेन्नई में जन्मे मणिरत्नम ने अपनी पढ़ाई मद्रास यूनिवर्सिटी में की और उसके बाद मुंबई के बजाज इंस्टीट्यूट से ली मैनेजमेंट की डिग्री। फिल्मों की दुनिया में आने से पहले मणिरत्नम एक प्रबंध सलाहकार थे। मणिरत्नम के पिता गोपाल रत्नम और भाई वेंकटेश्वरन भी फिल्म निर्माण से जुड़े हुए थे। जाहिर है ऐसे में फिल्म माध्यम से उनका लगाव होना स्वाभाविक

कन्नड़ में थी, पल्लवी अनुपल्लवी। इस बीच उनकी तेलुगु और मलयालम में भी फिल्में आई लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई। मणिरत्नम सिनेमा की दुनिया में सबका ध्यान खींचने में कामयाब रहे 1986 में फिल्म मौना रागम बनाकर। इसके सितारे थे मोहन, रेवती और कार्तिक। मणिरत्नम की अगली फिल्म थी गॉडफादर से प्रभावित

नायकन जो 1987 में आई। इस एक फिल्म ने आभास दे दिया कि मणिरत्नम आने वाले दिनों में फिल्म निर्माण और निर्देशन के नायक बनने वाले हैं। इस फिल्म ने जहां प्रतिभा के धनी कमल हासन को दिलाया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार, वहीं मणिरत्नम को इस फिल्म ने पहुंचा दिया सिनेमा के अग्रणी निर्देशकों की पंक्ति में।

1988 में आई अग्नि नक्षत्रम, जिसने तमिल सिनेमा को दिया सिनेमा का एक नया विजुअल स्टाइल। 1989 में मणिरत्नम लेकर आए गीतांजलि और फिर 1990 में आई उनकी एक दिल को छू लेने वाली फिल्म अंजलि। लेकिन पूरे भारत में मणिरत्नम को ख्याति दिलाई कश्मीर के आतंकवाद की पृष्ठभूमि पर बनी एक लव स्टोरी रोजा ने।

1993 में निर्मित थेरुडा थेरुडा नाकाम रही, लेकिन ठीक दो बरस बाद मुंबई के दंगों की पृष्ठभूमि पर मणिरत्नम ने बनाई फिल्म बॉम्बे।

रत्नम की गिनती भारतीय सिनेमा के बेहद सम्मानित फिल्मकारों में होती है। उनके कथोपकथन में बारीकी और गहराई दोनों होती है। मणिरत्नम की फिल्मों का गीत, संगीत और नृत्य पक्ष भी प्रभावशाली फिल्मांकन के लिए हमेशा चर्चा में रहा है। 2004

सिनेमा में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए मणिरत्नम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार सम्मानित और पुरस्कृत किया जा चुका है।

आज की फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने फिल्मकार मणिरत्न पर। विविध भारती की ओर से ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गो

0: लेने। आप कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण FM 102.3 MHz पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है।

नमस्कार श्रोताओं, नमस्ते हिसार सुनने वाले आप सभी दोस्तों को मेरा यानी ऋतु कौशिक का नमस्कार। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। सुबह की सुनहरी रोशनी में उम्मीदों की ताजी हवा के साथ आपके अपने रेडियो पर आपके अपने शहर की आवाज लेकर हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिसार। जहां हर धड़कन में शहर बसता है, जहां हर खबर में अपनापन झलकता है और जहां हर सुबह होती है मुस्कान, जानकारी और सकारात्मकता से भरी हुई। मैं हूं आपकी रेडियो साथी ऋतु कौशिक और अगले कुछ पलों तक हिसार की हर हलचल की आवाज पहुंचेगी आप तक। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की उन खबरों पर जो आपके जीवन से जुड़ी हैं, जो आपके दिन को दिशा देती हैं और जो बताती हैं कि हिसार आज किस राह पर आगे बढ़ रहा है। तो चलिए जानते हैं हिसार आसपास की आज की खास हलचलें।

पहले खबर, सोलर पैनल लगवाने के लिए उपभोक्ता करें मिस्ड कॉल। ये खबर आप ही के लिए है दोस्तों। सोलर पैनल कनेक्शंस की संख्या बढ़ाने में बिजली निगम एक के बाद एक योजनाएं तैयार कर रहा है। अब नई योजना के तहत एक हेल्पलाइन नंबर 9888101912 जारी किया है, जिस पर मिस्ड कॉल करते ही बिजली निगम के अधिकारी संबंधित उपभोक्ता से बातचीत करेंगे और सोलर पैनल की हर तमाम जानकारी साझा करेंगे। यही नहीं, उपभोक्ता चाहे तो बिजली निगम की टीम घर आकर सोलर पैनल लगवाने में भी मदद करेगी। है ना कमाल की बात। कारण यह है कि आमजन को सोलर पैनल से संबंधित अभी कम जानकारी है, जिसमें सबसे खास बिंदु वेंडर का कॉलम है, जिसे भरना अनिवार्य होता है ताकि वेंडर उपभोक्ता से संपर्क कर सके। जैसे ही कोई उपभोक्ता सोलर पैनल लगवाने के लिए मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल करेगा, तो संबंधित क्षेत्र के बिजली निगम के अधिकारी उपभोक्ता से संपर्क करेंगे। तो शुरू कीजिए अपनी मिस्ड कॉल।

दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से जेईई एडवांस का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया, जिसमें हिसार के होनहारों ने कमाल कर जिले का नाम रोशन किया है। हिसार के अर्णव गांधी ने ऑल इंडिया स्तर का 36वां रैंक हासिल कर जिले का मान बढ़ाकर पहले पायदान पर कब्जा जमाया, जबकि दूसरे स्थान पर आरव गोयल ने ऑल इंडिया स्तर पर 76वां रैंक, तीसरे स्थान पर प्रेमनगर निवासी ख्वाहिश डालमिया ने 1003 रैंक और चौथे स्थान पर गांव कुलेरी स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का छात्रवंश रहा, जिसने 6361वां रैंक हासिल किया। होनहारों के परिणाम जारी होते ही घर के बाहर परिचितों को बधाई देने के लिए तांता लग गया और हमारी तरफ से भी जितने भी ये परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए और इन्होंने सफलता प्राप्त की उन सबको बहुत सारी बधाई।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म जहां प्यार मिले से मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 31 मई को मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर जी का निधन हो गया और 28 मई को शायरी के बेताज बादशाह बशीर बद्र साहब ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज के इस कार्यक्रम में ज्यादातर गीत आप सुन सकेंगे सुमन कल्याणपुर के सुरीली आवाज में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब वक्त हो चला है आपके दिमाग के तो घोड़े दौड़ाने का। आप मेरा इशारा तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, अब वक्त आ गया है आपसे सवाल पूछने का, आपकी भागीदारी का वक्त आया है कार्यक्रम में, कि आप सिर्फ सुनते ही नहीं है इस कार्यक्रम को, जुड़ने का भी वक्त आ गया है आपका। और इसीलिए हमने ये प्रश्नों का सिलसिला शुरू किया था ताकि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमसे जुड़ें। हमारे जो कार्यक्रम फरमाइशों पर आधारित होते हैं, जो ईमेल पर आधारित हैं, व्हाट्सएप पर आधारित हैं, उनसे तो आप हमसे जुड़ते ही हैं, अपने पसंद का गीत सुनते हैं। लेकिन ये जो एक कार्यक्रम है नमस्ते हिसार, इसमें प्रश्नों का जो सिलसिला है उसमें आप जुड़कर ना सिर्फ अपने ज्ञान को थोड़ा सा मजबूती देते हैं बल्कि अपनी पसंद का गीत सुनने का भी इसमें मौका मिलता है। आपके जो नाम है वो भी हम प्रसारित करते हैं और सबसे ज्यादा हमें खुशी होती है कि आप लोग इतने ध्यान से इतने वक्त निकालकर इस प्रोग्राम को सुनते हैं और तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं और आलोचनाओं का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए, वक्त हो चला है। नियम आपको पता ही है कि सबसे पहले जो हमारे श्रोता जवाब देंगे और सही जवाब देंगे उनकी पसंद का हम गीत सुनवाते हैं। बाकी सभी जितने भी हमारे श्रोता साथी हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है उनके नाम हम प्रसारित करते हैं। तो पहला सवाल है, प्रसिद्ध निर्देशक मणि रत्नम की फिल्म दिल से में शाहरुख खान के साथ किस अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाई थी? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, प्रसिद्ध निर्देशक मणि रत्नम की फिल्म दिल से में शाहरुख खान के साथ किस अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाई थी? और दूसरा प्रश्न है कि पंडित रविशंकर को किस कला के लिए जाना जाता है? पंडित

रविशंकर को किस कला के लिए जाना जाता है? जल्दी से अपना सही जवाब व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है? अगर नहीं है तो हम फिर से बता देते हैं, 9729253272, 9729253272। हम इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का। आप सुनिए ये गीत।

0: खत भिजवाया और ईंट जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे राजे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने राजे को समझाया,
1: अरे बुद्धू मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
2: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
1: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
2: हर मंगलवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की,
3: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
2: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की,
1: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है,
4: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता,
2: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है,
5: विल यू बी रिमेम्बर्ड एज अ ग्रेट साइंटिस्ट सेड ला थॉमस अल्वा एडिसन,
1: कोई कला में उत्कृष्ट है,
2: तो कोई संगीत का शिरोमणि,
1: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए आपके घर में आपके बेहद करीब।
2: कार्यक्रम एक शख्सियत
1: हर सोमवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
1: क्या आप परेशान हैं?
6: मैं परेशान, परेशान, परेशान, परेशान।
2: क्या आप खुश हैं?
7: आज मैं ऊपर।
1: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
2: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
8: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
1: या आप प्यार में हैं?
9: पहला पहला प्यार है।
2: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
10: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
1: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
2: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
1: कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
11: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
12: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
11: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
12: तो फिर सही नंबर,
11: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
12: आपने तो बचा लिया दीदी।
11: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
13: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
1: हर सुबह एक मौका है
2: खुद को कल से बेहतर बनाने का।
1: कोई है जो आपको एहसास दिलाता है
2: कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का।
1: कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत
2: आकाशवाणी हिसार के साथ।
14: राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
1: सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात
2: रोज सुबह 7:40 पर
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
15: दोस्तों आप सुन रहे हैं नमस्ते हिसार कार्यक्रम। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हिसार की मिट्टी दोस्तों सिर्फ फसलें नहीं उगाती, ये मिट्टी हौसले, संघर्ष और सफलता भी पैदा करती है। रोज की तरह अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हिसार की उस शख्सियत से जिसकी कहानी सपने देखने वालों को हिम्मत देती है और हार मानने वालों को फिर से खड़ा होना सिखाती है। आइए जानते हैं हिसार के एक ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जो हमारे शहर का गर्व रहे हैं।

हिसार के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्री वाई के लॉरेंस, जिनका जन्म 2 जून 1923 को हिसार जिले में हुआ था। वो अब्दुल्ला खान के पुत्र थे और उन्होंने लाहौर के पास स्थित रायवर्ड मिशन स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट और उर्दू में बी ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। इसके अलावा श्री लॉरेंस ने चंडीगढ़ से होम्योपैथिक चिकित्सा की डिग्री भी प्राप्त की। श्री लॉरेंस का विवाह एग्नेस से हुआ और इस दंपति को एक पुत्र माइकल परवेज और एक पुत्री परवीन प्रिसिला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। श्री वाई के लॉरेंस हिसार के एक प्रमुख व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके नाम बहुत सारे कार्य और बहुत सारी उपलब्धियां दर्ज हैं। श्री लॉरेंस ने अपने शुरुआती दिनों से ही हिसार जिले में चर्च की गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। यहाँ वो न केवल एक स्थानीय उपदेशक थे बल्कि अन्य सामाजिक कल्याणकारी कार्य भी करते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने गांव के बच्चों के उत्थान में गहरी रुचि ली थी। वो अक्सर उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते थे और छात्रवृत्तियां भी प्रदान करते थे। बहुत सारे बच्चों की शिक्षा का प्रबंध उन्होंने अपने स्तर पे किया था। वो हिसार के उन दुर्लभ व्यक्तियों में से थे जिन्होंने न केवल मद्रास में आयोजित प्रथम MCI आम सम्मेलन में भाग लिया बल्कि उसके बाद देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित ऐसे 8 सम्मेलनों में भी भाग लिया। श्री लॉरेंस के विश्वास के योद्धा नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। इसका विधिवत विमोचन 6 अक्टूबर 2001 को नई दिल्ली में किया गया था। यह पुस्तक 1928 से हिसार के ईसाइयों के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए श्री वाई के लॉरेंस को 1981 में अखिल भारतीय ईसाई संघ का उपाध्यक्ष विधिवत चुना गया था। वो 2 साल तक हिसार जिले के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। समय समय पर विभिन्न गतिविधियों में वो लिप्त रहते थे और समाज के जितने भी जनहित के कार्य हैं वो करते रहते थे और उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था, खासकर उन अनाथ बच्चों के लिए जिनकी शिक्षा का बंदोबस्त नहीं हो पाता था और वो शिक्षा से वंचित रह जाते थे। ऐसे व्यक्तित्व को हमारा नमन है।

रेडियो सेट्स टू रील्स 90 सालों से कनेक्ट है इंडिया की फीलिंग से, हर दौर की आवाज, हर जनरेशन का भरोसा, सेलिब्रेटिंग 90 इयर्स ऑफ आकाश।

0: बच्चों की एक अलग दुनिया होती है। और यदि आपको चाहिए इस दुनिया में एंट्री तो ढूंढिए अपने भीतर छुपे बच्चे को।
1: एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग? फ्लाइंग सो हाई, ओवर द माउंटेन, ओवर द सी, एरोप्लेन एरोप्लेन प्लीज टेक मी।
2: बचपन की मुस्कुराहटों और गुदगुदाहटों से भरा कार्यक्रम बाल सभा,
0: हर रविवार सुबह 10:30 पर,
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
0: ये आवाज है भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। ये आवाज है भारत की आजादी की।
3: At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: ये आवाज है भारतीय संस्कृति की।

0: ये आवाज है भारत के अदम्य साहस की।
1: At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range.
0: ये आवाज है नए भारत की। 90 वर्षों से भारत की आत्मा की आवाज आकाशवाणी।
2: दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते हिसार में और आपके जवाब हम तक पहुंच गए हैं। सबसे पहले हम आपको हमारे सही जवाब बता देते हैं। जो पहला प्रश्न हमारा था कि प्रसिद्ध निर्देशक मणिरत्नम की फिल्म दिल से में शाहरुख खान के साथ किस अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाई थी, इसका सही जवाब है मनीषा कोइराला। और जो हमारा दूसरा सवाल था पंडित रविशंकर को किस कला के लिए जाना जाता है, तो उसका सही जवाब है

सितार वादन के लिए। और हमारे आज के जो श्रोता हैं जिन्होंने जवाब भेजे हैं वो 7-8 की संख्या में हैं, लेकिन अफसोस कि जो सही जवाब भेजे हैं वो सिर्फ 2 हैं। क्या बात हुई हमारे श्रोताओं को, या तो दूसरा सवाल है वो समझ नहीं आया, या उन्हें कोई कंफ्यूजन हो गया। लेकिन फिलहाल जो 2 नाम हैं हमारे पास जो बिल्कुल सही जवाब उन्होंने दिए हैं, पहला नाम है गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा ने। आपके दोनों ही जवाब बिल्कुल सही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और अगला सही जवाब भेजा है गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, कार्तिक और वेदांश ने। आपको भी बहुत बहुत बधाई सज्जन जी, और क्योंकि सबसे तेज जवाब इन्होंने भेजा है इसलिए इनके पसंद पर हम सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर जी द्वारा गाया हुआ ये गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं नमस्ते हिसार। और ये जो प्रश्न हमने पूछा था मणिरत्नम जी के बारे में, ये यूं ही नहीं पूछा था। आप भी शायद जानते हो कि आज इनका जन्मदिन है। जी हाँ, 2 जून 1956 को जन्मे मणिरत्नम जी। और अपनी फिल्मों में बेहतरीन संगीत, शानदार कैमरा वर्क और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों के बोल्ड चित्रण के लिए जाने जाते हैं। आप जानते ही हैं कि एक मशहूर निर्देशक हैं और बहुत ही खूबसूरत फिल्मों का निर्देशन इन्होंने किया है। कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

पुरस्कार, फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने ज्यादातर दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनकी कई फिल्मों हिंदी में डब या सीधे बॉलीवुड के लिए बनाई गई हैं, और उनकी जो भी फिल्में बनाई गई हैं वो बेहतरीन हिंदी फिल्में हैं। और आप सबने देखी होंगी रोजा, जो आतंकवाद की पृष्ठभूमि पर बनी एक प्रेम कहानी जिसका संगीत ए आर रहमान ने दिया था। उसके बाद बॉम्बे, 1993 के मुंबई दंगों और हिंदू मुस्लिम संबंधों पर आधारित फिल्म है। इसके अलावा गुरु, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की ये फिल्म एक महत्वाकांक्षी व्यापार की कहानी थी। और दिल से, शाहरुख खान और मनीषा कोइराला अभिनीत ये फिल्म आतंक के साए में पनपे मोहब्बत को दिखाती है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड फिल्म निर्देशक मणिरत्नम जी को उनके जन्मदिन पर बधाई इस गीत के साथ।

एक और बॉलीवुड अभिनेत्री का जन्मदिन है आज। उनका नाम है सोनाक्षी सिन्हा। वो दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री पूनम सिन्हा की पुत्री हैं। उन्होंने 2010 में फिल्म दबंग से अपने करियर की शुरुआत की थी और कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। 2 जून 1987 को मुंबई महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ। करियर की शुरुआत में सोनाक्षी ने एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर काम शुरू किया था, लेकिन फिल्म दबंग में सलमान खान के ऑपोजिट शानदार रोल के बाद उनकी किस्मत बदल गई। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था और इसके बाद उन्होंने राउडी राठौर, सन ऑफ सरदार, दबंग 2, लुटेरा, मिशन मंगल और बहुत सारी फिल्मों में अभिनय किया। सोनाक्षी सिन्हा एक बेहतरीन अदाकारा है और लगातार 2010 से अब तक सक्रिय हैं। आइए सुनते हैं उनकी ही एक फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, ये खूबसूरत गीत सुना आपने फिल्म दबंग से। और अब नमस्ते हिसार के अंतिम सेगमेंट में बात करते हैं हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी और बहुत समृद्ध है। इसमें भाषा और साहित्य का बहुत बड़ा महत्व है। भाषा और साहित्य हमारे विचारों, भावनाओं और परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी। संस्कृत को भी कई भाषाओं की जननी माना जाता है। और भाषा सिर्फ बोलने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान भी होती है। हम अपनी भाषा में ही अपने मन की बात बहुत अच्छे से कह और समझ पाते हैं। हर क्षेत्र की अपनी अलग भाषा और बोली होती है, जो उसकी संस्कृति को दिखाती है। और हमें अपनी भाषा या बोली को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारी जो क्षेत्रीय बोलियां होती हैं या क्षेत्रीय भाषा होती है, उसे भी हमें अपने जीवन में उसी तरह उतारना चाहिए जैसे कि हम हिंदी को साथ में रखते हैं। साहित्य का मतलब होता है किताबें, कविताएं, कहानियां और लेख। हमारे देश में बहुत पुराना साहित्य है। वेद, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ हमारी संस्कृति का ही तो हिस्सा है। ये हमें अच्छे संस्कार और जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। मध्यकाल में कई महान कवि हुए, जैसे कबीर दास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी और मीराबाई। उन्होंने सरल भाषा में लोगों को भक्ति, प्रेम और अच्छे कर्मों की शिक्षा दी। आधुनिक समय में भी बहुत सारे बड़े लेखक हुए, जैसे प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, दिनकर, रविंद्रनाथ ठाकुर और भी बहुत सारे ऐसे लेखक जिन्होंने समाज की समस्याओं और मानवता के बारे में लिखा। भाषा और साहित्य के बारे में अगर हम कहें तो ये हमारी संस्कृति को बचा कर रखते हैं, हमें अच्छे संस्कार सिखाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, ज्ञान और विचार बढ़ाते हैं, देश की एकता को मजबूत करते हैं। भाषा और साहित्य हमारी संस्कृति की जान है। हमें अपनी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और साहित्य पढ़ना चाहिए, बहुत सारा पढ़ना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति आगे भी जीवित रहे और मजबूत बनी रहे। जैसा कि आजकल की जो पीढ़ी है उसको देखने में आ रहा है कि किताबें कम पढ़ते हैं, वो साहित्य को कम ध्यान देते हैं साहित्य पर, लेकिन उनके बीच भी साहित्य को थोड़ा और पॉपुलर करना या साहित्य के बारे में थोड़ा और उनको ध्यान आकर्षित करना हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को प्रेरित करें कि वो ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ें, साहित्य पढ़ें, कहानियाँ, उपन्यास, जो भी हमारे साहित्यकारों ने लिखा है और जिस विषय पे लिखा है, उन सारे विषयों को छुएं, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और यकीन मानिए, किताब पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है जो हमारे व्यक्तित्व के विकास में भी

हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बशीर बद्र साहब के इन्हीं अशार के साथ आज के इस कार्यक्रम में चाहते हैं इजाज़त। उम्मीद है आज की ये सुबह आपके लिए लाई होगी नई ऊर्जा, नई जानकारी, नई मुस्कान। याद रखिए, हर सुबह एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का और हर दिन कुछ अच्छा करने का। आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं पर इसी कार्यक्रम में, इसी अंदाज में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और कहते रहिए नमस्ते हिसार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते हिसार। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। लीजिए सुनिए विविध भारती के प्रसारण।

Oh,

0: चिन्ह क्या है।
1: बरसात की रात इस फिल्म से कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू और साथियों की आवाजों में साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा था और रोशन का संगीत।

प्रोग्राम रंगतरंग में अभी आप सुन रहे थे लकी अली की आवाज में ये गीत उन्हीं के एल्बम से अक्स एल्बम का नाम था, उन्हीं का संगीत और लकी अली द्वारा लिखा गया ये गीत। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम में। दीवाना एल्बम का नाम है, साजिद वाजिद का संगीत, फैज अनवर ने इस गीत को लिखा।

लकीर फॉरबिडन लाइन्स। इस एल्बम से ये गीत आप वीवा की आवाज में सुन रहे थे। महबूब ने इसे लिखा था और एआर रहमान का संगीत। जो तरह में ये अगला गीत लकी अली की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों से बात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: मैं हमेशा कहती हूँ, हम जिस स्तर से यहाँ तक पहुंचे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पोस्ट में हम रहे हैं, अपना अतीत को तो याद करते हैं, खुद के जैसा दूसरे इस चीज को ना झेले, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।
0: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने कल उच्च न्यायालय के 4 मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की।

रेशमा की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हीरो फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। यादों की महफिल आप सुन रहे हैं विविध भारती से।

0: याद आ रहा है तेरा प्यार, बप्पी लहरी की आवाज में ये था। आप डिस्को डांसर फिल्म से सुन रहे थे, अंजाम ने इसे लिखा और बप्पी लहरी का संगीतबद्ध ये गीत था। साथ ही आपको पता चल ही गया होगा कि यादों की महफिल में आज वो गीत जो यादों से जुड़े हैं, जहां किसी को याद किया जा रहा है। फिलहाल आपको ये भी याद दिला देते हैं,
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल। यही सुनिए चरस फिल्म से गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है, आनंद बख्शी ने इसे लिखा।
4: दिल

भरत भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें आज यादों से संबंधित यादों पर आधारित गीत आपको सुनाए जा रहे हैं।

0: कुछ दिल ने कहा। इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में आनंद बख्शी ने इसे लिखा, निखिल विनय का संगीत। और साथ ही आपको एक और खास बात याद दिला दें,
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: साथ ही आज की ये स्पेशल सखी सहेली को आप फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं, तो जरूर जुड़े हमारे साथ 3 बजे सखी सहेली में।

चलते ये पाँव छिल ना जाए और हम मिल ना जाए, कोई फरियाद न करना, तू मुझको याद न करना।

0: साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं अनुराधा, मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट किया जाता है और उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। और आपके प्यार भरे संदेश साथ ही गानों की लिस्ट भी मुझ तक पहुंच चुकी है, जैसे कि हमेशा पहुंचती है। और बहुत अच्छे अच्छे गीत आपने चुन के लिखे हैं लिस्ट में, वो मैं पढ़ चुकी हूँ। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं वो भी अपने गीतों को चुनकर वहां लिख सकते हैं, उन शब्दों को लिख सकते हैं, अपने संदेश भेज सकते हैं। और उससे पहले कि हम शुरुआत करें इस प्रोग्राम की, चलिए ये इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं उन लोगों के लिए जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं। इबारत कुछ इस प्रकार है, गुलमोहर की डाल पर जब एक ख्वाब उतरा, फूलों ने धीमे धीमे उसका नाम पुकारा, गुलाब की लाली में कोई राज छिपा था, चमेली की महक में दिल का मौसम बसा था, गेंदा भी बहारों संग आंगन में उखिला, जैसे हर रंग को जीवन से नया रिश्ता मिल गया। एक पुरानी तस्वीर में ठहरा है किसी अनकही प्रेम का जो पहला सवेरा है, एक नर्म सा खत हवा के संग आया था, जिसमें मौसम ने तेरा जिक्र सजाया था, पूजा सी पावन सी तेरी हंसी की रोशनी, जिसमें भर जाती थी मन की हर वीरानी, पलकों की चिलमन में जब नजर गुजरती थी, सपनों की झालर भी धीरे धीरे सवरती थी, यादों का ये सिलसिला आज भी रंग भरता है, गुलमोहर गुलाब और ख्वाबों में रंग ठहरता है। चलिए आपके संदेश भी हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।
1: अभी आप विविध भारती के प्रसारण सुन रहे थे, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए हिंदी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक के लिए जागरूक करने पर केंद्रित है। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को खेत की माटी को बचाने के लिए कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग न करने के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान

0: क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय के तहत योजनाओं को मिशन मोड में लागू करें, ताकि हरियाणा के शहर स्वच्छ, सुंदर और नागरिकों के लिए बेहतर जीवन गुणवत्ता वाले बन सके। उन्होंने कहा कि यदि हरियाणा के शहर स्वच्छता और शहरी प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रबंधन प्रदर्शन करते हैं तो वे देश के अन्य राज्यों के लिए आदर्श बनेंगे। केंद्रीय मंत्री कल शहरी स्थानीय निकाय विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्ष कर रहे थे। श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं की स्पष्ट समय सीमा निर्धारित कर गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में स्थायी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज व्यवस्था, ड्रेनों की सफाई, शौचालय अवसंरचना, घर घर कचरा संग्रहण एवं पृथककरण, अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र, लीगेसी वेस्ट प्रबंधन, बहुमंजिला पार्किंग और बायो सीएनजी संयंत्र सहित विभिन्न विषयों की विस्तार से समीक्षा की गई। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए गए, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए हैं। अश्विनी कुमार शर्मा, चंडीगढ़।
0: चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के सरकारी बहु विशेषज्ञता अस्पताल के रक्त बैंक में आज प्रातःकाल आग लग गई। आग सबसे पहले ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा देखी गई, जिन्होंने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को सूचित किया। सुरक्षा कर्मियों ने बिना विलंब प्रतिक्रिया देते हुए आग पर काबू पा लिया। अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा रक्त बैंक की आवश्यक सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। प्रारंभिक आकलन के अनुसार आग लगने का संभावित कारण एयर कंडीशनिंग यूनिट में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। इस हादसे में किसी के हताहत होने या झुलसने की कोई सूचना नहीं है। प्रशासन के अनुसार रक्त भंडार, उपकरण, अभिलेख या ढांचे को भी कोई उल्लेखनीय क्षति नहीं हुई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब एक बार फिर से आनंद लीजिए विविध भारती के प्रसारणों का।
3: आ मिलो सजना, जी हाँ, ये गीत आप सुन रहे थे इसी फिल्म से। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में, साथ ही आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और इसकी डिटेल्स आप मुझे भेज चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये पहला गीत था आज के इस प्रोग्राम का, और कहना पड़ेगा कि काफी सारी डिटेल्स आप हमारे जो श्रोता है हम तक लिख देते हैं, और काफी डिटेल्स में बताया कौन कौन अभिनेता है, अभिनेत्री है इस गीत में, काफी डिटेल्स हमें मिल गए। लेकिन साथ ही क्या मैं ये प्रश्न पूछने वाली नहीं, मैं कुछ और पूछने वाली हूँ आपसे। फिलहाल आपके प्यारे संदेश आपको सुनवाते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत फूलों की खुशबू, रंगों की छटा और प्रेम की कोमल भावनाओं का सुंदर संगम है। फूलों और यादों से सजी ये इबारत प्रेम की उस पवित्र अनुभूति को व्यक्त करती है जो समय बीत जाने पर भी मन में जीवित रहती है। एक पुरानी तस्वीर, एक नरम खत और प्रिय की मुस्कान स्मृतियों के ऐसे दीप है जो आज भी हृदय को

0: रोशन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए हम इस तरह के गीत लेकर आए हैं ताकि आप उस रोशनी में एक बार फिर से नहाएं। आज कहीं मैं पढ़ी हुई लाइन यहाँ साझा कर रही हूँ। सर, वसंत के आते ही तुमने कहा था हम साथ साथ पार करेंगे हर जंगल। मैं अब भी खड़ी हूँ उस गुलमोहर के नीचे जहाँ कोयल के कंठ में कांपता है पत्तों का पानी। तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार में न जाने कब से गुलाब उदास है। रिमझिम रिमझिम बूंदों में जहर भी है और अमृत भी। आंखें हंसती और दिल रोया तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार में। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर लिखा है, ये तो एक नई इबारत बन गई है। हमारे एक साथी कहते हैं कि आज के शब्दों पर गाने सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। गुलमोहर, गुलाब और ख्वाबों के रंगों में खो जाने का मन करता है। इस कार्यक्रम का इंतजार नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, हम आ चुके हैं, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। मजा बने हैं हमारे संग इस प्रोग्राम में। साथ ही हमारे एक और साथी है जो लिखते हैं कि बेहद प्यारी नज्म से चुनिंदा शब्द उन्होंने निकाले हैं गुलमोहर दो दीवाने शहर में। उन्हें ऐसा लगता है कि इन शब्दों से आज के गीत जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से मैच होती है, मेल खाती है या नहीं। साथ ही साथ एक और श्रोता हमें लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, संवेदनशील और पुरानी यादों के रंगों से सजी हुई है इबारत, और समय भले ही बीत गया हो, वो पल अतीत का हिस्सा बन चुके हों, लेकिन यादों का ये सिलसिला आज भी थमा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यारे से खूबसूरत मैसेज के लिए। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि आज के इस गद्यांश को गुलाब, गुलमोहर, चमेली की महक से महकाया है। वनों की मासूमियत और भरपूर अनगिनत रंगों से उषा की लालिमा की तरह खिलने वाला नाजुक नर्म प्यार का एहसास नए सवेरे की ताजगी भरे ख्वाबों में सजकर जीवन का मेघ धनुष रच रहे हैं। वाह, कितना सुंदर लिखा है आपने। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जीवन तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अरे वाह, शायर है हमारे श्रोता, बिल्कुल कहना पड़ेगा। एक और साथी लिखते हैं कि फूल एक इकाई है, गुलशन एक खिला हुआ बगीचा है और गुलिस्तान एक बहुत बड़ी फूलों की भूमि या विस्तृत उपवन है। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने बताया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। साथ ही हम फूलों की बात कर रहे हैं तो एक और ये गीत सुन लीजिए, फिर आते हैं हम अपने प्रश्नों पर।
1: शबा उसमें फिर

जी हाँ, इस नशे को प्यार कहते हैं। प्रेम पुजारी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में। नीरज ने इसे लिखा था, एस डी बर्मन की तर्ज थी। और आपके बहुत से संदेश हम तक पहुंच गए हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज फूल बहारों मिलन की बातें होगी। देश की बहुत सी जगह मानसून का आगमन हो चुका है। चिलचिलाती धूप गर्मी से राहत मिली है। बाग बगीचे और मन का मोर भी नाचने के मूड में है। बहुत से फूल जगह जगह खिलने लगे हैं। बिरह मिलन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी हाँ बिल्कुल। और एक और साथी कहते हैं, शुभ दोपहर, आज बहुत दिनों के बाद ये हमसे जुड़ रहे हैं और पहली बार मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, यानी कि मैं अगर सुरीला सफर में हूं तो ये फर्स्ट टाइम इनका जुड़ाव है इस प्रोग्राम के साथ। धन्यवाद, स्वागत है आपका। एक और साथी हमारे कहते हैं कि जैसे हर रंग को जीवन से नया रिश्ता मिला, ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में जब भी खुशियां आती है तो जीने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है और हर चीज नई लगने लगती है। एक पुरानी तस्वीर में वो पल ठहरा हुआ है जहां यादों के अनगिनत रंग बिखरे हैं। ये बात याद दिलाती है कि वक्त भले ही गुजर जाए लेकिन खूबसूरत यादें हमेशा हमारे दिल में और आंखों में ताजा रहती है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि बहुत ही जोरदार गाने से शुरुआत हुई आज के इस प्रोग्राम की और उन्हें अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और साथ ही हमारे लिखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, ये लाइन हमें रुकने पर मजबूर करती है। एक पुरानी तस्वीर या एक पुराना खत समय को एक जगह रोक देता है। ये इस बात का प्रतीक है कि भले ही दुनिया आगे बढ़ जाए, हमारे दिल का एक कोना हमेशा उस सबसे खूबसूरत पल में ठहर जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम ठहर जाते हैं और ठहराव भी जरूरी है। कभी थोड़ा रुकना, थमना, ठहरना बहुत जरूरी है और हमें ये अक्सर करना चाहिए अपने साथ हर दिन। एक और साथी लिखते हैं कि वक्त की धूल से धुंधली नहीं होती वो यादें जो दिल के कागज पर मोहब्बत से लिखी जाती है। कोई कितने भी दूर चला जाए, जमाने में गुल मोहर की छांव में कुछ बातें रह जाती है। बिल्कुल, गुल मोहर का जिक्र हुआ है तो इसका गीत हम कैसे भूल सकते हैं।

होने पर है ही, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल, कितने सारे फूल हैं जो खुशियां बांटते हैं, आपके चेहरे पर रंग ले आते हैं, तो आप अपने आप को कौन से फूल के साथ रिलेट कर पाते हैं, जुड़ाव महसूस कर पाते हैं, मुझे लिख भेजिए। और कौन सा फूल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, ये बहुत जरूरी सवाल है कि क्यों अच्छा लगता है, मुझे जरूर लिखें। साथ ही साथ फूलों को सजाने के अलावा और किस तरह से आप यूज करते हैं, या फिर अगर आपके आसपास फूलों का बाजार है तो उसके बारे में भी मुझे जरूर लिख भेजिए। फिलहाल राहत देने के लिए ये खूबसूरत नगमा।

फिल्म देवता से गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में और गुलजार ने इसे लिखा डुबन की तर्ज थी। जी हाँ, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि गुलाब की लाली और खुशबू की तारीफ सुनकर बाकी फूल जल उठे। मोगरा बोला, मेरी खुशबू के दीवाने हैं लोग। तो निशिगंधा ने कहा कि मैं भी क्या कम हूँ। गेंदे के फूल ने कहा कि मैं तो दिवाली की शोभा हूँ। मतलब एक ही चीज, हर एक चीज का अपना एक समय होता है, लेकिन सभी फूलों की जगह ईश्वर के चरणों में होती है। जी हाँ, क्या खूब कहा है आपने। एक और साथी कहते हैं कि आवाज की दुनिया विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के सभी उद्घोषक और सभी लोग जो भी यहाँ पर काम करते हैं, उन सबकी आवाजें मीठी

वाद्य यंत्रों से भी सुरीली है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कल रात 2 बजे सूरत गुजरात में आंधी तूफान के साथ पहली बारिश हुई और आज धूप के कारण गर्मी बहुत है। यही तो मौसम की बात है, मौसम पल पल में बदलता है। हमारे एक श्रोता है जो कि लंदन से इस वक्त हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं ऐप के थ्रू, और उन्हें ये गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। देखते हैं आगे के नगमे आपकी लिस्ट से मैच खाते हैं या नहीं। हमारे एक और साथी है जो लिख रहे हैं कि 15 गीतों की लिखी हुई इबारत में से फूलों पर लिखे हुए मेरे दोनों गीत फेल हो गए हैं और अब देखते हैं और कौन सा मेल खाते हैं। नहीं जी बिल्कुल, आपके दिल और हमारे दिल एकदम जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं गीत मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन मनोरंजन जरूर विविध भारती पर चलता रहेगा। हमारे एक साथी लिखते हैं कि रोज दोपहर 1 बजे प्रसारित होने वाला सुरीला सफर कार्यक्रम केवल गीतों का संग्रह नहीं है बल्कि श्रोताओं के दिलों को जोड़ने वाला एक सुंदर सेतु है। वर्षों से विविध भारती ने अपने श्रोताओं के साथ जो आत्मीय रिश्ता बनाया है उसे कार्यक्रम और भी मजबूत कर देता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से श्रोताओं की सहभागिता इस कार्यक्रम को और भी जीवंत बना देती है। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। एक और साथी लिखते हैं कि फूल बिना कुछ कहे प्रेम सम्मान शुभकामना और संवेदना व्यक्त कर देते हैं। मंदिरों की पूजा से लेकर विवाह स्वागत उत्सव और स्मृति समारोह तक हर जगह फूलों की जरूरत होती है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आप ये जरूर संदेश में लिखिए कि आप किस तरह से इसके अलावा फूलों का उपयोग करते हैं, या फिर सिर्फ सजाने पूजा घर से या विवाह स्थलों को सजाने उसके अलावा ये जो फूल हैं जो मुरझा जाते हैं, आप एक बार फूल लेकर आ जाते हैं किसी को गिफ्ट कर देते हैं या किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया, उसके बाद उन फूलों का आप क्या करते हैं, किस तरह से उसे उपयोग में लेकर आते हैं, साझा करते हैं अपने विचार और सुनते हैं कि सब लोग किस तरह से इसे यूज करते हैं। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि कोई एक फूल की बात करना कठिन है, इनका जो रंग होता है मनमोहक सुगंध होती है कोमलता होती है वो हमारे मन को सकारात्मकता से भर देती है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए फूलों की बात चली है तो बताइए, मैं इंतजार कर रही हूँ फूलों के बाजार का भी इंतजार कर रही हूँ कि आपके एरिया में आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास कौन से फूलों के बाजार लगते हैं, आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं।

फिल्म ना खुदा से गीत अभी आप सुन रहे थे और लता मंगेशकर नितिन मुकेश की आवाजों में अभिनेता अभिनेत्री आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, स्वरूप संपत और राज किरण पर फिल्माया गीत। फूलों की बात की कि फूलों को देने के लिए गिफ्ट देने के अलावा और क्या करते हैं, तो हमारे साथी लिखते हैं कि जब भी उन्हें कोई फूल गिफ्ट करता है देता है तो वो अपनी किताबों में छुपा कर रख लेते हैं, फिर सोचते हैं कि इस बार जब भी कोई देगा तो उसे अपने बगीचे में लगा देंगे। हमारे एक साथी लिखते हैं कि गुलाब के फूलों की हमारे देश में सबसे ज्यादा खेतीबाड़ी हमारे अजमेर जिले के पुष्कर में होती है जो कि तीर्थ स्थल भी है, और फूलों का उपयोग यहाँ पूजा के साथ साथ गुलाब का इत्र और गुलाब का गुलकंद बनाने में भी किया जाता है। हमारे घर के गार्डन में भी गुलाब के पौधे, जी हाँ बहुत अच्छी बात है और बहुत ही ज्ञानवर्धक बात आपने बताई, हमें ये नहीं पता था। हमारे को साथी लिखते हैं कि सबसे अच्छा फूल तो गोभी का फूल होता है, जब कोई इंप्रेस हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसकी सब्जी बना ली जाए। जी हाँ ये भी अच्छा आइडिया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पारिजात, हर श्रृंगार, शिफालिका या प्राजक्ता, ये एक ऐसा फूल है जो बहुत ही सुगंधित होता है और बड़ा पवित्र पुष्प माना जाता है, और आयुर्वेद में भी इसके काफी सारे औषधीय गुण हैं और धार्मिक और पौराणिक महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने काफी डिटेल में इसके बारे में बताया है और महाभारत काल में भी उस वक्त की भी कोई चर्चा की है यहाँ पर, उसका कुछ बताया है, वो आप बाद में पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम और मैसेजेस पर जाते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वो नागपुर में रहते हैं और नवरात्रि गणेश जी के आगमन के समय हर त्योहार को फूलों की मंडी में जाकर हर प्रकार के फूल खरीद कर लाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि पारिजात पुष्प को देवलोक का पुष्प माना जाता है, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं बहुत ही प्यारी लाइन कि फूलों से मित हंसना सीखो, भंवरों से मित गाना, ये कविता की एक लाइन है जो बचपन में याद की थी और आज भी याद है, और सभी फूल बहुत सुंदर लगते हैं इन्हें।

हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनके आसपास फूलों का बाजार तो नहीं है, लेकिन वो एक सरकारी शिक्षक हैं और विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बागवानी भी सिखाते हैं, जिसमें फूलों के बारे में बताते हैं और हर दिन माँ सरस्वती की तस्वीर को पुष्प चढ़ाते हैं, प्रार्थना करके अपना काम शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं आप। हमारे श्रोता कहते हैं कि मिडिल ईस्ट रेड एक अद्भुत फूल है, इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ फूलों में गिना जाता है और ये माना जाता है कि केवल दो ज्ञात पौधे ही बचे हैं और एक इंग्लैंड में है और दूसरा न्यूजीलैंड में है। और दिलचस्प बात यह है कि रेड कलर नाम जरूर, इसका रेड जरूर नाम है, लेकिन इसके जो फूल होते हैं वो गहरे गुलाबी रंग के होते हैं और साथ ही ये हमें ये सिखाता है कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज वही है जो कम दिखाई देती है लेकिन जिसकी मौजूदगी पूरी प्रकृति को खास बना देती है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने हम तक पहुंचाया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आंगन में नहती मधु मालती उन्हें बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह और तमाम उदासियों को दूर कर देती है। हमारी एक साथी लिखती है कि ये शो सुनकर उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि फूल बागों में नहीं यहां पर कहीं झड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यारे से संदेश के लिए कि जब हम बोलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि फूल झड़ते हैं। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है और ये पहली बार हमारा प्रोग्राम सुन रही है इस वक्त स्कॉटलैंड से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए चलते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: जी हाँ दोस्तों, आज दिन में 3 बजे सखी सहेली के साथ जरूर जुड़िएगा। स्पेशल सखी सहेली की वर्षगांठ है और मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी हमारे साथ होंगी। साथ ही आप हमें देख सकते हैं FB लाइव पर। साथ ही आपके जो भी सवाल है हिमानी जी से, वो आप अभी हमारे फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं और हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे।

हमारे सुरीला सफर के कुछ संदेश इंतजार में है। फूलों की बातें चल रही थी तो फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, ऐसा लिखा है हमारे साथी ने। मतलब फूलों को कई बार बेरहमी से कुचला और फेंका भी जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। और फूल काफी नाजुक होते हैं, उनके साथ इस तरह से बिल्कुल भी बर्ताव नहीं करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। तो फिर उन फूलों को जो हमें गिफ्ट किए जाते हैं, जो मुरझा जाते हैं, उनके साथ ऐसा क्या किया जाए, किस तरह से उन्हें उपयोग में लाया जाए, आप हमें लिख सकते हैं। साथ ही हमारे साथी लिखते हैं एक और कि विभिन्न फूलों की फूलों में मिली जुही महक, ओके, और रंग बिरंगे फूल जो है वो मन को तरोताजा कर देते हैं और आंखों को भी तरावट देते हैं, बिल्कुल। साथ ही साथ एक साथी लिखते हैं कि कपास का फूल, जिसके आगे संसार के सारे फूल फेल है, कपास के फूलों से रुई और खाद कपड़ा बनता है, जो इंसानों के शरीर ढकने का

करता है। जी हाँ, वो भी एक तरह का फूल ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन संदेशों के लिए। साथ ही

सिला फिल्म से ये गीत सुनाया गया आपको लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में। शिव हरी का संगीत था और जावेद अख्तर ने इसे लिखा था। साथी फूलों की बातें पहुंच चुकी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे राज्य ओडिशा में केवड़ी की खेती बहुत भारी तादाद में होती है और इसके इत्र बनाने की कई फैक्ट्री है और साथ ही पान मसाले बनाने वाले ज्यादातर खरीदार होते हैं। और एक और साथी हमारे लिखते हैं कि इस पूरे हफ्ते ये कार्यक्रम नहीं सुन पाई और क्योंकि उनकी बेटी आई हुई थी और बेटी आई हुई है जो कि काफी टाइम इनको व्यस्त रखती है। कोई बात नहीं, स्वागत है आपका आज इस प्रोग्राम में, आप बने रहें जब तक भी आप बन सकते हैं हमारे साथ। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपराजिता शिवजी को चढ़ाते हैं और अलग अलग प्रकार के फूल उगाए हैं इन्होंने अपने बगिये में और लाइट आकाशी कलर के भी इनको फूल काफी पसंद है। हमारी एक साथी लिखती है कि जब भी किसी को गिफ्ट करती है, फूल भेंट करती है, तो हमेशा उसकी जो डंडियां हैं, उसकी जो स्टेम है, उसे लंबा रखती है ताकि अगला भी उसे यूज कर सके। पानी में रखे, हर दूसरे दिन पानी को चेंज करे और वो ज्यादा से ज्यादा तरोताजा रह पाए जब तक रह सकते हैं और उसके बाद फिर उसको बाकी कामों में यूज कर सके। हमारी एक साथी लिखती है कि फूलों की वादियों में वो एक बार गई हैं जब गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ का टूर किया था और वहां पे फूल चट्टी बोलकर एक जगह आई थी फूलों की और बहुत खूबसूरत फूल लग रहे थे। मोबाइल तब नहीं होते थे इसलिए फोटो नहीं खींच पाई वो। जी हाँ, उसके अलावा ट्यूलिप गार्डन का जिक्र आया है हॉलैंड का, यहाँ पर एक साथी ने लिखा है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि ऐसे ऐसे फूल भी खिलते हैं जिनके बारे में अगर आप सुने तो ताजुब करेंगे। कैक्टस के भी फूल खिलते हैं और ये फूल साल में एक बार रात को 12 बजे के करीब खिलते हैं, 1.5-2 घंटे के लिए। और उस पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता भी है कि कैक्टस के फूल तुम दिन में खिले होते। जी हाँ, ये मैंने पहली बार सुना है और आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, सचमुच ताजुब है। इसके अलावा गुलाब के फूल केवल सुंदरता के लिए नहीं होते हैं, साथ ही साथ उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, विटामिन सी भी मौजूद होता है, उसका टोनर भी बनाया जा सकता है और होंठ भी गुलाबी होते हैं उसे पीसकर लगाने से, साथ ही उसकी चाय भी बना सकते हैं, ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा है। उसके अलावा गुलाब जल के रूप में भी प्रयोग होता है और भी बहुत सारे फूल हैं जिनका अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। काफी अच्छे अच्छे मैसेजेस आज मुझ तक पहुंचे। चलिए हम पहुंचते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

अपनी पराई से गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे हम पूरा नहीं सुनवा पाए क्योंकि समय की कमी है, लेकिन आपके मैसेजेस मुझ तक फोनों के पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं कि कईयों ने यहां पर प्रश्न लिख दिए हैं हिमानी जी के लिए, लेकिन आप फेसबुक पेज पर जाइए, वहां पर सखी सहेली के नीचे पोस्ट के नीचे आप जरूर अपने प्रश्न रखिए और हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के मैसेजेस के लिए। आज का सुरीला सफर यही समाप्त होता है, इजाजत दीजिए। आपने आज का यह सफर तय किया अनुराधा के संग।

नमस्कार दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन में सुख दुख धूप छांव की तरह है। समय का पहिया घूमता है तो कभी सुख आता है तो कभी दुख। सुख का समय तो पंख लगाकर उड़ जाता है, लेकिन दुख का समय बेहद लंबा और कष्ट भरा मालूम होता है। लेकिन दोस्तों, जीवन में सुख दुख का चक्र चलता ही रहता है। इसमें घबराने की बजाय धैर्य से काम लेना ही समाधान है। जीवन में दुख का एक बहुत बड़ा लाभ है, यह हमें अपने व्यक्तित्व में अंदर झांकने और उसे मजबूत करने का मौका देता है। दुख हमें अपने सच्चे और झूठे रिश्ते नातों और दोस्तों के असली चेहरे हमारे सामने उजागर कर देता है।

जीवन में जब भी कोई संकट आता है और अधिकांश लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब अपनी सहायता ईश्वर के अलावा हम स्वयं करते हैं। हमारा दृढ़ निश्चय और हमारी सकारात्मकता हमें जीवन के तूफानों में भी भटकने नहीं देती। अंधेरी सुरंग कितनी भी लंबी हो, उसके अंत में प्रकाश की किरण मिलती ही है। रात कितनी ही काली क्यों न हो, जीवन में सुख की सुबह होती ही है।

दुख का समय हमारे जीवन में एक चुनौती की तरह आता है। इस चुनौती को हम अपने संयम, धैर्य और विवेक से बड़ी सहजता से परास्त कर सकते हैं। और जब हम अपनी कर्मठता से, अपने पुरुषार्थ से परिस्थितियों पर विजय पा लेते हैं, तब हमें अपने आप पर गर्व भी होता है और उस पल को हम उत्सव से कम नहीं समझते।

तो दोस्तों, हम जीवन को जितनी सहजता से लेंगे उतना ही हमारा मन शांत रहेगा और हम अपने धैर्य और विवेक से दुखद परिस्थितियों पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर सकेंगे। आज त्रिवेणी का सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरे सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
2: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार है और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जांच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद

0: क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
5: जी हाँ, जरूर जुड़िए हमारे साथ आज सखी सहेली स्पेशल, यानी कि आज हमारी वर्षगांठ पर मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी से रेडियो सखी ममता सिंह की दिलचस्प बातचीत आप सुनिए। हिमानी जी हमारे स्टूडियो में पहुंच चुकी है, हमारे परिसर में पहुंच चुकी है। 3 बजे से वो फेसबुक लाइव भी होंगी और आप उनसे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं आप लिख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज की सखी सहेली की पोस्ट के नीचे, हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे। और ये दिलचस्प बातचीत बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक लाइव भी हम आपको

0: लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुगले आजम फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: जी हाँ साथियों, आज 3 बजे स्पेशल सखी सहेली। जी हाँ, आपके चहेते कार्यक्रम सखी सहेली की वर्षगांठ पर आज मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी हमारे विविध भारती परिसर में पहुंच चुकी है। बहुत बहुत स्वागत उनका। और आज ये दिलचस्प बातचीत हिमानी शिवपुरी जी के साथ रेडियो सखी ममता सिंह की आप सुनेंगे। साथ ही आपके जो प्रश्न है वो आप हमारे फेसबुक पेज पर सखी सहेली के पोस्ट के नीचे लिख सकते हैं, हम उन्हें जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप बने हमारे साथ और 3 बजे ये विशेष कार्यक्रम जरूर सुनिए। ये फेसबुक लाइव भी होगा।

श्री 420 फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में नजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा था, ओपी नैयर का संगीत था। आप सुन रहे हैं सदाबहार लव में विविध भारती से।

0: न पूछो कि तुम मेरे।
1: और ये है सदाबहार नगमे प्रोग्राम का आखिरी गाना, और थोड़ी ही देर में हमारा सजीव प्रसारण सखी सहेली कार्यक्रम होगा। और हमारी जानी मानी अदाकारा, जानी मानी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी विविध भारती के स्टूडियो में आ चुकी हैं। बस दिल थाम के बैठे रहिए श्रोता, और 4 मिनट बाद हम शुरू करेंगे सखी सहेली, विशेष सखी सहेली।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली।

0: Haley.
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, आज है सखी सहेली की वर्षगांठ। 2003 में शुरू हुआ था ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का सफर इतना सुरीला रहा, इतना लोकप्रिय रहा कि आज भी लोग इसे बहुत प्यार देते हैं। सखी सहेली देश ही नहीं बल्कि दुनिया के श्रोताओं का प्यार मिला है। इस विशेष अवसर पर हमने फिल्म और टेलीविजन की

0: अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी को सजीव प्रसारण में आमंत्रित किया है। हिमानी जी अपनी सहज अभिनय शैली, दमदार संवाद अदायगी के लिए जानी जाती हैं। फिल्म, धारावाहिक और रंगमंच तीनों माध्यमों में हिमानी जी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। तो पूरे विविध भारती परिवार की ओर से हम हिमानी शिवपुरी जी का स्वागत कर रहे हैं। हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सजीव प्रसारण स्टूडियो में। नमस्कार।
1: नमस्कार ममता जी, थैंक यू, आपने इतना प्यारा स्वागत किया, और आपको और पूरे विविध भारती के परिवार को सखी सहेली की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।
0: हिमानी जी, ये विविध भारती के स्टूडियो में आप आएंगे, इसके पहले भी आप आ चुके हैं, और आज सखी सहेली की वर्षगांठ पर हमने आमंत्रित किया है। तो ये स्टूडियो में आना कैसा लग रहा है, और साथ में ये बताइए हमें कि रेडियो से आपका कैसा नाता है, खासतौर से विविध भारती से?
1: देखिए, वैसे तो मैंने फिल्म, टेलीविजन, थिएटर में काम किया है, लेकिन सब माध्यमों का जो पहला माध्यम जिससे मेरा परिचय हुआ या वो हुआ, वो रेडियो सबसे पहला। मुझे बचपन की जो यादें हैं इतनी जुड़ी हुई रेडियो से, पुरानी, हम लोग, पापा हमारे घर में, तब तक दूरदर्शन नहीं आया था, तो रेडियो पर ही सब निर्भर करते थे, चाहे समाचार हो, देवकी नंदन पांडे जी की आवाज अभी तक
0: समाचार वाचक,
1: कुंदन लाल सहगल, एक स्लॉट्स होते थे कि पुरानी फिल्मी गाने जिसमें कुंदन लाल सहगल,
0: भूले बिसरेगी आज भी प्रसारित होता है।
1: हाँ, और वो सुनते थे, और भी मजा आता था, बिना का गीत माला, कैसे पता लगता था कौन गाना इतना पॉपुलर है
0: जी।
1: और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में पापा और मेरा भाई और मैं भी, क्योंकि वो लोग देखते थे, तो क्रिकेट के एंथुजियास्टिक थे, तो मैं आज भी ये मानती हूँ, जबकि आज तो खैर आईपीएल वगैरह इतना है, आज भी मेरा मानना है कि जो रोमांच रेडियो में कमेंट्री सुनने से आता था, वो टीवी तो मैच ही नहीं कर सकता। हालांकि मैं खुद टीवी के मीडियम से हूँ, लेकिन इस तरह से ये लोग समा बांधते थे कि मतलब हमको लगता था कि हम वाकई में ग्राउंड में है, क्रिकेट ग्राउंड में। तो इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं रेडियो के साथ, हमारे बचपन का अभिनंग था। और बचपन क्या, आजकल
0: बहुत सारे चैनल्स हैं,
1: लेकिन रेडियो का भी अभी भी बहुत ही अहम भूमिका है, कि हम लोग जब मुंबई में, आपको मुंबई या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप क्या करते हैं कि रेडियो तो साथ में रहता ही, आपके गाने बजते रहते हैं, तो आई फील कि जो ट्रैफिक की जो धक्का मुक्की है, उससे अगर कोई बचाता है तो वो रेडियो ही बचा।
0: बात है, बहुत बढ़िया बात आपने कही, और ये जो क्रिकेट कमेंट्री की बात कही है, तो हमें भी याद है कि आंगन के मुंडेर पर एक रेडियो रखा जाता और गांव के कई लोग, यहाँ तक कि साइकिल से दूर दूर से लोग चल के आते थे कि फला के यहाँ रेडियो है, चलो हम क्रिकेट कमेंट्री सुनते हैं। तो ये याद तो आपने बड़ी तिलिस्मी साझा की है। बताइए कि क्या आपने भी क्रिकेट के चौके छक्के लगाए, या सीधे आप देहरादून से दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली आपने? बताइए।
1: नहीं, क्रिकेट में मैं तो ज्यादातर किताबी कीड़ा थी बचपन में, और नाटकों में भाग लेती थी, डिबेट्स करती थी, डांस करती थी। क्रिकेट के चौके छक्के तो मेरा भाई लगाता था, पर चूंकि घर में ऐसा माहौल था, और मुझे अभी भी याद है कि क्रिकेट के बारे में जो फैनेटिसिज्म था हमारे टाइम, तो सुनील गावस्कर वगैरह तो भगवान मंदिर में जाके पूजा करते थे, हाय मतलब सुनील गावस्कर सेंचुरी बना दे।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, हाथ जोड़ के प्रार्थना।
1: हाँ, और जैसे कोई भी भारत पाकिस्तान का या भारत इंग्लैंड का कोई भी मैच हो, तो भारत जीत जाए, मतलब प्रे कर रहे हैं और कमेंट्री सुन रहे हैं, तो मतलब क्रिकेट का पैशन उस टाइम भी उतना ही था जितना कि अब है।
0: जी बिल्कुल। एक गाना सुन लें, उसके बाद फिर हम और आपकी यादों के गलियारों में चलते हैं और ढेर सारी यादें खंगालेंगे। तो एक गाना बधाई देने वाला गाना है, हम सुनते हैं।
1: जी जी।

0: तो हिमानी जी, ये बधाई हो बधाई गाने में था और हमारे श्रोताओं की ओर से बधाई संदेश की बाढ़ सी आई हुई है और हमारे बहुत सारे श्रोता आपके लिए लिख रहे हैं कि हिमानी जी आई हैं, चार चांद लग गया है विविध भारती के स्टूडियो में। और आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि रेडियो से इतना पुराना नाता है, ऐसा लग रहा है कि मायके, जैसे बचपन में हम लोग रेडियो सुनते थे, लगता है कि अपने मायके आ गई हूँ।
0: सही बात है।
1: और ऐसा भी नहीं, मैं आपके प्रोग्राम में 2-3 बार आ चुकी हूँ और दिल्ली हो, दिल्ली में भी करें, देहरादून में भी, जब भी जाती हूँ तो रेडियो प्रोग्राम करती हूँ, क्योंकि रेडियो से नाता मुझे
0: बड़ा गहरा है,
1: बहुत गहरा,
0: और आपसे भी बड़ा गहरा नाता है हमारे श्रोताओं का। हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपके अभिनय के कायल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिमानी जी अपने सशक्त अभिनय प्रतिभा, सहज व्यक्तित्व और कला के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। हमने आपको फिल्म हम आपके हैं कौन देखी, उसमें आपको देखा, और भी कई फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं। और इन्होंने सवाल भी किया, हिमानी जी आजकल आप क्या करती हैं और आपकी एक्टिविटीज क्या हैं। तो अभी हम ये पूरी आपकी जर्नी के बारे में जब बात करेंगे तो पता चल ही जाएगा हमारे श्रोताओं को। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली बहनों का त्यौहार है आज तो, और इसमें भाई का प्यार भी है तो सखा भी शामिल है। निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को सखाओं का प्यार भी इस प्रोग्राम को मिलता है और हमारे सखा बहुत लंबी तादाद में सुना करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कभी उलझा सखी सहेली, हे सखी सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो कहलाती हो नित नवेली, किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल, यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम हो सबकी प्यारी न्यारी दुलारी सखी सहेली। बहुत बातें लिखी है हमारे श्रोताओं ने, लेकिन अब हिमानी जी आई है तो हमारे मन में भी सवाल और बातों का ज्वार सा आया हुआ है। तो चलिए आपको हम उत्तराखंड की ओर ले चलते हैं कि देहरादून से आपने दिल्ली का सफर कैसे तय किया और गर्मी की छुट्टियां, इस समय गर्मी बहुत तेज है पूरे देश भर में, तो गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताइए, क्या नॉस्टैल्जिया होता है जब आप गर्मी की छुट्टियों में रेडियो सुनते हैं, आइसक्रीम और वो इकड़ दुखड़ का खेल, वो बचपन के संसार में आप गोते लगाइए और साझा कीजिए कुछ यादें।
1: बचपन में तो मुझे याद है कि गर्मी, सिंस मैं देहरादून से हूँ तो देहरादून का मौसम अभी भी वैसे बहुत अच्छा है कि जहाँ 2-3 दिन गर्मी होती है तुरंत बारिश आ जाती है, तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर है कि
0: जी।
1: और हम लोग जब गर्मियां होती थी तो स्विमिंग पूल में ही पड़े रहते थे और पापा हमको, पापा पहाड़ी थे तो हमको देहरादून वैली में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा जमुना तो है ही, हमने जमुना में राफ्टिंग भी करी है, गंगा में भी नहाने जाते थे, लेकिन ज्यादा तो नहीं, करीब 20-25 मिनट में एक लक्ष्मण झूला, वो लक्ष्मण झूला तो ऋषिकेश में लक्ष्मण सिद्ध होता था और सोंग रिवर होती थी, तो हम लोग नदियों में जाके नहाते थे, पापा तो सीधे, हमने स्विमिंग पूल में भी था क्योंकि पापा डून स्कूल में पढ़ाते थे तो वहां स्विमिंग पूल था, लेकिन हम लोग नदियों में भी, मतलब प्रकृति से
0: जुड़ाव
1: बहुत जुड़ाव था। और जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो पापा मसूरी ले जा लेते थे और तब हम पैदल चल के, अब तो खैर कार से जाते, पैदल चल के देहरादून से मसूरी जाते थे क्योंकि पहाड़ी रास्तों में बड़ा घुमाव होता है तो बहुत चक्कर आते हैं,
0: होता
1: तो हम लोग प्रेफर करते थे और पापा लेके जाते थे हमको पैदल रास्ते से, बीच में रास्ते में रुकते थे, चाय और पकौड़ी खाते थे,
0: क्या बात है,
1: मसूरी पहुंचते थे, एक बहुत फेमस दुकान थी। और बाद में तो खैर जब कार या उससे तभी भी एक वो टोल आता था, टोल टैक्स होता है, वहां की पकौड़ियां बड़ी पसंद है, पहाड़ी पकौड़ियां बहुत अच्छी होती, चाय और पकौड़ी, तो वो खा के हम लोग मसूरी जाते थे। और मसूरी में भी बड़े एडवेंचरस थे, मेरे पापा भी एडवेंचरस थे, भाई भी, और मैं भी लगभग लड़का ही थी, तो हम लोग गन हिल पैदल चलते थे। और जब हम कैमल्स बैक में भी रहते थे, मसूरी का एक तो माल रोड है और कैमल्स बैक, तो हम ऊपर चढ़ने के, मैं और मेरा भाई ना बहुत शैतान थे, ऊपर अच्छा। चढ़ने के नए नए रास्ते ढूंढते थे इधर से, मतलब एक्सप्लोरर्स थे हम, अपने को सोचते थे हम बहुत बड़े एक्सप्लोरर हैं।
0: लग नहीं रही कि आप शैतान थे, बहुत सीधी साधी लग रही है देखने में,
1: बहुत शैतान थे, मतलब हम लोग स्विमिंग पूल में पड़े रहते थे जब देहरादून में होते थे। और मतलब और क्या करते थे, और बच्चों को छत से जैसे पेड़ों में, दून स्कूल बहुत ही हरा भरा और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है वहां पर, क्योंकि एक बार वो FRI का भी पार्ट होता था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इतने खूबसूरत पेड़ हैं, तो हम लोग पेड़ों में चले रहते थे बंदरों की तरह, मतलब ज्यादा मतलब मुझे ये, मैं ये सोचती हूँ कि हमारा बचपन इतना अच्छा बीता, और आजकल के बच्चों को देखती हूँ तो इतनी दया आती है कि वो बेचारे
0: मोबाइल
1: फोन पे, मोबाइल पे, या अपने कमरे में या टीवी में, हम बिल्कुल पहाड़ पहाड़ चढ़ रहे हैं, नदियों में तैर रहे हैं,
0: क्या बात है,
1: बंदरों की तरह पेड़ों में, आम आजकल के बच्चों ने
0: खाना।
1: आप लोग को मतलब हाँ, या तो ठेले पे फ्रूट्स दिखते हैं हाँ, या आप सुपर मार्केट या ऐसी जगह जाए, हमने तो पेड़ से तोड़ के लीची, आम, जामुन, अमरूद खाए हुए हैं, उसका मजा ही कुछ और था।
0: बिल्कुल, तो हमें लगता है कि आपकी बातें हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो खास तौर से नई पीढ़ी कुछ तो सीखेगी, क्योंकि बंद कमरों में जो उन्हें आनंद मिलता है, बंद कमरों से बाहर निकले तो आज भी वो आनंद ले सकते हैं। आपने एक बात कही कि आप लड़कों की तरह रहती थी और बहुत बिंदास बेबाकी से जीती थी, तो हमारी बहुत सारी सखियां गांव में रहती हैं, कस्बों में रहती हैं, उनके लिए कुछ कहिए कि कितना मुश्किल रहा होगा उत्तराखंड से दिल्ली जैसे महानगर में आना आपके लिए,
1: हाँ।
0: अपने माता पिता को समझाना, तो कुछ संदेश दीजिए, बताइए।
1: मैं रंगमंच करती थी, लेकिन क्या था उस टाइम, मतलब 50 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप थिएटर को, और आजकल तो इतने सारे लोगों के पास
0: साधन है,
1: साधन भी है, और दूसरी इतनी सारी वो है, क्या कहते हैं कि ओपनिंग्स है, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे सिर्फ दो ही थे कि जो पढ़ने में होशियार होता था वो साइंस लेता था, और जो थोड़ा सा पैदल था दिमाग में वो आर्ट्स में जाता था, तो मैं होशियार थी तो मैं साइंस, और साइंस का ये ISC में वन ऑफ द टॉपर्स थी, मैंने BSc किया, MSc किया, लेकिन रंगमंच करती थी, तो जो मजा रंगमंच में आता था ना, वो साइंस का बड़ा ड्राई था, MSc का मतलब 9 से 5 बजे क्लास और लैबोरेटरी में, और जो शाम को अव्यवसायिक रंगमंच करती थी, शाम को जो थिएटर करती थी उसमें बड़ा मजा आता था, लेकिन आप सोचिए उस टाइम तो उत्तराखंड भी नहीं बना था, वो यूपी था,
0: उत्तर प्रदेश था,
1: उत्तर प्रदेश था, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप रंगमंच में, मैं तो रंगमंच ही देखा, फिल्म तो खैर बहुत बुरा मानते थे, मुझे याद है कि हमारे प्रिंसिपल थे स्कूल की, मिस्टर मार्टिन, ज्यादातर ब्रिटिशर्स ही थे डून स्कूल में, तो मिसेस मार्टिन मुझसे कहती थी, हिमानी यू शुड गो इन टू फिल्म, तो मैंने कहा नहीं नहीं हमारा नॉर्थ में एक बड़ा वैसा ही है, फिल्म बिल्कुल नहीं, मैं 50-55 साल पहले की बात कर,
0: अलग ही दुनिया थी,
1: नहीं सोच ही नहीं सकते थे
0: जी।
1: तो खैर मैं आपको बता रही थी कि थिएटर में रुचि थी, और मैं MSc कर रही थी और एक नाटक कर रही थी मैं, ब्रेक्ट का 3 Penny Opera, इतने में NSD राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कुछ स्नातक आए, कुछ छात्र आए, तब पता चला कि MSD भी ऐसी एक संस्था है हिंदुस्तान में, उस टाइम NSD थी, अब तो काफी सारे स्कूल्स खुल गए, मध्य प्रदेश में खुल गया है, कलकत्ता
0: पुणे में है, और
1: पुणे में है, और लखनऊ में भी अब खुल गया भारतेंदु नाट्य अकादमी, तो उस टाइम सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय था, तब पता चला ऐसी जगह है जो आपको थिएटर में ट्रेनिंग देती, तब मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली, तो मैंने तय किया मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, उसी दौरान मेरे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं पढ़ने में होशियार थी, तो मुझे MS अब्रॉड करने की स्कॉलरशिप मिली, तो मैं वीजा का इंटरव्यू देने गई दिल्ली, साथ में चुपके से NSD का भी इंटरव्यू दिया,
0: किसी को बताया नहीं आपने, घर
1: में बताया घर में, और जब लेटर आया NSD का सिलेक्शन का, तो मैंने घर में बम फोड़ दिया कि भाई मैं तो जा नहीं रही हूँ अमेरिका, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ
0: NSD करूंगी,
1: NSD में, तो उसमें मतलब पूरा छोटे शहरों में तो हर एक कोई एक दूसरे को जानता है, और मुझे तो खैर मैं सबकी लाडली थी, कि पढ़ने में होशियार थी, डिबेट करती थी, डांस करती थी, प्लेस करती थी, और अभी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, उस टाइम बहुत बड़ी बात थी अमेरिका पढ़ने जा रही है लड़की को स्कॉलरशिप मिली है, तो तो सब कहती कि भंजी, भंजी की नौनी, नौनी पहाड़ी शब्द है लड़की का, बेटी का, भंजी की नौनी बहुत होशियार है। अब जैसी लोगों को पता चला भंजी की नौनी तो वहां जा रही, सबने कह रही है भंजी की नौनी तो पागल हो गई, बताओ इसको समझाओ। मेरे पापा के पास आया कि भंजी आप समझाओ, इसका लड़की का दिमाग खराब हो रहा है, इतना अच्छा इसका करियर, इसको स्कॉलरशिप मिली है। और मेरे सारे रिश्तेदार, उत्तर प्रदेश में नाटक का पर्यायवाची था नौटंकी,
0: नौटंकी,
1: तो मुझे सब बोले क्या तू नौटंकी करेगी, भांड, ये तो भांड कहते थे, भांड
0: पूरा।
1: तो पापा ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा काफी ब्रॉड माइंडेड थे, वो खुद ही अपने आप में लेखक थे, डॉक्टर हरिवर्धन शैलेश, वो वहां के जाने माने साहित्यकार हैं उत्तराखंड के। तो पापा ने समझाने की कोशिश की कि बेटा तू अमेरिका हुआ हो, अगर तुम में वो रहा, मतलब बाद में आके कर लेना, शौक है ना तुम्हारा। तो मैंने पापा से एक बात कही, पापा देखो हो सकता है 40 साल, अब तो मैं सोचती हूँ बड़ी हंसी आती कि मैं ऐसी कि मैं 40 साल की हो जाऊंगी पापा, मेरे पास बहुत पैसा रहेगा, लेकिन मेरे दिल में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने जो सपना देखा वो मैं पूरा नहीं कर पाई। तो मेरे पापा फिर कुछ नहीं बोले, मम्मी वगैरह सब मेरे रिश्तेदार सब खिलाफ, मेरे पापा खुद मुझे NSD लेकर गए,
0: क्या बात है,
1: वहां मेरा एडमिशन कराया और वहां से मेरा करियर चेंज हो गया। 3 साल की ट्रेनिंग, फिर वहां रेपेट्री ज्वाइन करके, रेपेट्री इसलिए ज्वाइन करी कि वापस तो आ नहीं सकती, कि अपने पैरों पे खुददारी, 250 की स्कॉलरशिप से, मैंने कहा घर से एक पैसा नहीं मांगा,
0: 250
1: की स्कॉलरशिप मिलती थी, उसके बाद मैंने रेपेट्री ज्वाइन किया, वापस तो नहीं आ सकती थी, कैसे करें, क्योंकि उस टाइम भी वो था उत्तर प्रदेश ऐसा माहौल नहीं था कि आप अपना आजीविका उससे चला सके थिएटर से। तो मैंने NSD रेपेट्री ज्वाइन किया, 600 रुपए पहले मिलते थे, उसके बाद 1,000, 2,000, 3,000 हाईएस्ट जो होता था, एक
0: इसमें बहुत बड़ी रकम थी,
1: बहुत बड़ी
0: रकम,
1: उसी में गुजारा करती थी और थिएटर करती थी। तो ऐसे मैं, ये मेरा सफर था दिल्ली से, मतलब देहरादून
0: से दिल्ली तक, और बहुत ही प्रेरणादायी सफर रहा। हमें लगता है हमारी जितनी सखियां सुन रही हैं, जब कई बार वो उदास होती हैं और वो परेशान हो जाती हैं, तो उस समय उन्हें इस बात से इंस्पायर होना चाहिए। अब हमारी जी यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।

कोई बात नहीं दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और हमारे सामने हमारे विशेष सखी विशेष अतिथि हिमानी शिवपुरी जी बैठी हैं और बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं कि गाने की बारी ही नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर हम गाना सुनवाते हैं जिसमें हिमानी जी खुद अभिनय किया है। हिमानी जी ने वैसे उनकी फिल्मों की फेहरिस्त गिनाने चलेंगे तो वक्त कम पड़ेगा, तो पहले हम गाना सुन लेते हैं। ये फिल्म हम आपके हैं कौन, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा है कि हम आपके हैं कौन में हिमानी जी बड़ी अच्छी लग रही हैं। सुनते हैं ये गाना समधन।

0: हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, और चूंकि हिमानी जी की बातें आज बड़ी दिलचस्प लग रही है और हिमानी जी आए हैं तो गाने तो हम आपको रोज सुनाते रहते हैं, तो गानों के अंश हम सुनवाते चलेंगे, हिमानी जी से बातें करते रहेंगे और आपकी टिप्पणियां भी बीच बीच में हम शामिल करते रहेंगे, आपके सवाल भी। एक श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली शब्द सुनते ही एक सुकोमल भावना मन को छूने लगती है। मुझे याद है जब ये कार्यक्रम नया शुरू हुआ था और मेरे शहर में विविध भारती बहुत साफ नहीं सुनाई देता था। मेरी किचन एक खुले एरिया में थी जहां की खुली खिड़की से सटाने पर थोड़ी साफ आवाज आती थी। मैं 2 बजे किचन से फुर्सत होकर, जो मेरे रेस्ट का टाइम होता था, मैं फिर रेडियो लेकर किचन में पहुंच जाती और वहां प्लेटफॉर्म पर बैठकर सखी सहेली सुनती थी। मेरी सासू माँ मुझे किचन के प्लेटफॉर्म पर इस तरह बैठा देखकर रेडियो सुनते हुए देखती तो कहती, ये अजीब पागलपन है तुमको रेडियो सुनने का, पर आज 20 साल हो गए मैं आज भी सखी सहेली उतनी ही तन्मयता से सुनती हूँ। हिमानी जी आज इस कार्यक्रम में मंच पर आई है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वे अपनी आंखों से जीवंत अभिनय करती हैं और इसी तरह वे अपने जीवन में सक्रिय रहे। हिमानी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, हम बीच बीच में शामिल करते रहेंगे। तो हिमानी जी, अब हम एक बार फिर आपकी जर्नी की ओर चलते हैं। आपने बहुत सारी बातें NSD की साझा की, अपने बचपन की साझा की। हमें बताइए कि आपका जो बचपन का गाँव है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड का जो भटवाड़ी गाँव है,
1: भटवाड़ी,
0: हाँ, वहां पर लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसके विकास के लिए उस गांव को आपने गोद ले लिया है, एक बड़ी बात है ये, इसके बारे में बताइए ना, क्या है कहानी है?
1: मैं आपको बताती हूँ ममता जी, शुरू से ही मेरे मन में ये था, क्योंकि मैं

0: लगभग आप कह सकते हैं पहली महिला थी
1: जब
0: जिसने
1: अपने गांव से निकली।
0: जिसने मतलब उत्तराखंड से जो निकली फिल्म इंडस्ट्री में थिएटर रंगमंच में पदार्पण किया। आजकल तो बहुत सारे लोग आ गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम, लेकिन उस वक्त मैं पहली थी
1: जी।
0: लेकिन मेरे मन में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उस टाइम कारण जी बीवी कारण जी डायरेक्टर थे तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम क्या करना चाहती, तो मेरा ये उत्तर था कि मैं अपने क्षेत्र में जाके कुछ काम करना चाहती हूँ
1: जी।
0: तो ये मैं क्या जब एनएसडी में पढ़ती भी थी स्टूडेंट थी तभी भी जब छुट्टियां होती थी तो मैं आती थी और मैं जो वहां के हमारे जो थिएटर के एंथुजियास्टिक लोग थे काफी सारी संस्थाएं थी उनके साथ वर्कशॉप लेती थी, जो मैंने सीखा था वो उनको सिखाती थी और आके नाटक भी करती थी देहरादून सहारनपुर, बच्चों के साथ थिएटर वर्कशॉप करती थी। मैं हमेशा कुछ काम करती रहती हूँ, मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूं। अभी फिलहाल जब मैं आई 3-4 साल पहले एक कॉन्क्लेव हुआ था जो प्रवासी उनको कहते हैं जो बाहर रहते हैं उत्तराखंड से, तो उनसे कि आप क्या कर सकते हैं, तो हमारे उत्तराखंड जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की है, मतलब गांव के गांव ऐसे खाली हो गए हैं,
1: निकल जाते हैं लोग शहरों की ओर
0: क्या करें, और उनको लोगों का ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आजीविका के साधन ही नहीं है। पहाड़ में रहना बड़ा कठिन जीवन, अभी भी मैं 3 बार देहरादून गई लेकिन अपने गांव नहीं जा पाई क्योंकि सड़क ही खराब हो चुकी थी। अब सड़क नहीं है तो कैसे जाएंगे, और गांव में सिर्फ मैं अपने जब गांव में गई जो मैंने गोद लिया तो वहां सिर्फ बूढ़े लोग ही ज्यादातर रहते हैं, महिलाएं हैं 30-35 बूढ़ी महिलाएं और 3-4 मतलब आई थिंक 10-15 वृद्ध पुरुष थे, क्योंकि जितने भी जो कमाने वाले जो यंग लोग हैं वो चले गए हैं पैसा कमाने के लिए, और जब बच्चों की छुट्टियां होती है गर्मियों की तब वो आते हैं महीने में एक बार गर्मी की छुट्टियों में, तो गांव एकदम खाली घर खाली पड़े हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और मैं बचपन में जब जाती थी तो खेतियां होती थी, खेत खाली पड़े थे, कोई है ही नहीं खेती करने के लिए, और वो है तो मुझे लगा कि भाई कुछ करना चाहिए अपने गांव के लिए, तो मैंने इसलिए गांव अडॉप्ट किया। ये एक सपना है, बहुत जाइगेंटिक टास्क है,
1: बहुत ही ये बड़ा सपना देखा है। यहाँ पर हम आपको रोक रहे हैं और ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद इस बातचीत को जारी रखेंगे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती और आज है विशेष सखी सहेली 2 जून सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ और हमने आमंत्रित किया है जानी मानी अदाकारा हिमानी शिवपुरी जी को। हिमानी जी, आप बता रही थी अपने उस गांव के बारे में जो अडॉप्ट किया है आपने, जो हाँ। किया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है, तो वो बताइए फिर क्या हुआ।
1: हाँ, तो मैं फिर काफी साल के बाद जब गांव में गई, इस मतलब घूमने के इरादे से नहीं, ये कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो मैंने सब औरतों से मुलाकात की कि क्या है, तो मैंने उनसे पूछा भाई खेत क्यों खाली है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो एक महिला ने मुझे बताया कि दीदी जी, दीदी बुआ जी ऐसे बोलते हैं गांव में कि मतलब मेरे को बुखार हुआ तो मुझे सीधा देहरादून, 5-6 घंटे लगते हैं देहरादून पहाड़ी रास्ता, सड़क सही रहती है नहीं रहती है। आप लोगों ने कुछ इंटरनेट में और उसमें सोशल मीडिया में फोटोज भी देखे होंगे, कोई बीमार पड़ रहा है तो चारपाई में लेकर जा रहे हैं, बल्कि मैंने अभी एक सीरीज भी करी है वेब सीरीज, उसमें की चारपाई में जा रहे हैं क्योंकि साधन ही नहीं है कुछ, तो कि मुझे देहरादून आना पड़ा बुखार आने के चक्कर में, तो मुझे बड़ा
0: दुख हुआ होगा फिर आपको।
1: और जान, मैंने कहा खेत क्यों खाली पड़े, और मुझे बचपन की यादें में माल्टे बहुत हुआ करते थे, अब एक तो सीजन चेंज भी हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, मतलब आम के आम लग रहा है बताओ पहाड़ों में, आम लगते ही नहीं थे कभी पहाड़ में, आम लग रहे हैं, माल्टे गायब हो गए हैं, और श्रोते ज्यादातर हमारे गांव का श्रोता तो शुक्र है चल रहा है, लेकिन काफी सारे श्रोते भी सूख गए हैं। तो और बंदर का है, भालू का, ये सब का मिनेस है, वो सब ये लोग कहते हैं हम कुछ भी उगाते हैं दीदी जी बुआ जी, कुछ भी उगाते हैं सब
0: खा जाते हैं,
1: खा जाते हैं, भालू आते हैं, बंदर आते हैं उखाड़ के, लंगूर आते हैं, चूहे होते हैं, तो क्या हो करे। तो फिर मैंने लोगों से पूछा जो वहां पे कृषि जो करते हैं, तो कहते हैं कि इनको बीज दे सकते हैं आप, जैसे हल्दी हो गई, अदरक हो गई, तो मैंने ये मुहैया गांव के लोगों को दिलवाए हल्दी और अदरक, वो मैंने उगाया, अच्छी फसल हुई, और एक मैंने कोशिश की कि एम्बुलेंस भी जाए किसी तरह से, तो ताकि बड़े खुश हुए, मतलब उनको लगा कि आस पास के गांव के लोग भी आ गए, कोई अपना बीपी टेस्ट करा रहा है, कोई शुगर टेस्ट करा रहा है, तो धीरे धीरे, और मेरे को यही कहना है ममता जी कि बहुत ये मैंने बहुत बड़ा टास्क ले लिया है, और मैं
0: सच में
1: अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोग आए मेरी मदद करें, ताकि पहाड़ के जो गांव हैं जहाँ पे पलायन की इतनी बड़ी समस्या है वो फिर से बस जाए, वहां पे आजीविका के साधन हो। और एक मेरा मैंने बात की है सरकार से, वहां पे एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, जिसमें मेरे पापा भी कभी पढ़ते थे, उसमें सिर्फ 5 बच्चे पढ़ते हैं, और बल्कि जो स्कूल के टीचर्स वहां पढ़ाते हैं उनके बच्चे खुद वहां नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वहां वो साधन ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो इंग्लिश मीडियम के अलावा कुछ करता ही नहीं है, वो संस्कृत महाविद्यालय है। तो मेरा एक सपना है कि उस स्कूल को मैं थोड़ा सा बेहतर करूं, जिसमें एक सेंटर भी बने औरतें, क्योंकि औरतें ही बची हैं कि वो कढ़ाई बुनाई और कुछ ऐसे काम कर सकती है जिससे उनको आजीविका मिले, और जैसे कुछ गाँव में हो भी रहा है पहाड़ों में, कुछ औरतें काम कर रही है, तो ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ कि लोग स्वावलंबी बने, उनको नीचे ना उतरना पड़े, पलायन ना करना पड़े, वो घर बैठ के कमा सके, तो ऐसे ये एक लंबा सा सपना है, और
0: ये सचमुच बहुत बड़ा सपना है, और हम विविध भारती परिवार की ओर से इस बात के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें, ताकि इतनी सारी लड़कियां खासतौर से जुड़ पाएं, और क्योंकि पहाड़ों पर लड़कियों का जीवन ज्यादा कठिन है,
1: तो ये कठिन है सारा काम, लड़कियां और औरतें ही करती हैं, घास काटने से लेके जानवर चुगाने से लेके सब कुछ।
0: हमने तो ये भी सुना है कि वहां पर पुरुष वर्ग, बहुत सारे पुरुष वर्ग गांव छोड़कर शहरों में आजीविका के लिए चले जाते हैं, और महिलाएं अकेली रह जाती हैं घरों में, और जानवर जो आते हैं, भालू बंदर जिसका जिक्र भी किया, शेर तक आते हैं, तो अकेले फाइट करती हैं, लड़ाई करती हैं उनको अपने बचाव के लिए। तो ये पहाड़ों की महिलाओं को हम सलाम करते हैं,
1: बिल्कुल
0: सलाम तो हम आपको भी कर रहे हैं,
1: पहाड़ियों पहाड़ी महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं
0: जी जी,
1: और जितने भी मैं आपको बताऊं आंदोलन पहाड़ में चले हैं, उनमें सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का रहा है, चाहे वो चिपको आंदोलन जो हमारे भगुना जी ने या चंडी प्रसाद भट्ट जी ने चलाया, शराबबंदी आंदोलन, महिलाओं ने ही उसका आगे बढ़कर सारे पेड़ों से कौन चिपकी थी, महिलाएं ही चिपकी थी।
0: क्या बात है सचमुच। तो हम इसी बात पर आज आपके हाथों एक पौधारोपण भी करेंगे अभी इस प्रोग्राम के बाद, 4 बजे जब हमारा प्रोग्राम सजीव प्रसारण खत्म होगा यहाँ विविध भारती के परिसर में, और उस पौधे का नाम हम सखी सहेली हिमानी शिवपुरी रखेंगे। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात होगी,
1: ये मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है और धन्यवाद। और पेड़ लगाना ये आपने मुझे कहा, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग अगर एक एक पेड़ लगाए तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये एनवायरनमेंट इसके इसमें सुधार होने का, क्योंकि हम ये सोच रहे कि सरकार सरकार ही क्यों करे, सरकार को भी करना चाहिए जरूर, हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन हमारा भी कर्तव्य निजी स्तर पर कि हम जो आगे पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए रहने लायक तो रहे।
0: बाप दादे ने जो पेड़ लगाए हैं आम जामुन के, बस वही
1: हम खा रहे हैं, वो भी कट चुके हैं।
0: जी बिल्कुल। तो आज आपने बहुत अच्छा संदेश और बड़ा संदेश दिया है हमारे सखियों के लिए, सखाओं के लिए। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, हालांकि हमारे लिए आपकी फिल्मों से गाना चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिल्मों की लंबी फहरिस्त है, खामोशी दमे

0: म्यूजिकल कुछ कुछ होता है, हम आपके यहाँ कौन का गाना सुनवा ही दिया, कभी खुशी कभी गम, मैं प्रेम की दीवानी, तो यहाँ पर हम दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गाना सुनवाते हैं।
1: जी जरूर।
0: बस इससे पर्दे पर हिमानी जी को देखिए और महसूस कीजिए, वैसे तो फेसबुक लाइव में आप देख ही रहे उन्हें।
2: ये कुड़िया नशे दिया कुड़िया, मुंडी गली दे कुंडे, ये दिया कुड़िया।

0: विविध भारती से ये है विशेष सखी सहेली कार्यक्रम और हिमानी जी के अभिनय यात्रा बहुत बड़ी और बहुत समृद्ध है और मुकम्मल है। बहुत सारे श्रोता भी सवाल पूछ रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं हिमानी जी को, हमराही की देवकी भौजाई बहुत मशहूर हुई थी देवकी भौजाई से, यहाँ तक कि लोग अपने घरों में नाम रखने लगे थे भाभी को भौजाई देवकी भौजाई, है ना, याद है आपको?
1: जी जी।
0: और ससुराल सिमर का रज्जो द्विवेदी, मिसेज कौशिक की पांच बहुएं मिसेज लाजवंती और राधा जी, सुलक्षणा हसरते की सुलक्षणा, जाने कितने किरदार आपने निभाए हैं। तो हमारी श्रोताओं की ओर से सवाल है कि आपको कौन सा वाला किरदार ज्यादा अच्छा लगता है?
1: देखिए, ये तो बहुत ही कठिन सवाल है क्योंकि ये ऐसा है कि क्योंकि मैंने तो 250 से ऊपर फिल्में करी है, तो मैं गांधारी का ही एग्जांपल दूंगी क्योंकि आजकल तो पहले तो 10-12 बच्चे होते थे, फिर आजकल तो एक भी होता है मुश्किल से दो। तो गांधारी से कोई पूछता कि कौन सा तुम्हें सबसे प्रिय है, ऐसे मैंने जितने भी किरदार किए हैं वो सब मुझे प्यारे हैं। क्योंकि जैसे माँ को अपने बच्चे, क्योंकि हमारे ही क्रिएशन होता है, लेकिन जैसे कि आपने अभी जिक्र किया देवकी भौजाई, इसलिए कुछ खास कुछ किरदार, सारे किरदार बहुत प्यारे हैं, लेकिन कुछ किरदार जैसे कि देवकी भौजाई, क्योंकि वो पहला किरदार था। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं जब दिल्ली में थिएटर करती थी ना, तो एनएचडी रेपर्टरी वो गवर्नमेंट जॉब था ना, तो वो नॉर्मल टाइमिंग वो ही होता था 9 to 5, और जब शोज होते थे हमारे प्लेस तब हम शाम को प्ले करके लेट लौटते थे, नहीं तो चार्टर्ड बसेस। अब गरीब जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते, थिएटर पैसा नहीं होता, तो जमुना पार रहते थे मयूर विहार में। आजकल तो मयूर विहार एशियाड के बाद बड़े पॉश कॉलोनी बन गई
0: जी,
1: तो उस टाइम वो थी स्ट्रगलर्स की। तो मैं चार्टर्ड बस से जाके मंडी हाउस आती थी और शाम को जैसे होता था ऑफिस वाले लोग जाते थे, तो जैसे बैठे रहते हैं, अब रोज देख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे एक महिला आ रही है, तो ऐसी जैसे बात हो रही कि आप क्या करती हैं, तो मैं बोलती थी थिएटर करती हूँ। तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वैसे क्या करते आदमी औरत रोज सुबह कुछ तो करती होगी। लेकिन जब मैंने हमराही किया देवकी भौजाई का, तब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ, कि पहले से ही लोग बोलने लगे अरे देवकी भौजाई, क्योंकि कैरेक्टर आर्टिस्ट ना, हम लोग कैरेक्टर के नाम से हमको जानने लगते हैं। और जो लोग उस टाइम देखते थे, आज भी कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग, आजकल के यंग लोग ने तो नहीं देखा दूरदर्शन के टाइम पे, पर उन्हें आज भी देवकी भौजाई याद है। और वो मैं एनएसडी से फ्रेश निकली थी, तो इतनी मेहनत से तैयार किया था कि वो कैसे बात करेगी, कैसे, मैंने थोड़ा सा राजस्थानी पुट डाला था, मुझे तो नहीं पता था, पर मेरे हस्बैंड जयपुर रह चुके थे, तो रोज मैं उनको परेशान करती थी अपनी स्क्रिप्ट ले जाके कि इसमें राजस्थानी पुट डालो, क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखी कम थी, तो मैंने डायरेक्टर के साथ बात करके, प्रोड्यूसर के साथ, कि जो पढ़े लिखे कम होते तो उनकी जो अपनी रीजनल भाषा है वो आ जाती है, और वो किस तरह से आंखें, खूब मेहनत से तैयार किया। वैसे तो जो भी मैंने रोल किया पूरी मेहनत से किया, लेकिन उससे मुझे पहली बार ख्याति मिली थी ऐसी, अगर कहें तो हम आपके कौन, क्योंकि वो मेरी पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म थी, तो वो भी मेरा फेवरेट है। वैसे तो मैंने कहा सारे दिलवाले दुल्हनिया की भी, रज्जू बुआ बहुत फेमस है, हीरो नंबर वन की बुआ, और परदेश की बुआ, और बंधन, बहुत सारे किरदार,
0: उमराव जान में भी आपने काम किया,
1: उमराव जान में भी काम किया, और ये मेरा जो धारावाहिक आपने सब बोला, वो सुलक्षणा उस टाइम जो मैंने रोल किया था हसरते में, जी तभी आया था, बहुत बोल्ड कैरेक्टर था
0: जी जी,
1: सुलक्षणा और ससुराल सिमर का की जो था। और इन दिनों मेरा एक धारावाहिक चला 7 साल हप्पू के उल्टन पलटन,
0: जी जी जी,
1: वो बहुत किरदार, कटोरी अम्मा, वो भी बहुत लोगों ने आज तक उसको सराहा है, पसंद किया है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस मामले में कि मैंने अलग अलग किस्म के रोल किए, चाहे वो फिल्म थिएटर में तो खैर करे ही हैं, लेकिन फिल्मों में बहुत मुश्किल होता है कि आप मैच्योर हैं तो आप माँ के रोल करने, और एक तरह के रोल होते थे, लेकिन मैं बड़ी इस मामले में लकी हूँ कि मैंने माँ का रोल भी किया, तो बंधन में जो मेरी माँ है और मुझे कुछ कहना है, या मैं प्रेम की दीवानी या बीवी नंबर वन की माँ, ये बिल्कुल अलग है। ऐसी बुआ का आई स्टार्टेड विद बुआ या चाची जान, तो बुआ का कैरेक्टर हीरो नंबर वन में बुआ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम परदेश की बुआ या अपने DDLJ की बुआ। तो इस मामले में मैं, क्योंकि मैं कॉमेडी भी किया है, मैंने नेगेटिव भी किया है, सीरियस भी किया है
0: जी। और अपने श्रोताओं को हम याद दिला दें कि श्याम बेनेगल की फिल्म सूरज

0: उसके बाद ये कमर्शियल फिल्में, तो वहां एक तरफ कला फिल्म, एक तरफ ये कमर्शियल फिल्में, तो कैसा आप कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं? हमारे श्रोताओं की ओर से ये सवाल है कि आप जो विविध किरदार निभाती हैं, तो रोने का, हंसने का, फिर नेगेटिव किरदार, ये सब कैसे एक साथ कर लेती हैं? ये बताइए, राज की बात है ये तो।
1: कोई राज की बात है, ये क्या कहते हैं, हम किरदार करते हैं तो क्या करते हैं, जिंदगी जीते हैं ना, उस किरदार में घुस जाते हैं, उसको जीवंत करते हैं। और हर किरदार, जैसे कि लोग कहते कि अरे आप इतने अलग अलग एक साथ कैसे, क्या हम जिंदगी में कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, और कभी हमारे मन में गुस्सा भी होता है, तो थोड़े नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो ये सब हम में है। और हम ये जिंदगी इतनी बड़ी, मतलब एक थिएटर ही है, शेक्सपियर ने भी कहा कि ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज,
0: रंगमंच है,
1: रंगमंच है जिंदगी। तो आप देखिए, सारे किरदार आपको आप आसपास मिलेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके वही कर देते हैं। ये तो जिंदगी सिखाती है
0: जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक गाना सुनिए।

0: दोनों तराजू अगर एक साथ बैलेंस हो जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर दोनों में से चॉइस करने की बात आएगी तो मुझे लगता है इंसानियत ज्यादा बड़ी है, वो सब ज्यादा बड़ी चीज है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब एक गाना सुनवाते हैं जिसे जिसकी फरमाइश आपने ही की है, गाइड फिल्म का गाना
0: जी,
1: एक अंश सुनते हैं।

0: गाइड फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया हिमानी जी की चॉइस पर। और हिमानी जी बताइए कि आज की युवा पीढ़ी जो खासकर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अभिनय के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, तो उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए? आपने तो भी एनएसडी किया और बिल्कुल छलांग लगा दी आपने, लेकिन उन लड़कियों के लिए कहिए जो गाँव में, छोटे शहरों में, कस्बों में रहती हैं, क्या तैयारी करें, कैसे आए?
1: एक तो ये कि मैं कहना चाहूंगी कि जो ये अभिनय की दुनिया है ये इतनी ग्लैमरस नहीं जितनी लगती है। ग्लैमर है जरूर, लेकिन आपको प्रिपेयर करना होगा कि इसमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए और सिंसेरिटी चाहिए, मेहनत चाहिए, जो कि किसी भी प्रोफेशन में करने के लिए होता है, लेकिन इसमें खासकर बहुत। और टाइमिंग्स, घंटे बहुत है। अभी भी आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो हीरोइन है टॉप पे पहुंच कर, दीपिका पादुकोण है, 8 घंटे या 6 घंटे के लिए लड़ रही हैं, उनको काम कम मिल रहा है, या मतलब जो लोग दे रहे हैं दे रहे हैं, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं काफी सारे लंबे आवर्स होते हैं। और खासकर जो नए लोग आते हैं तो उनके तो बहुत लंबे आवर्स होते हैं, संघर्ष बहुत होता है। तो अगर आप में संघर्ष करने का मादा है,
0: लियाकत है,
1: हाँ, और सिंसेरिटी है, सिर्फ ग्लैमर की वजह से मत आइए, क्योंकि ये आसान प्रोफेशन नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि अगर आप में अदम्य प्रेम है अभिनय करने का, या आजकल तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स है, अभिनय कर सकती है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कर सकती हैं, कैमरामैन, आजकल औरतें कैमरामैन भी हो रही हैं, साउंड इंजीनियर्स, इतनी सारी विधाएं हैं। तो अगर आपकी एम्बिशन है तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार है तो जरूर आइए। लेकिन अगर आप इजी वे चाहती हैं कि मतलब रातों रात आप स्टार बन जाए, तो सॉरी, फिर तो आपको मतलब कहना तो नहीं चाहिए, या तो फिर कपूर खानदान

0: होना पड़ेगा या शाहरुख खान खान होना पड़ेगा
1: जी बिल्कुल।
0: आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और अगर आप में टैलेंट है और सिंसेरिटी है और आप मेहनत करने को तैयार है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आउटसाइडर्स भी आए हैं, सक्सीड हुए हैं।
1: बिल्कुल, और आपने खुद नाम लिया शाहरुख खान, तो कहीं आप
0: शाहरुख खान भी आउटसाइडर था, अक्षय कुमार जी आउटसाइडर थे,
1: बहुत संघर्ष था उनके जीवन में भी, और कहीं आप सलमान खान की माँ बनती हैं, कहीं कहीं इन बड़े जो हीरो हीरोइन हीरो है इनकी भाभी बनती हैं, चाची बनती हैं, इतने बड़े बड़े रोल आपने निभाए हैं। अब हम छोटे छोटे सवाल आपसे जानना चाहते हैं, बताइए हमें कि एक महिला के रूप में आपको किस तरह के संघर्ष करने पड़े, किस तरह की

0: आउटसाइडर था, अक्षय कुमार जी आउटसाइडर थे,
1: बहुत संघर्ष था उनके जीवन में भी, और कहीं आप सलमान खान की माँ बनती हैं, कहीं किस कहीं इन बड़े जो हीरो हीरोइन हीरो है इनकी भाभी बनती है, चाची बनती है, इतने बड़े बड़े रोल आपने निभाए हैं। अब हम छोटे छोटे सवाल आपसे जानना चाहते हैं, बताइए हमें कि एक महिला के रूप में आपको किस तरह के संघर्ष करने पड़े, किस तरह की

0: मेहनत कहाँ गई, हमने क्या पढ़ाई नहीं करी, या हम जो रोल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं हमको डबली प्रूफ करना चाहिए करना पड़ता है। और महिला के साथ और साथ में जिम्मेदारी भी आती है कि महिला कि अगर शादी होती है, शादी तो होगी और उसके बच्चे होते हैं, तो महिला माँ बनती है तो उसको घर भी संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, बाहर का फ्रंट भी संभालना पड़ता है, तो एक ये सब
1: दोरी तेरी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल। और एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है बताओ हिमानी शिवपुरी?
0: स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो स्त्री है, शक्ति का रूप है।
1: बिल्कुल। और अपनी शक्ति को तलाशे और आपकी इस
0: लंबी यात्रा है और किसी भी चीज का सामना कर सकती है, वो सब औरतों ने प्रूव किया है।
1: जी अब गाना सुनवाए एक
0: जरूर।
1: कौन सा गाना? खामोशी द म्यूजिकल।
0: जी

0: हिमानी जी, बहुत सारे श्रोता कमेंट भेज रहे हैं, तो हम सबके शामिल तो नहीं कर पा रहे, लेकिन जो मिले जुले कमेंट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भट्ट जी तो रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में भी थे, अब पता नहीं वो आपके परिवार से थे या कोई और थे, और आपने जिक्र भी किया अपने पिताजी का, तो शायद इसलिए उन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी सादगी, मधुर व्यक्तित्व और शानदार अभिनय ने भारतीय सिनेमा को अनेक यादगार किरदार दिए हैं। विविध भारती पर आपको सुनना अत्यंत सुखद लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने चार चांद लगा दिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हिमानी जी के लिए एक वाक्य याद आ रहा है, मेरी मम्मी बिल्कुल हिमानी जी जैसी ही लगती है, तो उनका नाम भी हम लोगों ने हिमानी मम्मी, एक मामी, हिमानी मामी रखा है, तो हिमानी जी को देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए दी है। कुछ श्रोताओं ने पूछा है कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं।
1: सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं श्रोताओं का करना चाहती हूँ, और मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, 40 साल से ऊपर हो गया है, ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है, आप लोग का प्यार जो मुझे मिलता है आज रेडियो के द्वारा मिल रहा है। मैं सड़क पे चलती हूँ, लोग आते हैं और मिलते हैं और मेरे पुराने किरदारों की बात करते हैं, रंगमंच की बात करते हैं जिन्होंने थिएटर, तो ये आपका प्यार है, प्रोत्साहन है, इसी की वजह से मैं आज ये काम कर रही हूं।
0: हिमानी जी, आपकी अभिनय यात्रा और आपकी निजी यात्रा इतनी दिलचस्प है, हमें तो लग रहा है कि अब ये बातचीत खत्म ना करें, तो बस अब ये आपसे हम वादा करते हैं, और आप वादा कीजिए कि आप विविध भारती के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आएंगी।
1: जरूर हम
0: जरूर आऊंगी। अब आपने सबके सामने वादा कर दिया, हमारा वादा पक्का रहा। अब बिल्कुल वक्त नहीं, अब चलने से पहले हम बता दें कि आज के फेसबुक लाइव की कमान जुबैर खान और तनिष्का नाइक ने संभाली, तकनीकी सहयोग किरण बंग, भावना सिंदल, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नाइक का था, और हमारे उद्घोषक साथी मंदाकिनी जोशी, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और

हमारी बहुत सारी सखियां सहेलियां जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, कार्यक्रम प्रमुख श्री संतोष जाधव की प्रेरणा और सहयोग से ये प्रसारण सफल हुआ, और हेड ऑफ द इंजीनियरिंग राजेश बेलदार सर और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी सोपान तायडे जी, और साथ में किशोर, किशन, एकता और हमारे विविध भारती की पूरी टीम, हमारी जो सखियां हैं इस कार्यक्रम में नियमित रूप से आया करती हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपसे अभी थोड़ी देर बाद मुखातिब होंगी, तो विविध भारती के फेसबुक पेज को का दामन थामे रखिए। फिलहाल अब हम इजाजत ले रहे हैं। आप सभी को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्युलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार है जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा, फिल्म ओ माय गॉड, बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्युलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ। ये है पारसनाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
0: दिल्ली में जब तक आप रहे तो कितने ऐसे कलाकार थे, बड़े कलाकार, जिनके साथ आपकी बहुत यादगार मुलाकातें रहीं संगीत की दुनिया के?
1: ईश्वर के आशीर्वाद से जितने भी दिल्ली के जितने बड़े कलाकार हैं उन सभी के साथ मुझे मौका मिला कि मैंने सबसे आशीर्वाद लिया, सभी के साथ संगत भी की और सबके साथ ट्रैवल भी किया, टूर भी किया, रिकॉर्डिंग्स भी की। चाहे आप म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम ले लीजिए, चाहे दिल्ली में क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्डिंग, डिवोशनल फोक म्यूजिक के साथ साथ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है वो है क्लासिकल डांस का, जहां बहुत बड़े बड़े जैसे उमा शर्मा जी हैं और शोभना नारायण जी हैं, सोनल मानसिंह जी हैं।

0: और बिरजू महाराज जी का पूरा इंस्टीट्यूट है वहां, और बहुत सारे इनके बैलेज में बजाना, इनके प्रोग्राम में बजाना। और जब बैलेज में रिकॉर्डिंग होती थी तो हमारे पास 20-20 पेज का, 30-30 पेज का नोटेशन आता था बैले का, तो वो पढ़ के बजाना लाइव रिकॉर्डिंग में, दैट वाज अ चैलेंजिंग जॉब
1: बिल्कुल।
0: और उसके बाद फिर बैले रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में, जैसे जो फोक इंडस्ट्री है पंजाब की, यूपी की और गढ़वाल की, वहां पे बहुत सारे लद्दाख से लोग आते हैं,
1: अच्छा
0: आसाम से लोग आते हैं, कजाकिस्तान से लोग आते हैं अपने तरीके के रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। वहां हमने कितनी रिकॉर्डिंग्स की है वहां पे,
1: वाह वाह।
0: और दिल्ली इंडस्ट्री में जो नामचिन म्यूजिक डायरेक्टर का आप बोल लीजिए, स्टूडियोज बोल लीजिए, जैसे के चरणजी जहूजा जी, और मेरे चाचा जी दिनेश कुमार जी, और जसपाल मुनी जी, हरिओम जी, और पंडित ज्वाला प्रसाद जी, और बहुत गुणी म्यूजिक डर, मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त श्री चरणजीत ओझा जी भी, पूरा मतलब पंजाब के जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं सबका उन्होंने नाम किया है अपने साथ जोड़ के
1: जी।
0: और जवाहर बट्टल जी, बहुत बड़े बड़े जितने भी संगीतज्ञ रहे हैं, और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा, मैं माफी चाहता हूँ। तो पिताजी का भी अपना एक अलग
1: दर्जा
0: वर्चस्व रहा है दिल्ली में। पिताजी का जब समय रिकॉर्डिंग में ऐसा होता था कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक किया जाता था। आप सोचिए कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब हैं, बट एक आर्टिस्ट का एक इतना प्यार, इतना सम्मान, और इतने आर्टिस्ट की, उनके प्लेइंग की, उनके इमोशन की इतनी कदर है, इतना प्रेम है उनको मिल रहा है कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक हो रहा है, एक बहुत बड़े सम्मान की बात है।
1: वाह।
0: फिर पिताजी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत सारा काम किया, और फिर वो सब होते होते कमर्शियल मुझे भी शौक चढ़ा अरेंजमेंट का।
1: अच्छा।
0: हाँ, पिताजी को देख के, मेरे चाचा जी को देख के, मेरे चाचा जी श्री दिनेश कुमार जी,
1: जी जी,
0: वो भी बांसुरी वादक है और म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में बहुत बड़े बड़े काम किए।
1: जी जी।
0: सो ये सब माहौल पूरा देख के वो फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी अरेंजमेंट करना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश की फोक म्यूजिक में और डिवोशनल म्यूजिक में, और कुछ कुछ गजल वगैरह भी मैंने कुछ अरेंज किया, कंपोज किया, दिल्ली में रिलीज किया। तो ये इस तरीके का रहा सफर,
1: ये सफर इस तरह से चलता रहा। हमारी बातचीत के सफर में अब एक गाने की जगह बनाते हैं
0: जरूर।
1: तो आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए आपकी पसंद का कोई गाना।
1: अच्छा। देखिए, आप ही का पसंदीदा गाना मैं बता रहा हूं
0: जी,
1: और वो है तुम्हें देखती हूं तो लगता है ऐसे। ये आप बांसुरी पर काफी बजाते रहे हैं।
0: जी जी जी,
1: है ना
0: जी। जो मैं आपको बांसुरी सुना रहा हूं ना
1: जी,
0: ये बांसुरी भी मेरी ही बनाई हुई है।
1: क्या?
0: पिताजी के साथ।
1: वाह।
0: और ये बांसुरी कम से कम नहीं तो मैं बचपन से इस बांसुरी पर रियाज कर रहा हूं।
1: वाह।
0: आप देख रहे होंगे इस पे ये निशान।
1: जी जी जी जी।
0: और ये आप जब रियाज करते हैं तो ये भी निशान पड़ जाते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ, उंगलियों के।
0: ये बहुत पुरानी बांसुरी मेरी।
1: वाह।
0: और ये जो थ्रेडिंग है
1: जी,
0: ये देख रहे हैं, ये वैकुंठ वेणु की थ्रेडिंग है।
1: अच्छा।
0: तो वैकुंठ वेणु जो है, लॉकडाउन के समय पे पिताजी, मेरे भाई और हमने सोचा कि अपने घराने को, अपने बुजुर्गों को, अपने दादा गुरु को, और अपने संगीत को, अपने सास को एक इनिशिएटिव डेडिकेट करना चाहिए। तो तब एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया था हमने, जिसके नाम से चैनल रिलीज किया वैकुंठ वेणु। तो वैकुंठ तो हम सब जानते हैं
1: बिल्कुल,
0: जहां से ना वापस आने का मन होता है, ना अगर उस तरफ मन और दृष्टि चली जाए, आपको एहसास हो जाए कि वो क्या है, तो फिर आप वापस नहीं आते वहां से। तो जब मैं बांसुरी बजाता हूं, मुझे वो जो होना है, जो प्रेजेंट टाइम पे वो जो सेंस है, जो इमोशन है, वो जो जुड़ाव है संगीत और सुर के और सांस के साथ
1: जी,
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे वापस नहीं आना मुझे।
1: क्या बात है।
0: इसके लिए उसका नाम रखा वैकुंठ
1: वेणु,
0: और वेणु क्योंकि बांसुरी को वेणु भी बोलते हैं
1: जी जी,
0: तो इसलिए वैकुंठ वेणु नाम रखा हमारे इनिशिएटिव का। वो था धरोहर का, तो हमारे यूट्यूब चैनल रिलीज किया, उसमें अपने संगीत जगत के, मुंबई के इंडस्ट्री के जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे श्री अनूप जलोटा जी हों, चाहे हरिहरन जी हों, चाहे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हों
1: जी,
0: और श्रेया घोषाल जी से लेके सलीम सुलेमान जी से लेके विशाल शेखर जी से लेके सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया
1: वाह,
0: और इस बात की, इस इनिशिएटिव की तारीफ की
1: जी।
0: और उन सभी ने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया। और इस दौरान जब इस इनिशिएटिव का शुरुआत किया था तो हम सबकी ये प्रार्थना थी कि जितने बांसुरी वादक और शरणाई वादक हैं, कोशिश करूं कि मैं इस इनिशिएटिव में, क्योंकि ये एक पूजा जैसी है।
1: बिल्कुल,
0: जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उस पूजा की आरती सब लोग ले और उसमें जो बना कड़ा प्रसाद है वो सबको मिले,
1: सबको मिले,
0: ये आप चाहेंगे। क्योंकि पूजा आप कर रहे हैं, ये आपकी आत्मा से कर रहे हैं, आपका शरीर नहीं कर रहा, आपकी सोच कर रही है, आपकी आत्मा कर रही है, और वो आत्मा आपको ईश्वर से जोड़ रही है।
1: बिल्कुल,
0: और वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो उसी सोच से फिर मैंने कोशिश की कि जितने भी बांसुरी वादक जुड़ सके, अब उसमें पंडित प्रवीण गोखिंडे जी ने बड़ा अच्छा योगदान दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे, उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया, पंडित अजय प्रसन्ना जी ने किया
1: जी,
0: और अश्विन श्रीनिवासन जी ने किया
1: जी,
0: एंड नवीन अन्ना जी ने किया। ये सब बड़े इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं
1: जी, जी
0: हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं। और राकेश जी ने अपना एक इमोशन व्यक्त किया था, वो बजा नहीं पाए थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, उन्होंने जी भी बजा नहीं पाए थे, पर उन्होंने अपना भावना प्रकट की थी, अभिव्यक्त किया था। और फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, कजन ब्रदर्स हैं, शहनाई बजाते हैं
1: जी, जी
0: संजीव कुमार जी, श्री संजीव कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, और तीन भाई हैं, वो एक तबला बजाते हैं, दो शहनाई बजाते हैं
1: जी जी।
0: और फिर और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे, काफी देवप्रिया जी जो हरि जी की शिष्या हैं वो जुड़ी थी, और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे। फिर मेरे पिताजी ने खुद हाजिरी दी थी इसमें,
1: वाह,
0: उन्होंने राग मालकोस बजाया था
1: जी,
0: मेरे भाई ने राग हंसुधनी बजाया था, और मैंने राग दुर्गा और एक और दो राग बजाए थे। तो ये हमारा वैकुंठ रेणुका का बनाया हुआ बांसुरी है।
1: वाह वाह वाह,
0: जो मैं आपको इतनी देर से सुना रहा हूँ
1: जी, जी, जी। क्या बात है।
0: फिर मेरे पास दो और इंस्ट्रूमेंट है
1: जी,
0: जो मैं आपको सुनाऊंगा
1: जरूर,
0: उनके बारे में बताऊंगा
1: जी।

0: अरे जी, बहुत आनंद आ रहा है आपकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में जानकर और इस जीवन यात्रा के दिलचस्प पहलुओं से आप हमें वाकिफ करवा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक का जो मामला है, ये किस तरह से जमा और कब आप समंदर वाले शहर की तरफ आए?
1: जी, मैं दिल्ली में जब

0: कुछ साल हो गए काम करते हुए,
1: जी
0: तो कुछ लोग ये प्रस्ताव देके पिताजी के पास जाते थे, दिल्ली के जो नामचिन काम करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, पिताजी के मित्र हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं जो पिताजी के करीबी दोस्त रहे हैं, तो वो प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे कि ये बच्चा केपेबल है आगे बढ़ने के, तो इसको सिर्फ एक लिमिट तक सीमित ना रखा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये डिसीजन बहुत बड़ा था पिताजी का और परिवार का कि उस एज में मुझे भेजना। तो फिर हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिल्ली के बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जसपाल मोनी जी, मैं उनकी रिकॉर्डिंग में ही था, तो जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई वो बहुत खुश हुए, बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे, उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ घर पे। तो वो घर मुझे ड्रॉप करने आए, उन्होंने पिताजी के साथ मिले, वो मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पिताजी भी उनको बहुत प्यार देते। सो उन्होंने पहली बार इस तरीके से प्रस्ताव रखा कि पारस को मुंबई आप जरूर भेजिए। वहां से फिर कड़ी बनी मुंबई की आने की।
1: अच्छा, तो इस तरह से
0: एक मुंबई आना हुआ
1: जसपाल मोनी।
0: हाँ, वो इतना आसान जिस तरीके से बताया मैंने, इतना आसान था नहीं
1: जी,
0: बट मैं वो इमोशन आपको मैं बताना चाहूं तो भी नहीं बता सकता
1: जी,
0: बट इट वॉज डिफिकल्ट डिसीजन फॉर फ्रॉम फैमिली साइड। बट वो बोलते ना कि वो अगर कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तो
1: त्याग करना पड़ता,
0: त्याग करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी ममता का, प्यार का, अपने उस लगाव का त्याग किया
1: जी
0: उस चीज में मेरे लिए।
1: बिल्कुल, एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो है मुंबई और दिल्ली दो अलग अलग दुनियाएं हैं। मुंबई एक बिल्कुल अलग संसार है और दिल्ली एक अलग संसार है।
0: बिल्कुल,
1: मुंबई में आपकी एक लंबी यात्रा रही है और उस यात्रा के विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन किन किन फिल्मों में जिनका आप जिक्र करना चाहें, आपने बांसुरी बजाई है उसके बारे में बताइए, और कुछ टेलीविजन सीरियल्स में भी बजाई है उनका भी जिक्र कीजिए
0: जी। वैसे तो एक समय के बाद अभी वो लिस्ट बनाना छोड़ दिया है
1: जी,
0: तो अभी चाहे वो दंगल मूवी हो
1: जी जी,
0: और क्रिश 3 हो, काई पोचे हो, बधाई हो, तलवार हो, ओ माय गॉड हो,
1: ओ माय गॉड के बांसुरी पीस तो बहुत लोकप्रिय हुए
0: जी जी जी,
1: है ना, गानों में भी और बैकग्राउंड के जो भी पीसेस हैं
0: जी
1: जी जी, और
0: ऊंचाई एक पिक्चर आई थी ऊंचाई
1: जी जी, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की, अमिताभ बच्चन थे,
0: एक मिली पिक्चर आई थी
1: जी,
0: केदारनाथ, नजरअंदाज, धड़क पिक्चर है, मिशन मंगल है,
1: वाह वाह,
0: मुन्ना भाई एमबीपीएस रिटर्न है,
1: क्या बात है,
0: दबंग 3 है, दृश्यम है,
1: ये तो बहुत लंबी फहरिस्त है,
0: सरबजीत है, फितूर पिक्चर है, नोटबुक पिक्चर है, गुडबाय है, मन मर्जियां है,
1: वाह वाह,
0: शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान,
1: हाँ दोनों पार्ट,
0: हाँ दम लगा के हईशा, जॉली LLB,
1: वाह वाह,
0: बहुत सारी पिक्चर है
1: जी, बिल्कुल
0: बहुत सारी है। तो इनमें क्या रहा है कि कुछ मूवीज में मैंने सॉन्ग्स में बजाया है,
1: हाँ,
0: और कुछ मूवीज में मैंने बैकग्राउंड स्कोर बजाया है
1: जी जी, बिल्कुल,
0: बट बिकॉज एज आई हैव बीन पार्ट ऑफ इट सो इट्स माई पार्ट ऑफ जर्नी।

0: तरफ फिल्मों में आप बजा रहे हैं, दूसरी तरफ शास्त्रीय महफिलों में आप बजा रहे हैं, तीसरी तरफ फ्यूजन की अपनी एक दुनिया है, तो इन सब के बीच में तालमेल कितना मुश्किल है और सबसे ज्यादा एंजॉय इसमें से किस पहलू को आप करते हैं?
1: एंजॉय तो मैं शास्त्रीय संगीत को ज्यादा करता हूं
0: जी,
1: और उसके बाद फिर फ्यूजन में ज्यादा करता हूं, फिर मैं फिल्म संगीत को मैं एंजॉय करता हूं
0: जी जी।
1: बट क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रहते हुए एक सिलसिलेदार जो गाना बजाना होता है उसको उसी तरीके से जीना होता है, उसी तरीके से रियाज करना होता है, वैसे ही आपके संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही आप जीने लगते हैं,
0: वो फटाफट संस्कृति नहीं चलती
1: वो, हाँ वो नहीं चलता है वहां पे, तो वो आपको एक अनुशासन में लेके आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे
0: बिल्कुल।
1: और फिर उसके बाद फ्यूजन में जब एक खास बात यह है कि आप जितना वास्ट सोच सको, जितना बड़ा सोच सकते हैं आप, आपके पास कोई बंदिश नहीं है, क्लासिकल में बंदिश है, शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, यहाँ बंदिश नहीं है,
0: बहुत एक्सपेरिमेंट
1: है। और फिल्म म्यूजिक में क्या है कि आप, जैसा कि आपको याद है ओ माय गॉड मूवी,
0: जी बिल्कुल,
1: मैंने तो सिर्फ फिल्म का नाम लिया, आपने बोला वो कृष्णा थीम,
0: जी जी,
1: तो वो जो लोकप्रियता है, लोगों तक घर घर तक पहुंचना एक आर्टिस्ट का, वो फिल्म म्यूजिक के जादू है।
0: एक और पहलू है आपका और वो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फिल्मी गानों की ट्यून्स आपने बजाई हैं, और दिलचस्प बात ये है कि हम विविध भारती में बैठे हैं जहां से जब भी बीच में फिलर्स बजते हैं तो आपकी बांसुरी अक्सर, बल्कि मैं कहूं कि रोज गूंजा करती है।
1: क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जान के कि मेरी बांसुरी, मेरा बजाया हुआ संगीत आपके विविध भारती में रेगुलरली बजता है, तो मैं मतलब यहां हमेशा हूं आपके साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, फिल्म म्यूजिक में एक जमाने से बांसुरी एक बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट रहा है
1: जी,
0: तो पुराने फिल्मी गानों में से वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो बांसुरी का पीस है?
1: जी, पुराने में तो हम सब जानते हैं हीरो धुन,
0: वो एक हीरो का एक बहुत ही शानदार पीस है,
1: वो एक वो पीस है, और फिर उसके बाद एक गाना है जाने जा, उसमें वो फ्लूट का एक बहुत प्यारा पीस है,
0: वाह,
1: और फिर एक जिसमें मनोरी दा जो हमारे इंडस्ट्री इंडस्ट्री के
0: मेटल फ्लूट बजाया करते
1: थे, मेटल फ्लूट हो नहीं, ये मेटल फ्लूट है सर
0: जी, बिल्कुल,
1: दिस इज सिल्वर प्लेटेड,
0: वाह,
1: सिल्वर प्लेटेड फ्लूट है ये, मतलब सिल्वर प्लेटेड एज इन सिल्वर हेड है इसका, चांदी का हेड है, बाकी सिल्वर कोटेड है
0: जी जी,
1: सो इसका बजाना और इसका टेक्निक और इसकी साउंड एकदम
0: डिफरेंट है, बिल्कुल।
1: सो एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एज पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री,
0: ये भी बजाना होता है,
1: अलग अलग साउंड्स भी मैं बजाता हूँ
0: जी,
1: सो जिसमें से इंग्लिश फ्लूट है, इसको मेटल फ्लूट भी बोलते हैं, इंग्लिश फ्लूट भी बोलते हैं
0: जी,
1: और सिल्वर फ्लूट भी बोलते हैं, कॉन्सर्ट फ्लूट भी बोलते हैं
0: जी,
1: सो ये इसका

0: तो ये
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
0: ये ओकेरिनो है
1: जी जी,
0: ये आप देख रहे होंगे इसका शेप ही कुछ अलग है।
1: हाँ ये तो कुछ अलग ही चीज है।
0: दिस इज ओकेरिनो
1: जी।

0: उसका ऐसा साउंड है।
1: वाह वाह, ये बिल्कुल अलग साउंड
0: अच्छा,
1: है।
0: ये इसकी खास बात है, ये मैं इटली से लेके आया था।
1: अच्छा,
0: ये एक बहुत कमाल के म्यूजिशियन है, उनके पास में गया था इटली में, वो एक बुजुर्ग से अंकल हैं, तो उनकी शॉप जो है इंस्ट्रूमेंट्स की, इट वॉज नॉट ओपन जब मैं था वहां पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ और मैं प्रोफेशनल म्यूजिशियन, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, सो आप प्लीज मेरे लिए एक मुझे दीजिए क्योंकि मैं दो दिन बाद जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए शॉप अपनी ओपन की एंड आई ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरेंस टू हिज सिटी एंड आई बॉट कपल ऑफ मोर इंस्ट्रूमेंट, जिसमें से एक ये था।
1: वाह वाह, अच्छा हुआ आप ये हमारे लिए लेकर आए, बहुत ही सुंदर था।
0: और ये आप देख रहे थे, दिस इज कॉल्ड कजू।
1: जी जी,
0: ये इसमें हम गाते हैं।
1: हाँ, ये कजू तो बिल्कुल बिल्कुल
0: इसमें हम गाते हैं, ये तो पता ही आपको।
1: जी जी जी जी,
0: तो अब जैसे पता ही है, फिर भी मैं आपको एक लाइन गाऊं।
1: जरूर, बिल्कुल, बहुत जरूरी है।
0: अब जैसे एक म्यूजिक है जो इसमें बड़ा अच्छा साउंड करता है,
1: हाँ हाँ,
0: रहमान साहब के गाने का है।
1: हाँ हाँ हाँ,

0: 萨尼萨嘎玛巴尼那巴，
1: 哇，
0: 玛巴尼那巴，
1: 滴滴滴滴滴。

0: क्या बात है,
1: एक ऐसा खुद से ही जुगलबंदी कर लेता
0: ये एक अलग वाद्य यंत्र हो गया।
1: एक मैंने जब मैं फ्लूट तो मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है हमेशा
0: जी
1: इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करना
0: जी जी
1: मैं बहुत घूमा हूँ, मतलब अकेले अमेरिका घूमा हूँ, लंदन घूमा हूँ, यूरोप घूमा हूँ, जैसा मैंने कहा इटली में था, इटली स्पेशली एक जगह जब मेरा फ्लोरेंस में एक प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं एक जगह से एक जगह गया सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने, तो मैं ऐसे दुनिया भर में सब जगह घूमा। सो अच्छा, आप जब अकेले घूमते हैं ना तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है जिंदगी का,
0: बिल्कुल
1: उसके बारे में फिर हम कभी विस्तार से बात करेंगे, वो बहुत अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस है
0: जी।
1: और बहुत अलग अलग चीजें मैंने इंजॉय किए जिंदगी में।
0: क्या बात है।
1: सो अब जैसे ये बांसुरी है एक, तो एक
0: ये तो बहुत बड़ी सी बांसुरी है,
1: बड़ी बांसुरी, ये बांसुरी ही है, ये प्योर अपनी जो शास्त्रीय संगीत की जो कृष्णा बांसुरी है, बांसुरी ही है।
0: कहां से लाए?
1: नॉर्मल जहां से मैं, ये तो मैंने खुद बनाई हुई है।
0: अच्छा अच्छा।
1: सो अब ये जो बांसुरी है, मैंने जब एक चाइनीज फ्लूट खरीदी जब मैं दूसरे साउंड्स कलेक्ट कर रहा था तो उसमें ऑप्शंस या स्केल्स अलग अलग नहीं मिल पा रहे थे मुझे, तो मैंने बहुत साल पहले एक मेरा एल्बम भी आया था जिसका नाम है इटर्नल विंड्स, उस एल्बम में मैंने वो ये साउंड बहुत पहले रिकॉर्ड करके रिलीज किया है 2011 में
0: जी।
1: हालांकि ये साउंड उससे पहले ही बना लिया था क्योंकि रिलीज करने में तो अब 2 साल लगे थे
0: जी जी।
1: तो इसका साउंड देखिए, नॉर्मल जो बांसुरी का साउंड है वो आपने सुना है,
0: बिल्कुल
1: इसका साउंड नहीं सुना था आपको
0: जरूर।

0: अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अब ये साउंड जो है मैंने 2009 में क्रिएट कर दिया था। अब कई लोग इसको डीजी फ्लूट बोल के समझ के बना के वो अपना स्टैंप लगा के उसको फिर इंडस्ट्री में फिर यूज कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी उस बात की। बट अगर आप क्रिएशन की बात करते हैं, अगर आप सही बात करते हैं और सही होने की बात करते हैं, तो इस क्रिएशन का जो कि चाइनीज फ्लूट से एडॉप्ट किया हुआ है, तो अगर हिंदुस्तानी फ्लूट में एक्सपेरिमेंट अगर किया है ना इंडिया में, तो मैंने किया है। आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया
1: जी जी
0: हु क्रिएटेड इन हिंदुस्तानी बांसुरी इनटू डीजी फ्लूट और चाइनीज फ्लूट, दैट इज क्रिएटेड बाय मी
1: जी।
0: अब ये एक है, और इसका एक दूसरा जो हाई स्केल में ऐसा साउंड है,

0: इसका बाज नहीं है। हर साउंड का अपना बाज होता है,
1: बिल्कुल,
0: हर इंस्ट्रूमेंट का अपना बाज होता है, वो बाज समझना चाहिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा के उठा के भोपाली नहीं बजा सकते उसमें,
1: बिल्कुल।
0: साउंड जब उठा रहे कोई, उसकी नॉइज बहुत जरूरी है ना। अब मैंने आपको इंग्लिश फ्लूट सुनाया, अब इसमें अगर मैं, हालांकि इंडियन भी बहुत अच्छा बजता है इसमें,
1: जी बिल्कुल,
0: इसमें मैंने एक इंडियन कंपोजिशन रिलीज किया था, तो मेरे जहन में क्या था कि इंडियन कंपोजिशन इंग्लिश फ्लूट में कैसे साउंड करेगी। अब देखिए, एक ये इसका जो स्टाइल है,

0: पूरा साउंड चेंज हो गया,
1: पूरा प्लेन चेंज हो गया ना।
0: जी जी,
1: अब वैसे ही जो ये जो साउंड है अब इसका जो प्लेइंग स्टाइल है,
0: हाँ क्या बात है।

0: ये स्टाइल है इसका।
1: वाह,
0: इस साउंड के स्टाइल के हिसाब से भी एक कंपोजिशन बनाई थी मैंने,
1: और ये फिल्म म्यूजिक में बहुत सुनाई दे रही है।
0: बहुत बजाया मैंने इसको
1: जी,
0: मैंने अपने एल्बम में भी बजाया
1: जी।
0: एल्बम में जो

0: ये कंपोजिशन उसमें बजाई।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है, उसका अपना साउंड है, उसकी अपनी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है।
1: बिल्कुल,
0: वो पता होना जरूरी है। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा जब आप म्यूजिक सुनेंगे और स्टूडेंट बन के सुनेंगे,
1: बिल्कुल
0: उस्ताद बन के नहीं।
1: बहुत जरूरी है।
0: आजकल क्या है, सुनने से पहले उस्ताद बन जाते हैं, सीखने से पहले। अब ये देखिए, ये बांसुरी भी मैंने बनाई है,
1: ये छोटी वाली
0: जी,

0: वाह वाह वाह वाह, इसकी शार्पनेस बिल्कुल अलग है।
1: क्योंकि सर आप जब एक म्यूजिशियन बनते हैं ना
0: जी,
1: तो मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि आर्टिस्ट, या आप आर्टिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने काम से ईमानदारी रखनी चाहिए
0: जी।
1: और ईमानदारी आप तभी रख पाएंगे जब आप उसके धरोहर से, उसकी धरती से जुड़े हुए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसका बेसिक पता होगा आपको,
0: समर्पण कितना गहरा है।
1: अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे बांसुरी बजानी है, बांस तो जंगल से आ जाएगा, बनाने वाला कोई और होगा, मैं तो सिर्फ बजाऊंगा, तो मेरा प्रेम दिखाई नहीं देगा उसमें। प्रेम तो तभी होगा जब आप जानते हो बांसुरी बनती कैसे है।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बोली आपने।
1: आप जो चीज बजा रहे हैं वो आप खुद बना सकते हैं क्या?
0: जी,
1: अगर मैं बांसुरी किसी से ले रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो बांसुरी बजाना बंद कर दे तो मेरी बांसुरी छूट जाएगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा प्रेम है उनके साथ, मेरा रिश्ता है उनके साथ। मैं जिनसे बांसुरी ले रहा हूं या जो भी मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट, अभी बड़ी प्यार से किसी ने भेजा, मैंने खोला भी नहीं अभी तक।
0: जी जी,
1: अब मैं खोलूंगा इसको, बांसुरी को सुनूंगा, देखूंगा, प्रेम करूंगा, मेरा नाता जुड़ गया अगर,
0: हाँ तो रख लेंगे,
1: रख लेंगे, बजाएंगे।
0: वाह,
1: पर अगर किसी ने प्रेम से भेजा है और वो इंस्ट्रूमेंट जो दिया है वो मेरे भाग्य है, वो बड़े भाग्य से कोई मिलता है आपको, अगर इंस्ट्रूमेंट अगर आपको कोई अच्छा

0: दे रहा है और आपके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है।
1: क्या प्यारी बात है जी
0: गुरु मिलना सबसे बड़ा भाग्य है,
1: जी
0: उसके बाद दूसरा भाग्य है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सही मिले। अब
1: जी जी
0: इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, हम बात करते रहेंगे तो 4 घंटे तक चलता रहेगा, पर सही इंस्ट्रूमेंट मिलना सबसे बड़ा भाग्य है। गुरु मिलने के बाद फिर आपको इंस्ट्रूमेंट से प्यार होना, उससे जुड़ना, तभी आपका साउंड 100 लोगों से अलग सुनाई देगा।
1: बिल्कुल एक अलग पहचान
0: सारे
1: मिलेगी
0: गामा पा रहा नहीं सा, आप सेम बजा रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज एक दो उदाहरण देता हूं।
1: जी
0: सपोज कीजिए सुबह करा के तोड़ी है,
1: जी जी
0: अब सारे गामा ऐसे ही बजता है थोड़ी, पर सिर्फ सारे गामा ही है, सिर्फ सरगम ही है,
1: वाह

0: ये भी सारे गाँव है
1: जज्बात आ गए,
0: पर इसमें प्यार है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ये जो प्यार है ये सर लेके पैदा होता है आदमी
1: जी,
0: या अगर बताया जाता है संस्कार से बताया जाता है, अगर लेके नहीं आया होता तो जो लेके आया होता है उसकी लेयर जो होती है वो होती नहीं है, मतलब जो एक दुनियादारी की लेयर होती है ना, जो इनसेंसिटिविटी की लेयर है
1: जी जी,
0: वो नहीं होती है। तो उसका हिस्सा क्लियर है आत्मा का, तो वो ऑलरेडी महसूस कर रहा है। अब जो लेके नहीं आया संसार में, अब उसको अगर कोई सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, अब चार लोग हैं ये रूम में, एक को समझ में आ रहा है, एक को ज्यादा आ रहा है, एक को बहुत आ रहा है, एक को आ ही नहीं रहा, तो जिसको आ ही नहीं रहा उसे तब तक मेहनत करती रहनी पड़ेगी जब तक वो लेयर हटे ना उसके ऊपर से, जब तक वो सेंस नहीं कर पाए
1: जी।
0: तो वो प्रैक्टिस जब तक उसकी तब तक ही चलेगी जब तक वो सेंस नहीं कर पाएगा।
1: यस,
0: तो ये संगीत का ये एक आधार है।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। और पारस जी, सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जहां और ज्यादा बातों की गुंजाइश आगे के लिए छोड़ दी जाए।
0: क्या बात है,
1: आपके साथ जो महफिल है वो कभी खत्म होती ही नहीं है जी। इस महफिल को यहाँ रोकते
0: आपका,
1: हुए
0: आपका और अच्छा। इस जगह का जादू ऐसा है जी, मेरा खुद का मन नहीं करता जाने का, पर क्योंकि समय का भाव ऐसा रहता है।
1: मैं समझ सकता,
0: आपका भी कार्यक्रम है आगे और मुझे भी कुछ कार्यक्रम में है जाना, सो मुझे दिल से एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ
1: जी,
0: कि मुझे आपने इतनी प्रेम से और इतने सम्मान से याद किया और आमंत्रण किया यहाँ पे। ये मेरे लिए तो जैसा हमने शुरुआत की, दिस इज होम कमिंग बैक फॉर मी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाने। एक बहुत अच्छा सा पीस बजाइए
0: तो मैं
1: गाने की फरमाइश कीजिए।
0: हीरो,
1: देखिए फरमाइश भी आ गई।
0: ये तो फरमाइश नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट है।
1: अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, हीरो के गाने की फरमाइश।
0: हाँ हीरो, मैं तो हीरो जैसा लग रहा हूँ कुछ।
1: अच्छा क्या बात है, क्या बात, कॉम्प्लीमेंट आया,
0: कॉम्प्लीमेंट है।
1: जी जी जी जी, तो हमारी टीम ने हीरो के गाने की फरमाइश की
0: जी,
1: और आपको भी हीरो कह दिया है।
0: मुझे मिशअप कर दिया आपने।
1: जी
0: सो ये हीरो धुन
1: जी,
0: स्पेशली डेडिकेशन टू यू,
1: शुक्रिया,
0: एंड टू जिन टीम की आप बात कर रहे हैं उन सबको एक दिल से मेरी तरफ से आप सबको डेडिकेशन है।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार।
1: थैंक यू सर। क्या आपको, मेरे दिल से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: जी जी जरूर।
1: वो है ओ माय गॉड का थीम,
0: कृष्णा थीम,
1: कृष्णा थीम
0: जरूर।
1: सो दिस अगेन वंस अगेन।

0: ये उन प्यारे लिसनर्स, ऑडियंस और संगीत प्रेमियों पे निर्भर है जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: सो दिस स्पेशल डेडिकेशन टू देम।
1: बिल्कुल, शुक्रिया।
0: एक हमारे बड़े अच्छे भैया हैं, उनका नाम है संजय विद्यार्थी जी।
1: जी।
0: सो बहुत गुणी आदमी हो, तो बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया था। ही वॉज रिकॉर्डिंग वन सॉन्ग सम अनदर फ्लोटिस्ट, एक किसी बांसुरी वाले के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो वो रिकॉर्ड करते करते, रिकॉर्डिंग हो गई, सब हो गया उनका, फिर जब मिक्सिंग कर रहे थे ना, तो उनको एक अलग साउंड सुनाई दे रहा था गाने के बीच में। तो उन्होंने परेशान हो गए वो, फिर ना उस वक्त तो ये सॉफ्टवेयर वाला काम थी ना, डिजिटल था रहा था, तो वो ना एक एक चैनल मिक्सर में देख रहे हैं कि कहां से हो रहा है, क्या हो रहा है। सो फिर फाइनली उनको एक फ्लूट चैनल पे वो साउंड सुनाई दिया। तो वो क्या साउंड था मैं आपको बताता हूँ
1: जी।
0: जैसे सपोज हो रहा है ना, ये संपन्न जो हो रहा है,
1: बिल्कुल,
0: उसको हम विब्रेटो कहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब जो उनको विब्रेटो जैसे सुनाई दे रहा था, वो साउंड गाने में कैसे दे रहा था मैं बताता हूं आपको
1: जी।
0: विब्रेटो इतना दिल से आ रहा था,
1: ये दिल से आ रहा था कि ये झटके से आ रहा था।
0: ये बड़ा कॉमेडी सीन था वो
1: जी।
0: जब उन्होंने सुनाया था तो मैं पागल हो गया।
1: अरे बाप।
0: खैर, ओ माय गॉड कृष्णा थीम फॉर
1: जरूर
0: एवरीवन।

0: शानदार, क्या बात है।
1: अच्छा क्या है, दो तीन पीस है जी, कुछ जी। फेमस जिसको लोग बोलते हैं कि मैं मतलब कुछ अलग आर्टिस्ट बोलते हैं कि शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकती है
0: जी।
1: कभी कभी इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक ही गाने को दो सिंगर गा जाते हैं, तीन सिंगर गा जाते हैं, ऐसे कई बार मैंने भी कुछ कुछ गाने ऐसे बजाए हैं जो ऑलरेडी कोई बजा के गया है।
0: अच्छा अच्छा।
1: फिर उसको फाइनल मैंने बजाया, फिर उसको रखा है
0: जी।
1: अब जैसे एक वो है कलर्स चलने का जो थीम है, तो मैंने स्पेशली रिकन्फर्म किया जिसके साथ मैंने रिकॉर्डिंग किया था, जिस स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग किया था उनके पास आज भी सेशन रखा है, उसमें मेरा नाम है।
0: ओके,
1: तो ये एक थीम है। और दूसरा फिर इस गाने में भी मैंने बजाया है मोमो के धागे वाले का।
0: वाह, बहुत शानदार पीस है
1: आपके लिए स्पेशली मोमो के धागे।

0: क्या बात है, अद्भुत।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू,
0: बहुत बहुत शुक्रिया पारसजी विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच,
0: बहुत शुक्रिया।

जानी माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

दोस्तों आज वक्त है कार्यक्रम ई फरमाइश का, तो उठाइए अपने फोन और हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है RADIOHISAR यानी रेडियो हिसार @gmail.com। आज है 2 जून यानी आज तारीख है राज कपूर साहब की पुण्यतिथि, तो कोशिश कीजिए कि आज जो भी आपकी फरमाइशें हों वो संबंधित हों राज कपूर साहब से, और हम भी ये कोशिश करेंगे कि आज के पूरे शो में हम कुछ आपको ऐसा बताएं राज कपूर साहब के बारे में जो आपने आज तक न सुना हो न जाना हो।

तो लीजिए शुरू करते हैं आपकी ईमेल्स का सिलसिला। अनारकली बाजार जगराओं से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक ने हमें ईमेल किया है। अगला ईमेल हमारे पास आया है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के और उत्तम जमदाड़े हैं इस ईमेल को भेजने वाले। नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस बेगम, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निखत परवीन ने भी हमें ईमेल भेजा है। अगला ईमेल हमारे पास आया है दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा हैं लिखने वाले। और एक और मेल लेंगे हम पहले गाने से पहले, जो कि हमारे पास पहुंचा है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर जादे राधव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचित कुमार, प्रथमेश कुमार, कुमारी प्रणाली, कुमार सरवत, सानवी और कल्पना का। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ई फरमाइश आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर मेरे यानी आनंद के साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं राजकुमार साहब की, और यदि आप भी उनकी फिल्मों का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो उठाइए फोन और हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है radiohisar यानी रेडियो हिसार @gmail.com। राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, लीलाधर शर्मा, चौधरी वास से इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ। कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल ने हमें ईमेल भेजा है। अगला ईमेल हमारे पास पहुंचा है बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीरा मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान खुराना ने हमें ईमेल भेजा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सदस्यगण, गांव उगाला, जिला अम्बाला, हरियाणा से। अगला ईमेल हमारे पास पहुंचा है, भेजने वाले हैं गंज डोंडवाड़ा उत्तर प्रदेश से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी और शमसुल कमर राही। आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं एक और नगमा राज कपूर साहब पर फिल्माया हुआ।

0: ये आवाज है भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। ये आवाज है भारत की आजादी की।
1: At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: ये आवाज है भारतीय संस्कृति की। ये आवाज है अनेकता में एकता की।
2: मिले सुर मेरा तुम्हारा।
0: ये आवाज है भारत के अदम्य साहस की।
3: At 1545 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range.
0: ये आवाज है नए भारत की। 90 वर्षों से भारत की आत्मा की आवाज आकाशवाणी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ई फरमाइश आकाशवाणी हिसार एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। मेरी यानी आनंद के साथ आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं राज कपूर पर आधारित। तो यदि आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गाना तो उठाइए फोन और हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है radiohisar यानी रेडियो हिसार @gmail.com। ईमेल्स हमारे पास पहुंच रही हैं आपकी। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और कुमकुम कुमारी ने हमें ईमेल भेजा है। अगला ईमेल हमारे पास आया है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां का, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से इन्होंने ईमेल भेजा है। जयाबाद वेस्ट से सुरेश लगनेजा, पूनम लगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा भी जुड़े हैं इस वक्त हमारे साथ। अगला ईमेल हमारे पास आया है बिलासपुर से वसीम आसमा दलाल, अक्रम आसमा दलाल, असलम आसमा दलाल, अल्ताफ आसमा दलाल, रेलवे कॉलोनी लखनऊ से सोनम कुटरिया, दनेश कुटरिया, फातिमा कुटरिया और सरफुद्दीन कुटरिया ने भेजा है ये ईमेल हमें। एक और ईमेल हमारे पास पहुंचा है रेलवे कॉलोनी कानपुर से आफ्ताब उल्लाह डोम, अल्ताफ उल्लाह डोम, वली उल्लाह डोम और डब्ल्यू उल्लाह डोम हैं इस मेल को भेजने वाले। अगला ईमेल हमारे पास पहुंचा है एयरपोर्ट रोड बंद्रा नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी ने हमें ये ईमेल भेजा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप एक बार ईमेल भेजें तो कोशिश कीजिए दोबारा ना भेजें, क्योंकि आप जब बार बार ईमेल भेजते हैं तो बाकी कुछ जो मेल्स हैं वो हमारे पेज से गायब हो जाते हैं। तो आपका नंबर जरूर आएगा, यकीन रखिए। मुजफ्फरपुर बिहार से आयरन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार भी जुड़े हैं इस वक्त हमारे साथ। अगला ईमेल हमारे पास पहुंचा है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और उनका पूरा परिवार। आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म तीसरी कसम से।

0: पता है न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध।
0: डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ई फरमाइश आकाशवाणी हिसार FM बैंड 102.3 MHz पर और मैं हूं आनंद। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट इस कार्यक्रम में शामिल हो तो उठाइए फोन और हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है radiohisar यानी रेडियो हिसार @gmail.com। जैसे कि देखिए अभी हमें मेल किया है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भारत मक्कर, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोराया, पंजाब से। अगला ईमेल हमारे पास पहुंचा है वारी खामगाम से अनीता वाढ़े, रामेश्वर वाढ़े, शुभम, साक्षी, खुशी और समस्त वाढ़े परिवार ने हमें भेजा है। अगला ईमेल हमारे पास आया है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी हैं इस मेल को भेजने वाले। गुवाहाटी असम से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या ने हमें ईमेल भेजा है। अगला ईमेल हमारे पास पहुंचा है, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप एक बार मेल भेज चुके हैं तो दोबारा मत भेजिए प्लीज। मुंबई से अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज बेनारा हैं हमें ईमेल भेजने वाले। आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म संगम से।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ई फरमाइश आकाशवाणी हिसार एफ एम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज है 2 जून और आज है पुण्यतिथि राज कपूर साहब की, इसलिए आज आप सुन रहे हैं उन्हीं के गीत इस कार्यक्रम में। यदि आप भी अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं तो उठाइए फ़ोन और हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है radioHISAR@gmail.com। नई बस्ती गंज डुंडवाड़ा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी ने हमें ईमेल भेजा है। अगला ईमेल हमारे पास आया है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार और भानु प्रिया हैं इस मेल को भेजने वाले। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, संतोष वसाने, श्री कृष्ण भाटे, विजय कुमार और बबलू ठेकेदार भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं। अगला ईमेल पहुंचा है व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल ने हमें ईमेल भेजा है। अगला ईमेल पहुंचा है हमारे पास नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे हैं भेजने वाले। इनके साथ ही हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी। एक और ईमेल हमारे पास आया है, भेजने वाले हैं मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहेकर। कितने खूबसूरत सरनेम है आपके, यकीन मानिए ये साउथ इंडिया से इतने अच्छे अच्छे सरनेम हम तक पहुंचते हैं, नॉर्थ इंडिया में इतने अच्छे सरनेम नहीं होते हैं, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं बाजी मारता है साउथ इंडिया हमसे। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जिन्हें भेजा है। एक और ईमेल हमारे पास आया है जो कि भेजने वाले हैं संभाजी चौक सिरको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुभाष गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति गायकवाड़, आशा गायकवाड़, दीपांजलि दीक्षा वाघमारे और शशांक वाघमारे हैं इस मेल को भेजने वाले। तो आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं एक और गीत राजकुमार जी की फिल्म से, माफ कीजिएगा, राज कपूर जी की फिल्म से।

0: हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
1: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
2: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
0: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
3: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
2: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
4: Will he be remembered as a great scientist, said Thomas Alva Edison।
0: कोई कला में उत्कृष्ट है?
2: तो कोई संगीत का शिरोमणि।
0: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
2: कार्यक्रम एक शख्सियत,
0: हर सोमवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार FM बैंड 102.3 MHz पर। मैं हूं आनंद और कार्यक्रम का नाम है ई फरमाइश। यदि आप भी सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में अपने पसंद के गाने, तो उठाइए फोन और हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है radiohisar यानी radiohisar@gmail.com। देखिए, सबसे पहला ईमेल हमारे पास आया है दिनेश पावड़ा, रमेश शर्मा, कुलदीप शर्मा, नौरंग शर्मा, अस्मित कुमार और युवान शर्मा का। इन्होंने नहीं लिखा कि ये कहां से ईमेल भेज रहे हैं, लेकिन जहां से भी भेज रहे हैं, स्वागत है आपका आकाशवाणी हिसार पर। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और भाविक सिक्का ने हमें मेल भेजा है। अगला ईमेल हमारे पास आया है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष ने हमें ईमेल भेजा है। अगला ईमेल हमारे पास आया है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी हैं इस मेल को लिखने वाले। एक और ईमेल हमारे पास पहुंचा है जो कि आया है हमारे पास, नहीं लिखा कहां से है, लेकिन मनोज बलदेव सांगवान जी ने ये मेल भेजा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेल भेज रहे हैं तो ये जरूर लिखा कीजिए कि आप हमें कहां पर सुन रहे हैं। इससे हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि कितनी दूर तक हम लोग आपको सुनाई दे रहे हैं। और हो सके तो ये बताया कीजिए कि आप हमें किस माध्यम से सुन रहे हैं। आप हमें डायरेक्ट रेडियो सेट से सुन रहे हैं या इंटरनेट के माध्यम से सुन रहे हैं या फिर आप हमारी ऐप से हमें सुन रहे हैं, ये भी अगर आप बता सकें तो बहुत शुक्रिया आपका। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: नया बेहतर है
1: क्योंकि तुम ही हो,
2: किंतु पुराना बेहतरीन।
3: दिल चीज़ क्या है?
0: नया श्रेष्ठ है
4: केसरिया तेरा,
2: किंतु पुराना श्रेष्ठतम।
0: नया उत्कृष्ट है
4: तेरी गलियां,
2: किंतु पुराना अनमोल।
3: चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
0: नया अनूठा है
2: किंतु पुराना अनुपम।
0: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे
2: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में
0: हर बुधवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ई फरमाइश आकाशवाणी हिसार FM 102.3 MHz पर। आप भी हमें ईमेल भेज सकते हैं अपनी पसंद के गाने के साथ RADIOHISAR radiohisar@gmail.com पर। ईमेल हमारे पास पहुंची है रतलाम MP से जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजू बाई धाकड़, युवराज धाकड़ और शिवांगी धाकड़ हैं इस मेल को लिखने वाले। गंगाधर पोपलवाड़, प्रियंका पोपलवाड़, सम्यक और स्वरित ने हमें ईमेल भेजा है उमरखेड़ महाराष्ट्र से। अगला ईमेल हमारे तक पहुंचा है जो कि भेजा है हमारे मंगल जनागल, राही श्रीमती, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल, अनूपगढ़ जिला, गंगानगर, राजस्थान से इन्होंने ये मेल भेजा है। अगला ईमेल हमारे पास है ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा हैं इसे लिखने वाले।

और एक और मेल हम तक पहुंचा है जो कह रहे हैं कि आनंद जी हमारा नंबर कब आएगा। तो लीजिए आ गया आपका नंबर, लेकिन आपका नंबर पहले भी आ चुका है जहां तक मुझे याद है। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर का नाम मैं पहले भी ले चुका हूँ। ऐसा मत किया कीजिए, यदि आपका नाम पढ़ा जा चुका है तो प्लीज आप इस तरह से ईमेल का शीर्षक बना के मत भेजिए कि मुझे दोबारा उसे खोलना ही पड़े। अगला है ईमेल जो कि भेजा है राजू अग्रवाल, केशव, दक्ष चरण दास और रेखा ने। और आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म चोरी चोरी से।

फिरोज आलम, भाई शाह आलम और वरी आलम जी। देखिए आपने जी लिखा और मैंने जी पढ़ा भी। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतोड़। ये कहते हैं कि आनंद जी आपने सभी दोस्तों के ईमेल शामिल किए, किसी भी श्रोता को निराश नहीं किया। यकीन मानिए मांगेराम जी, अभी भी बहुत से श्रोता निराश हैं मुझसे कि मैं उनके ईमेल्स को नहीं पढ़ता हूं, लेकिन आपने ऐसा लिखा तो मुझे अच्छा लगा जान के कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने सभी श्रोताओं के ईमेल को पढ़ा है। बोरखेड़ा पित्रामल, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूनत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूनत और चेतन नाहटा ने हमें ईमेल भेजा है। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन और मोहम्मद हसनैन रजा और गौसिया फातिमा हैं इस मेल को भेजने वाले। मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस। चंडीगढ़ से शैफाली, शैफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा हैं भेजने वाले। नंगलखेड़ा, फगवाड़ा, पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान और तरुण चौहान और प्रतीक चौहान हैं भेजने वाले। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और उनका पूरा परिवार इस वक्त हमें सुन रहा है। गाने अच्छे चल रहे हैं ऐसा लिखते हैं जीन हरियाणा से मनदीप, केशव, दक्ष और प्रीति। आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

और अब आइए चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ। इसके लिए हमें रिक्वेस्ट किया है नांदूड़ा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे ने। अगला ईमेल हमारे पास पहुंचा है गंज डुंडवाड़ा यूपी से मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी और उनका पूरा परिवार हमें सुन रहा है। मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, बीच में अगर आप कॉमा लगा दें तो मैं समझ जाऊँ कौन सा नाम कहाँ ख़त्म हो गया है। ये हमसे जुड़े हैं मुंगिसापुर बाजार रोड से। अगला ईमेल हमारे पास आया है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा हैं इस मेल को भेजने वाले। सादुल शहर ज़िला गंगानगर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने हमें ईमेल भेजा है। और यदि कोई रह गया है तो रात 10 बजे हम आपसे फिर मिलेंगे। कार्यक्रम रहेगा संदेश आपके गीत हमारे, लेकिन आइए अभी सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम ई फरमाइश आकाशवाणी हिसार एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं। हमारा नंबर है 9729253272 या फिर आप हमें ईमेल ही कर सकते हैं अपनी प्रतिक्रिया के लिए radiohisar यानी radiohisar@gmail.com पर। अब अपने दोस्त आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को है। अब समाचार होंगे, अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: तेरी कसम तू मेरी जान है, मुखड़ा भोला भाला।

0: भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातेले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है।

विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम रूपरेखा।

अभी 6:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति संगीत और 6:30 पर होगा कार्यक्रम युवा उमंग, जिसमें आप सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

आज शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। बातचीत का विषय रहेगा खेत बचाओ अभियान। हमारे साथ होंगे नूर मोहम्मद और सुनीता सिवाच।

बदलता गांव का परिवेश, विकास और द्वंद, इस विषय पर बातचीत करेंगे आज शाम 7:30 पर। कार्यक्रम रहेगा म्हारे गांव।

कार्यक्रम लोकमंच आप सुनेंगे आज रात्रि 8 बजे और 8:30 पर कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत सुनेगा यादों के झरोखे से।

समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर, जिसके उपरांत 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 9:15 से आप सुन पाएंगे विविध भारती से अनुप्रसारित कार्यक्रम। आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे आज रात्रि 10 बजे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9729253272। आकाशवाणी हिसार से भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा। शाम के 6:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, अनाज को खराब होने से बचाने के लिए हरियाणा में 20 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम बनाए जाएंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा, सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई और सुरक्षा के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था अपनाई जाएगी। चरखी दादरी जिले में निर्माणाधीन सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के नाम पर रखा जाएगा। और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने ईंधन बचाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग पर बल दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अनाज को खराब होने से बचाने के लिए इस साल हरियाणा में 20 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा विजन 2047 के तहत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अगले 5 साल की कार्य योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते अधिकारियों को पूरी तैयारी से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम शुरू करने को कहा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री जे गणेशन ने बताया कि अनाज का खुले में भंडारण अथवा उचित भंडारण के अभाव के कारण प्रदेश में अनाज का 4-5% तक नुकसान हो जाता है। उन्होंने बताया कि इस समय हरियाणा में 66 लाख मीट्रिक टन अनाज भंडारण की क्षमता है, जिसे 130 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्यान्न के नुकसान पर रोक लगाने के लिए ढके हुए सुरक्षित गोदामों के निर्माण, कोल्ड स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने और उपलब्ध संसाधनों का उचित इस्तेमाल करने की कार्य योजना बनाने के आदेश दिए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई और सुरक्षा के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था अपनाई जाएगी। आज चंडीगढ़ में अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों में महिला मरीजों, नर्सों, डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा और मजबूत करना है। स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले का जिक्र करते हुए बताया कि आरोपी कंसल्टेंट के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने चरखी दादरी जिले में निर्माणाधीन सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम देश के महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के नाम पर रखा जाएगा।
1: मैं बताना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राव साहब के अपील पे चरखी दादरी में जो मेडिकल कॉलेज बनने जाएगा उसको राव तुलाराम जी के नाम पे करने की स्वीकृति दे दी है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। दक्षिण हरियाणा के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और जो वीर रहे हैं उनके नाम पे एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है।
0: स्वास्थ्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि ऐसे प्रयासों से हमारी युवा पीढ़ी को देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सर्वोच्च बलिदान और संघर्षों को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। राज्य के नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आरती सिंह राव ने कहा

0: कि प्रदेश में चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने करीब 104 करोड़ 16 लाख रुपए के विकास कार्य शुरू किए हैं।
1: हर जिले में अब महिलाओं की क्लिनिक खुलेंगे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत। ये बहुत बड़ी योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और राज्य सरकार की भी। अमृत योजना जो अमृत फार्मेसी आज तक सिर्फ 74 के पीजीआई में रही है, अब ये अमृत फार्मेसी हर डिस्ट्रिक्ट नागरिक अस्पताल में खुलेगी। इसके साथ साथ एक नई योजना जो हमने लॉन्च की है वो है टेली ईसीजी को लेकर। स्टेट में पूरे पीएचसी 600 है उनमें ईसीजी होगी।
0: उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य में 766 नए स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। आरती सिंह राव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण के आह्वान अनुसार सरकारी अस्पतालों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की तैयारी की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने ईंधन बचाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और आवाजाही के लिए सार्वजनिक साधनों के प्रयोग पर बल दिया है। आज चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा,
2: मैंने पहले कुछ दिन साइकिल का इस्तेमाल किया, अब जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का ईवी का इस्तेमाल भी गजब का है। इसमें भी फ्यूल का जो है खर्चे वाली बात नहीं रहती है, बूंद बूंद घड़ा भरता है। किसी भी तरह से वो हर नागरिक का भागीदार बने, फ्यूल बचाने में किसी योगदान को लेकर के कोई बस में चल रहा है, ट्रेन से चल रहा है, कोई मेट्रो से चल रहा है, कोई साइकिल से चल रहा है।
0: हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने आज राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए के 8 से 10 जून तक होने वाले उत्तर भारत क्षेत्र जोन 2 के सम्मेलन के मद्देनजर हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हरियाणा पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईईडी सौरभ सिंह, चंडीगढ़ पुलिस महानिदेशक डॉ सागरप्रीत सिंह हुड्डा समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सम्मेलन के दौरान सुरक्षा, यातायात और पार्किंग इत्यादि विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस का हरियाणा विधानसभा के साथ बेहतर समन्वय के लिए राजपत्रित रैंक के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। सम्मेलन के शुभारंभ मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हरियाणा पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सुरक्षा के एहतियाती उपायों के अंतर्गत 2 मार्शल और साड़ी वर्दी में 25 सुरक्षा अधिकारी मुस्तैद रहेंगे। गुरुग्राम विश्वविद्यालय की पूर्व उप कुल सचिव सुमन वशिष्ठ ने आज कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार की उपस्थिति में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की कुल सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया। हरियाणा के राज्यपाल एम श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर असीम कुमार घोष द्वारा सुमन वशिष्ठ की श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुल सचिव के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। कार्यभार ग्रहण करते हुए श्री सुमन वशिष्ठ ने कहा कि इस विश्वविद्यालय को शिक्षा के वैश्विक मानचित्र पर लाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए चलाए जा रहे विशेष पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत हरियाणा में 15 जून से विशेष गहन पुनर्निरीक्षण शुरू होने जा रहा है। हिसार जिला की अतिरिक्त उपायुक्त शालिनी चेतल ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि विशेष पुनर्निरीक्षण 14 जुलाई तक चलेगा, जिस दौरान बीएलओ एक गंडा फार्म भरेंगे।
3: बीएलओ हर एक घर में जाकर के एक इन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे। इस इन्यूमरेशन फॉर्म पर वोटर की कुछ डिटेल जो है वो भरी जाएंगी। तो पहली रिक्वेस्ट तो मैं ये करना चाहूंगी लोगों से कि जब बीएलओ आपके घर पे आए तो उसे अपनी सही जानकारी दें। यदि आपके पास कोई पुराने डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, जैसे पुराना एपिक पड़ा हुआ है 2002 का 3 का, तो वो जो है वो आप निकाल लें, उससे भी आप जानकारी उसको दे सकते हैं। यदि आपको यह ध्यान है कि आप उस समय मतदाता सूची में कौन से बूथ पर थे, कौन सी जगह पर थे, क्या आप
0: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार पलवल जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 कार्यक्रम के तहत आज जिला सचिवालय के सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी तथा अतिरिक्त सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को

0: शिक्षण दिया गया। मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, अनाज को खराब होने से बचाने के लिए हरियाणा में 20 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम बनाए जाएंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा, सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई और सुरक्षा के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था अपनाई जाएगी। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.3 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा उमंग, जिसमें आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: ही सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता।

0: कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मिहू जी का बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
0: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
1: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
0: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साह वर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
0: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
1: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी, हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
0: जी विमलेश जी, दरअसल होता ये है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन तथ्य कुछ और है।
1: जी।
0: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
1: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
0: बताइए।
1: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
0: जी वो तो है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
1: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
0: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
1: जी,
0: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
1: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
0: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
1: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है।
1: जी,
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
1: जी।
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: जी जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
0: जी
1: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री

0: गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
1: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
0: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है
0: जी।
1: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
1: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
0: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान के दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मोनसिनर द अबेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस

0: फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पास्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
0: लुई पास्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पास्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
2: देखो मुझे पास्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पास्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
3: हाँ ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
2: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
3: हाँ मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
2: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पास्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
4: चलो
1: लुई पास्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
0: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
5: चलो चलो चलो चलो अरे चलो चलो चलो
6: चलो मुझे ठहरो। लोहा गर्म हो रहा है, ये लीजिए।
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पास्चर घबरा गए।
0: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पास्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
0: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पास्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पास्टर

0: अच्छा स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
1: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
2: लुई पाश्चर,
3: सर,
2: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
3: कहिए सर।
2: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
3: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
2: ठीक है।
1: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थ

0: प्रक्रिया की देन है।
1: पास्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही पास्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
1: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए यह विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पास्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पास्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पास्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा
3: हाँ,
2: इंजेक्शन लगा दूं?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताईं।
4: सर सर, ये टेलीग्राम।
3: अच्छा, लाओ दिखाओ।
5: अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
5: देखो, टीके वाली सभी भेड़े बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कांग्रेचुलेशंस, बधाई है सर।
5: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़े मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा?
5: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पास्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
6: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
5: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
6: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
5: आप,
6: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
5: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
6: मेरा बेटा।
5: अच्छा ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।

0: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
1: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
0: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन

0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन

0: जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
1: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
0: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट इन सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट Always working towards the improvement of the human condition.
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा उमंग। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजे आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान वाणी के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बन भाइया ने नूर भाई की
2: और सुनीता बन की
1: राम राम, राम।
2: नूर भाई
1: जी, सुनीता बहन,
2: आज का अपना कार्यक्रम जो किसान वाणी है
1: जी,
2: इसके प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार भाई
1: जी।
2: और भाई देखो खेती बाड़ी में जुट रहे हैं
1: जी।
2: और आज आप बातचीत जो करांगे
1: जी
2: वो खेती बचाओ अभियान पे बात करांगे भाई।
1: खेती को बचाने के लिए हमने किसान भाइयों को क्या क्या हमने आगे कार्यक्रम करने हैं।

0: और किस प्रकार से जो आज मिट्टी की हमारे खेत की जो उर्वरा शक्ति का लगातार जो वास हो रहा है, उसकी गिरावट जो बन लाग रही है, उसको हमने किस प्रकार बचाना है।
1: बिल्कुल भाई।
0: जी
1: और नूर भाई देखो, ये आप एकले को नहीं,
0: जी
1: इस खातर पूरी अपनी जो सरकार है उसने जोर लगाया है
0: बिल्कुल
1: कि किसान और सरकार मिलके अपनी खेती को बचावांगे।
0: जी
1: और ये अभियान 1 जून से 30 जून तक चलेगा लगातार अपना,
0: जी
1: और इसका शुभारंभ भी
0: जी
1: हो गया भाई। और किसने करे भाई शुभारंभ, आप बताओ बहन भाइयों ने।
0: इसका जो शुभारंभ है केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं हमारे, उन्होंने इसका आगाज किया है, शुभारंभ किया है।
1: हाँ भाई।
0: भी जो हमारी धरती माँ जिसको हम बोला हाँ, उसको बचाने का जो बीड़ा है वो हमने खुद उठाना पड़ेगा किसान भाइया ने,
1: बिल्कुल
0: कि
1: भाई।
0: भी जो अन्न हम खावा हाँ, उस अन्न की शुद्धता है, उसकी जो पोषकता है, पौष्टिकता है, उसको किस प्रकार से हम बढ़ावें और किस प्रकार से हम स्वस्थ भारत का निर्माण करें, इस मुहिम को लेके आज के केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है।
1: तो नूर भाई देखो, ये एक मिशन है एक तरह से
0: जी
1: अभियान के साथ साथ,
0: जी
1: और सरकार का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है
0: जी
1: कि हम सारे, सरकार भी किसान भी अपने बहन भाई जितने यहाँ, सारे मिलके इस अभियान को आगे बढ़ावांगे।
0: जी
1: और जो अपने केंद्रीय मंत्री ने जो एक आह्वान किया है अपने बहन भाइयों से
0: जी
1: कि भाई हम जो देखा देखी अंधाधुंध अपने खेती के अंदर, अपनी जमीन के अंदर
0: जी
1: जो बहुत ज्यादा खाद का इस्तेमाल करने लग रहे हैं, रासायनिक खाद है, कीटनाशकों का उपयोग करने लग रहे हैं,
0: जी
1: और वो भी कई बार अपन ना समझी के कारण, कई बार अपन ये देख ले हाँ कि भाई नूर भाई ने खेत में 1 कड़ 2 कट्टे डाले थे तो अपन भी 2 डालेंगे, उसने 3 स्प्रे कर दिए तो अपन भी 3 करेंगे। इसके बजाय हम
0: जी
1: अपनी जो जमीन है उसकी जांच करवावा सबसे पहले,
0: जी
1: जैसे कि अब अपने खेत खाली है, अपन धान की बिजाई की तैयारी करने लग रहे हैं,
0: जी
1: कि मिट्टी पानी की अपने खेत में जांच हो, हम नया कोई भी काम शुरू करा, चाहे आप अपनी पारंपरिक खेती करा या फिर नए तरीके से, चाहे कोई बागवानी है अपन है, चाहे मछली फार्म करना है, कुछ भी नया काम शुरू करांगे तो उससे पहले अपने खेत की मिट्टी पानी की जांच करवाना जरूरी है भाई।
0: और सरकार की एक विशेष मुहिम है, एक अभियान भी है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा हम अपने जो खेत की मिट्टी के अंदर कितने पोषक तत्वों की प्रचुरता है या कमी है,
1: बिल्कुल भाई।
0: उनकी पूरी जानकारी आपको कृषि एवं किसान कल्याण जो विभाग है उसके द्वारा प्रदान की जाओगी। और उसके बाद हमने ये पता चल जाओगा कि भाई हमारी जो मिट्टी में है, हमारे खेत में कौन से पोषक तत्व हमने डालने चाहिए, कौन सी फसल में, और कौन सी फसल फसल बोने से हमारे को ज्यादा उत्पादन मिल सके है,
1: बिल्कुल भाई।
0: या किस फसल के योग्य हमारी मिट्टी है, जमीन है, तो उसके अनुसार ही हम कृषि क्रियाएं करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा ले सकेंगे, लागत को भी कम कर सकेंगे। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए किसान भाइयों को अपनी आगे की जो भी योजना है वो बनानी चाहिए।
1: बिल्कुल नूर भाई। और इसके साथ में अपन जो अंधाधुंध जो पेस्टिसाइड कीटनाशकों का इस्तेमाल करने लग रहे हैं,
0: जी
1: उससे 2 नुकसान हो जाए नूर भाई की, अपने जो शत्रु कीट है जिसने मारना चाहा है वो तो ठीक है, इसके
0: जी
1: साथ साथ अपनी जमीन का नुकसान और
0: जी
1: अपने जो मित्र कीट है
0: जी
1: वो सारे भी साथ के साथ में मारे जावा है, जिसका कि सहयोगी के रूप में काम होना चाहिए था। तो
0: बिल्कुल
1: इसलिए अपने मित्र कीट और शत्रु कीटों की पहचान भी अपन ने करनी जरूरी है भाई।
0: किसान भाइयों को ये जो आपने बात बताई है सुनीता बहन, कि मित्र कीट और शत्रु कीट, ये चीज किसान भाई को आज बहुत ही ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि इन पे जो पैसा किसान भाई व्यर्थ कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं, कई बार वो अनजाने में भोलेपन में कह लो अकबी, जो चीज उसको कई बार अज्ञानता के कारण वो ऐसे कीटों को मार देवे है जिसकी मारने की आवश्यकता नहीं होती।
1: वो तो
0: और
1: नूर भाई वही बात से कि
0: हाँ,
1: बेरा नहीं पटता अपन है।
0: इसके लिए हमने उन कीटों के साथ या तो एक प्रकार से उनकी पहचान करने की जरूरत है, उन

0: से दोस्ती करने की जरूरत है या कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेने की आवश्यकता है ताकि भाई उनकी हमें परख हो सके कि भाई हमारा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है।
1: बिल्कुल, और इसके साथ में नूर भाई आपने जो बीच बीच में जो फसल चक्कर अपनाने की जरूरत है
0: जी,
1: कि अपने जब भी फसलों की बिजाई करा हाँ तो क्योंकि अपन एक रूटीन बना रखा है कि भाई इब अपन गेहूं काटी थी इब अपन अपने कपास की बिजाई कर देंगे या गेहूं के बाद अब अपन जीरी लगा लेवांगे, तो इसमें एक फसल चक्कर भी बन भाई अगर अपना दे रहे
0: जी।
1: और जैसे कि हरी खाद की भी कई बार सरकार का भी एक प्रयास है इस चीज के लिए कि भाई अपनी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ानी है अपन, तो कभी कभी बीच बार में आप अपने खेत में खाली भी छोड़ दें या फिर डेचा जैसी जो हरी खाद है इसकी बिजाई करके अपने खेत में बा दें।
0: दलहनी फसलें जो जिसके जो जड़ों में लेग्यूम्स बोलते हैं उनको और उनके अंदर क्या हुआ है वो गाठे हुए हैं, वो गाठे हमारी जो वातावरण की जो वायु है नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदलने का कार्य करे हैं और यूरिया और डीएपी जैसे जो खाद हम डालना है ऊपर से उसकी जो कमी उसकी पूर्ति करते हैं।
1: बिल्कुल भाई, और देखो साथ में फिर नूर भाई
0: जी
1: भाइयों का मनोरंजन करवा दे,
0: मनोरंजन की आपने बात करी है तो भाइयों तय सुनावांगे रागनी मास्टर सतबीर बैंसवालिया और साथियों की आवाज में।

0: का प्रयोग कर करके मैं खेती की जो या हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति को बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो उसके लिए सरकार प्रयासरत है कि भाई इसको कैसे दोबारा पुनर्जीवित किया जाए, तो उस पे आपे बात करने लग रहे थे।
1: बिल्कुल नूर भाई। और देखो, आज हमारे जो केंद्रीय मंत्री ने एक आह्वान करा हमारे बाण भाइयों थे
0: जी
1: कि भाई उर्वरक वाली जो आपने बताई है, और इसके साथ में कि भाई पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक खेती की तरफ भी अपने बाण भाइयों ने बढ़ना पड़ेगा।
0: जी
1: और उसमें आधुनिक में तो नूर भाई देखो, अपन कितने सारे अपने जो प्रगतिशील किसान है,
0: जी
1: और कितने सारे अपने ऐसे किसान बन भाई भी है कि जो विदेशों से आके भी अपने यहाँ अपनी खेती करने लग रहे हैं,
0: जी
1: या फिर नई तकनीक के साथ,
0: जी
1: जिसमें अपन ये कह सकते हैं नूर भाई की जैसे जैविक खेती है, अपनी प्राकृतिक खेती है, देसी भाषा में कहो कि देसी खेती करने लग गए आजकल अपनी, और उसको देसी या फिर अपनी पारंपरिक खेती के साथ साथ जोड़ के
0: जी
1: कि भाई कितना तरह का काम शुरू कर दिया है कि पारंपरिक खेती भी कर दे रहा हूं, कुछ एक एकड़ जो जमीन है अपनी अपने पास है तो
0: जी
1: उसमें कोई नया काम जैसे मछली पालन शुरू कर रखा है, सब्जी का है अपने पास, मशरूम की खेती करने लग रहे हैं, बागवानी
0: जी
1: करने लग रहे हैं, पशुपालन का है, मतलब नई तकनीक के साथ जोड़ के। और नई तकनीक में नूर भाई इतना है कोनी कि इतना ही अपना जो मीडिया है आज का दिन, जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर अपने सोशल अकाउंट्स बना के, उनके ऊपर अपनी मंडी का पता लगा के कि किस किस चीज की कहाँ मंडी है, किस
0: जी
1: तरीके से इसका भंडारण कराया जा सके है, अपने कृषि वैज्ञानिकों के साथ जुड़ के,
0: जी
1: तो नई जो आधुनिक तकनीक के साथ खेती करना भी अपने आज के जमाने के हिसाब से जरूरी है भाई।
0: इसको हम मिश्रित खेती भी कह सका। हाँ, भी मिश्रित खेती में वो सारी की सारी जो कृषि क्रियाएं शामिल है, इसमें आपने बताया कि भाई परंपरागत खेती भी आ गई, उसमें पशुपालन भी आ गई, और इसमें मतलब अपने फूलों की खेती कैस कहा
1: मतलब
0: या
1: फूल की भी खेती होने लगी नूर भाई,
0: हाँ,
1: देखो आप कितनी
0: तो
1: तकनीक आगे बढ़ रही है
0: हाँ,
1: आज का
0: तो
1: दिन।
0: इसको मिश्रित खेती के द्वारा किसान भाई समन्वित एक कृषि क्रियाएं करके इंटीग्रेटेड अप्रोच से इसको बोल सकते हैं कि भाई हम मान लो पशुपालन कर रहे हैं, पशुओं के जो खाद है, जो पशुओं के जो गोबर है, पशुओं का जो,
1: बिल्कुल भाई,
0: उसको हम देसी खाद के रूप में प्रयोग करके हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ सके हैं, और हमारी जितनी भी आज बीमारियों की जड़ है, जिसके कारण हमारे को अनेक असाध्य रोग आज हमारे बीच में है, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, इस टाइप की जितनी भी असाध्य बीमारियां हैं, गैर संक्रामक बीमारियां हैं, उनका मुख्य कारण हमारा खान पान और हमारी दिनचर्या है। इनसे बचाव के लिए हम केवल और केवल अगर अच्छे अनाज सब्जियों का उत्पादन करा तो इससे हम बचाव कर सके हैं।
1: बिल्कुल भाई, आपने सही बताया है इसके साथ में
0: जी
1: कि भाई आज का दिन जो नई तकनीक है उसके साथ जोड़ के आप देखने लग रहे हैं, तो बहुत तरह के काम अपने किसान बहन भाइया ने ले लिए हैं,
0: जी
1: जिसने कि पहले कुछ टाइम तक आप अनुमान कर दे कि ये अपना काम के को नहीं होंगे,
0: जी
1: जैसे कि सुअर फार्म खोल रखे हैं, मुर्गी
0: जी
1: फार्म खोल रखे हैं, जैसे आप
0: जी
1: बताओ थे कि फूलों की खेती भी करने लग रहे हैं, मतलब पशुओं में भी अच्छी वैरायटी की अपने पास पशु रखना, और
0: जी
1: अच्छा शुद्ध दूध है, घी है, दही है, पनीर है, मावा है, मतलब इन चीजों का बेचना, इनकी मार्केट बनाना,
0: बकरी पालन
1: बकरी
0: है,
1: पालन है
0: भेड़
1: भाई,
0: पालन है,
1: बिल्कुल भाई,
0: इसमें पहले हम ये सोचा करते कि भाई गरीब के व्यवसाय हैं ये,
1: बिल्कुल।
0: एक दो बकरी पाल लिया करते, लेकिन अगर आज हम उसके उत्पादन को या उनके लाभ को अगर देखा,
1: मधुमक्खी पालन है नूर भाई,
0: हाँ
1: मतलब ये दो तीन चीजें तो, जैसे आप मिश्रित खेती की बात कर रहे थे
0: जी
1: कि कई अपने किसान भाई तो मतलब डंगर पशु भी रखे हैं,
0: जी
1: अपनी खेती भी कर रहे हैं,
0: जी
1: उसके साथ में पांच चार उनके घर में मुर्गी भी आपको दिख जाऊंगी, साथ में मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं कि जिससे अपनी फसलों को फायदा हो रहा है,
0: जी
1: तो कई तकनीक के साथ,
0: जी
1: मतलब अपने केंद्रीय मंत्री का आज आह्वान था कि भाई
0: जी
1: तकनीक के साथ अपन खेती को भी करना पड़ेगा, और
0: जी
1: अंधाधुंध जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपन दवाइयों का उनको रोकना पड़ेगा।
0: हमारे जैसे अगर 20-30 साल पहले की अगर बुजुर्गों की खेती की जो प्रणाली की बात करा तो उस टाइम देखो हमारी

0: जो अनाज की शुद्धता किस प्रकार होया करती,
1: हुँ.
0: और उसमें अगर रोगों की बात करा तो इतने ना तो अस्पताल थे,
1: हुँ.
0: ना इतनी बीमारियां थी।
1: बिल्कुल भाई,
0: उसका मुख्य कारण यही था सुनीता बैनक भी, हमारा खान पान बिल्कुल देसी था, शुद्ध था। देसी खान पान के कारण हमारे को बीमारियां दूर दूर तक नहीं आया करती। हमारी जो भी इम्यूनिटी थी या प्रतिरोधी क्षमता थी वो हमारे खान पान से ही पैदा हो जा करती।
1: बिल्कुल भाई। और देखो नूर भाई, जब नई तकनीक की बात करने लग रहे हैं अपन,
0: जी
1: तो इसमें तो खास तौर पर जैसे अपनी कृषि वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है
0: जी
1: कि जितने भी अपन नई तकनीक

0: ये लोकगीत सुना भाई ने, और बातचीत हमारी चल रही थी खेत बचाओ अभियान पे।
1: हाँ भाई। और नूर भाई देखो, अपनी सेहत स्वास्थ्य
0: जी
1: ठीक रहोगे तो अपने खेत भी ठीक रहोगे भाई,
0: जी
1: और अपने खेत ठीक रहोगे तो अपना सेहत और स्वास्थ्य भी ठीक रहोगे भाई, क्योंकि दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है।
0: और देश प्रदेश की खुशहाली हमारे खेतों से निकल के आवे है, और खेतों को हम अगर समृद्धि प्रदान करेंगे तो वो हमारे को समृद्धि प्रदान करेंगे।
1: बिल्कुल। और आज का जो केंद्रीय मंत्री जी का आह्वान था
0: जी
1: कि हमने अपनी धरती माँ को बचाना है,
0: जी
1: तो उसके लिए आप मिलजुल के सारे प्रयास करेंगे भाई।
0: बिल्कुल, इसी संदेश के साथ, इसी अपील के साथ किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त करने की नूर भाई ने।
1: और सुनीता बान ने दे इजाजत, थोड़ी आन में बन भाई, तब फिर मिलेंगे कार्यक्रम हमारे गांव में।
0: गांव

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मारे गांव।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: मारेगांव कार्यक्रम में एक बार फिर नूरबाई
3: और सुनीता बनकर है, सारे बन भाइयों का स्वागत।
2: सुनीता बहन, आजकल देखो गर्मी से कुछ राम रात दे रखी है और इब देखा हाँ तो किसान भाइया का अपन बात करी है अपने किसान वाणी कार्यक्रम में। इब हम जैसे बात करा हाँ अपने खेत खलियान की, ग्रामीण प्रवेश की, गांव की, अपनी मारे गांव की, जो तो मारे गांव में जैसे आपे देखा हाँ भी लगातार अपना जो परिवेश है, जो परंपराएं है, जो हमारी आदतें हैं, वो लगातार आधुनिकता के कारण बदलने लाग रही है और उसके बदलने से हमारी जितनी भी एक प्रकार से एक सभ्यता कह लो, एक पूरी की पूरी जनरेशन का एक बदलाव देखने को अब मिल रहा है।
3: बिल्कुल भाई, और नूर भाई आपने ठीक बताया कि भाई जो बदलन लग रही है अपनी जो जनरेशन, अपन कह दिन अंग्रेजी में नहीं बोला करा जनरेशन गैप है रहा जी, पीढ़िया में बदलाव आ गया,
2: पीढ़ियों में बदलाव आ गया।
3: और यू नूर भाई आपने भी लगता होगा कि पिछले 10-11 साल में काफी चीजें बदली है।
2: बिल्कुल,
3: और कई बार अपने वर्ग करा कि भाई आपने जो चीज देखी है वो बड़कन को नहीं मिला देखने
2: जी,
3: कि भैया आखिरी जनरेशन होगी जिसने गामा के जो अपने लाड चाव प्यार प्रेम जो देखा था
2: जी,
3: कि आजकल उसमें थोड़ा फर्क पड़ गया है।
2: फर्क पड़ गया है, जो एक अपना संयुक्त परिवार की परंपराएं हम देखा करते, अपना पूरा का पूरा 15-20 व्यक्तियों का समूह का परिवार हम जिसमें रहा करते, उसकी जो परवरिश हमारे बच्चों की होया करती, तो उसमें एक जो कान कदर की या जो एक सहन शक्ति बच्चे में पैदा होया करती, वो आज शायद गायब हो रही है।
3: क्योंकि तो सही बात है भाई, आपने जो बताया है कि भाई अपने जो संयुक्त परिवार थे या तो भाई उसे चीज से फर्क पड़ गया नूर भाई, क्योंकि जितना बड़ा परिवार में रहा कर दे, बड़े की अपनी जिम्मेदारी होया कर दे, एक दादा ताऊ एक बालक ने कि मैं कह दिया करता तो सारा परिवार की बोलने की हिम्मत नहीं होया कर दी उस बात के ऊपर, मतलब सारे आप उसका मान कराया कर दे और वो सारे की जिम्मेदारी भी समझा करता,
2: और उसके साथ साथ जो मतलब एक अभावग्रस्त संसाधन थे उसमें भी एक बहुत अच्छी हंसी खुशी गुजारा हम कराया करते, चाहे सूखी रोटी खानी होती या जब बिना सब्जी के हमारा खाना होता तो भी हमने एक आनंद आया करता। कोई जरूरी नहीं थे कि भाई हमारे पास सब्जी या सलाद या दूध के भंडार, मतलब दूध गले जरूर खा लिया करते, दही गले या जो भी है, लेकिन इस प्रकार के कोई जरूरी नहीं थे व्यंजन हमारे।
3: बिल्कुल नूर भाई, देखो वो तो चीजें आपने बताई जो कि भी उससे तो जुड़ रही है अपनी
2: जी,
3: कि भी जो परिवार में मारा होया करता मिल बांट के सारे नापन वो ही खाना पड़ा करता, उसमें ये आजकल जो अपने पास बड़का द्वारा इतने सारे हुआ है ना कि बोले मैं तो घी वाली सब्जी कौन खाऊं, मैं तोरी वाली कौन खाऊं, मैं प्याज कौन खाऊं, मैं टमाटर कौन खाऊं
2: जी,
3: ये तो अपने दौर थे कौन भाई ऑप्शन,
2: ये ऑप्शन थे ही नहीं,
3: तो इसलिए घर में जो बनाया करता भाई गणत गणा फिर आप शक्कर गाल लो।
2: बिल्कुल,
3: जब सब्जी नहीं खानी शक्कर के लिए खा लो, रोटी गुड़ के साथ खा लो, तो खांड ले लो।
2: ग्रामीण प्रवेश का जो बदलता स्वरूप है आज, चाहे आधुनिकता की बात करें तो आज सुनीता बहन हम देखा हाँ गामा में चाउमीन से लेके बर्गर पिज्जा, मतलब इनकी भी रेडी मतलब आम तौर पे हर गांव के हर गली मोहल्ले में मिल जाओगी।
3: जो एक टाइम पर अपना जो छोटे थे जो शहर में देखा कर दे, ये तो शहर में होया करा है,
2: शहर में होया करा है और शहरी लोगों की एक शैली का एक प्रतीक था ये, अभी उनकी ही रहन सहन की आदतों का एक हिस्सा समझा करते कि भाई ये तो अमीर लोगों के खाने की चीजें हैं।
3: बिल्कुल भाई,
2: लेकिन इनकी जो पोषकता गुणवत्ता की अगर बात करें ये हमारे परिवेश के अनुकूल नहीं भी है, बिल्कुल भी नहीं है।
3: ये तो फिर दोनों चीज जुड़ रही है भाई कि जैसे जैसे ये अमीरा की चीज थी ये गांव में पहुंच गई है। जो अमीरा की बीमारी माना करते बोले ये मोटापा
2: हाँ।
3: ये शुगर के हुआ हाँ। है बोले ये बीपी के हुआ है ये सारा को आग्रह है।
2: तो वही चीज सारी
3: साथ में गई है
2: गांव में। आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है अकबी, जो जीवन शैली की बीमारियां शहरी लोगों को या धनाढ्य लोगों को या जो लोग कम कार्य करते थे उनको आया करती, वो आज ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है।
3: बिल्कुल भाई,
2: ये चीज भाइया ने समझनी पड़ेगी आपने किस मतलब उस तरीके से इस चीज को रखा है। तो आपने उसी के अनुसार अपनी जीवन शैली को अगर नहीं बदलेंगे, भी हमने उनकी नकल तो कर ली लेकिन उनकी बीमारियों की भी नकल करने लग रहे हैं।
3: देखो वो तो भाई सीधी बात है नूर भाई, फायदा और नुकसान दोनों चीज कट्ठी आवे हैं।
2: तो कर्ण का एक आशय अभिप्राय यही है सुनीता बहन की भी हमने अपनी ग्रामीण जीवन शैली को पुनः बरकरार रखने की, संजो के रखने की आज जरूरत है। हमारा जो खान पान था, परिवेश था, उस समय के अनुकूल हमारे को कहीं रोग नहीं लगा करते, ना कोई किसी टाइप की बीमारी थी, हमारे अष्टपुष्ट तंदुरुस्त भाई बहन होया करते। लेकिन आज देख लो आप, गांव और शहर में कोई अंतर नहीं रह गया।
3: बिल्कुल भाई, कोई रहन सहन में भी अंतर नहीं है, खान पीन में भी अंतर नहीं है, और तो और बीमारियां भी अंतर नहीं है भाई।
2: बिल्कुल, हवा पानी सारा एक जैसा हो गया। और
3: तो इस जो ये जो बदलाव है नूर भाई
2: जी,
3: इसमें और बदलाव अब सकारात्मक तरीके से करने की अपन जरूरत है। रीस तो अपन पीट ली
2: हाँ।
3: उसके गला पर बीमारी ले आए हाँ
2: जी।
3: और ये जो बीमारियां है ना नूर भाई
2: जी,
3: एक डॉक्टर की बात सुनी थी मैंने एक दिन, नुका था कि भाई पहला एक होया कर दी अपनी विरासत
2: जी,
3: कि बड़े बूढ़े हमने के दे के गई
2: जी,
3: जिसमें ये था कि भाई ये बोले फलाना परिवार का है ये बालक, ये बड़े संस्कार वाले थे
2: जी,
3: इनके बाप दादा ने ये कराया हुआ है, इतना अच्छा काम, इतना धन था इनका, इतना सामान था इनके पास। और आजकल आजकल तो दूसरी चीजें आ गई है कि भाई अपने परिवार में किसका कितने बीमारी है, आप बच्चों को दे के जाने वाले हो,
2: तो उनको अगर हमने चुनौती के रूप में या उनको सबक के रूप में अगर हम समझते हैं तो उस चीज को हम बचाव कर सका हाँ। तो भाई हमने जो आज खेती की हालत को या जो जमीन की जो स्थिति को इतना खराब अवस्था में पहुंचा दिया है उसको हम सुधारेंगे।
3: बिल्कुल,
2: ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे। आज जो प्रचंड जो एक गर्मी
3: हो रही है,
2: 47 डिग्री के पास तापमान हमने पहुंचा दिया अपनी आदतों के
3: कारण। पानी की देख ले भाई
2: हाँ, पानी की कमी है, तो सारे के सारे जो परिवेश है, वातावरण है, उसके जिम्मेवार हम खुद हाँ। तो उस चीज को अपन थोड़ा थोड़ा जैसे बदलाव अगर हम चाहवा हाँ, अगली पीढ़ी को अगर हमने बचाना है, अगर जैसे अगर बात करी कि भी खान पान अगर हमने ठीक रखना है तो अपन ये शुरुआत इसकी करनी पड़ेगी।
3: बिल्कुल भाई, आपने देखा अच्छा जोटा मारे नूर भाई, और ये अपने बण भाई ने भी सोच दे होंगे कि रोटियां के गला गला जैसी रोटी के गला सब्जी स्वाद लागे ना फिर
2: हाँ,
3: तो मनोरंजन भी उसे लागे भाई।
2: बिल्कुल भाइया, ते सुनाओगे ये लोकप्रिय हरियाणवी गीत, एक छोरी गांव की छोरी।

0: नूर भाई,
1: जी
0: ये तो सुना बन भाई ने लोकप्रिय गीत
1: जी
0: फिल्म पनघट से,
1: जी
0: और आप फिर अपने रोटी पानी का टाइम हो रहा है भाई,
1: जी
0: तो रोटी पानी का टाइम में तो फिर अपन बात भी खान पीन की करनी चाहिए। अरे
1: हाँ,
0: और ही है नूर भाई, बड़का की छुट्टी।
1: छुट्टियां में देखो बालकन है स्कूला के, आजकल प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहे हैं सुनीता बहन स्कूलों में। देखो ठीक है, आज कंपटीशन का बड़ा माहौल है, दौर है, लेकिन बच्चों की जो छुट्टियों का आनंद, अगर हम अपने समय की बात करें 20-25 साल 30 साल पहले की, तो एक चार सानी चढ़ जा करता कि मामा का जाऊंगा, बुआ का जाऊंगा, अपनी उसका
0: और
1: जा,
0: 1.5 महीने की छुट्टी भाई,
1: डेढ़ महीने की छुट्टी,
0: अरे
1: तो
0: एक सुलेख लिखना रोज
1: सुलेख लिखा कर दे तख्ती पे, और एक मतलब कॉपी तो कम होया कर दी तख्ती
0: हाँ,
1: पे या पे
0: तख्ती पे
1: सुलेख।
0: मतलब रोज लिखना।
1: तो टीचर अपने जो भी अध्यापक गण थे तो डेली ये बताया करते कि भी अपन नियमितता भी रहे, रेगुलरिटी भी बनी रहेगी,
0: और भाई लिखाई भी सुधर
1: लिखाई
0: जाएगी।
1: भी सुधर जाएगी, तो सुलेख का जो प्रचलन होया करता, तो बड़ी वो आजकल कर्सिव राइटिंग बोल रहे हैं जिसने, तो वो अलग टाइप के आज ट्रेंड आ गए। उस टाइम हम जो एक जीटर का वो पेन होया करता उस पे राइटिंग आप लिखा
0: शाही
1: करते।
0: की दुआ तो लिया करते भाई स्पेशल छुट्टियां में।
1: हाँ,
0: और
1: तो
0: फिर उस तक लिखा करते।
1: एटलस की रोशनाई एक स्याही आ करती, तो उसमें देखो अपने उम्र के भाई भी सुनते होंगे रेडियो, तो उनके दिमाग में ये चीज, वो बड़ी चमकदार स्याही होया करती।
0: चमकदार बेटलेस वाली ले रहे हैं सब, तो महंगी सुतरी।
1: और कंपटीशन होया करता, तो अपने जो अध्यापक गण थे, तो एक पेंसिल अगर इनाम में मिल जा करती तो कुद दे हंडा कर दे,
0: बिल्कुल,
1: तो एक वो दौर था।
0: दौर
1: और
0: था
1: आज
0: बिल्कुल भाई।
1: उसमें मतलब हमारा साथ में मनोरंजन भी जुड़ा हुआ था, अकभी वो मनोरंजन के साधन नहीं थे उस टाइम, वो आपे खेल कूद गतिविधियां थी वो स्कूल में ही कराया करते, चाहे वो पिट्ठू वो बाल था या
0: बिल्कुल भाई, छुट्टियां में तो देखो खेल थे, खेत
1: गुल्ली
0: में
1: डंडा।
0: जाना आया करता बड़का ने, डंगर पशुआ ने पानी पियान खातर जाना होंदा।

0: बालक सारे इकट्ठे होके गली में इस टाइम पर खेलिया कर दे,
1: हाँ
0: रुक के
1: बिल्कुल,
0: मारे जाते करके रोटी खा लो रोटी खा लो। है
1: इस टाइम गोधूली जो अपने धूल चढ़ जाया करती, गोरे में जैसे अपने डांगर पशु कट्ठे करया
0: जोड़ पर
1: करते,
0: जाते
1: तो
0: भाई बिल्कुल।
1: इस टाइप का जो एक माहौल की जो यादें स्मृतियां याद आज करा हाँ, तो अलग ही परिवेश ग्रामीण का लग रहा है। लेकिन उसको हम एक वर्तमान पीढ़ी के साथ अगर जोड़ के देखा तो इसको और भी सुंदर और सुनहरा हम कर सके हैं। गांव की चारों तरफ बनी अगर आपे लगावा, वृक्ष आपे लगावा, तो उसको और भी चहुमुखी एक तस्वीर पैदा कर सका।
0: और नूर भाई देखो, आप अपने बहन भाइयों से एक बात और कहेंगे कि बालकों की छुट्टी है
1: जी
0: इबे अपने पास, और बालकों का दौर भाई टेम हुआ है कि अपने नाना का जान का है, बुआ का जान का है, मौसी का जान का है, जाके भी आवे अपने खेत में, रोज
1: जी
0: अपने बालकन लेके जावे, छुट्टिया में भी अपने घर के जितने काम हुए हैं
1: जी
0: थोड़े थोड़े करके बालकन ने भाई जरूर सिखावा। आप सारा
1: तो
0: दिन यो बहम ना रखा कि भाई पढ़ लो और फिर टेलीविजन देख लो या फोन देख लो। भाई
1: बच्चों को आज जो पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है, उनसे पौधारोपण करवावे, किसी भी मान लो अपने रिश्तेदारी में या मामा का जावा हाँ, तो वहां पौधे लगा कहाँ पे।
0: और बिल्कुल भाई। और नूर भाई एक चीज और देखिए, बालक जो खुद पौधा लगाओगे या फिर कोई साग सब्जी की बेल लगाओगे
1: जी
0: तो इतना ध्यान रखेंगे उसका
1: जी
0: कि आपने चक्की में वो रखा हो घर में, उनना आपकी ये बेल दिखेगी, उसमें
1: बिल्कुल
0: पानी डालना है, वह कितनी एक बढ़गी रोज कितनी नहीं बढ़गी, इसका पूरा लाड रहा है उनका।
1: एक बच्चे की तरह उसकी परवरिश करने की अपनी एक आदत बनेगी, बच्चों को पर्यावरण के प्रति सजगता जागरूकता पैदा होगी। तो इस चीज को, इस संदेश को हम बच्चों तक पहुंचावा। अभी आगे जैसे बारिश का मौसम आएगा तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगावांगे, तो हमारी जो हरी भरी जो वसुंधरा है धरती है, वो भी हमारे को दोबारा ऑक्सीजन देवगी, फल देवगी। आज जो
0: और एक,
1: तापमान जो
0: हाँ
1: बढ़ रहा है
0: बिल्कुल, एक बात और नूर भाई की देखो, आप बालक बालका ने दोष दिए जावा कि वो टेलीविजन और फोन देखा है,
1: जी
0: अपने बड़े बुजुर्ग तभी आप एक बात कहेंगे कि भी वो टेम है जिसमें कि वो बालका गला बैठ के टाइम लगा ले,
1: जी
0: बतला ले, कोई कहानी सुनानी है, कोई अपने पुरानी बात बतानी है, तो
1: जी
0: यह भी एक चीज है। इसको भी बड़े ने भी एक शुरुआत करनी पड़ेगी कि भाई फोन बालका का छुड़ाना है तो पहला अपन भी छोड़ना पड़ेगा।
1: बेशक, और अपने गांव का, अपने परिवार का इतिहास बता सका हाँ, अपने गांव की जो कोई उपलब्धियां या अपने जो भी
0: अपना बचपन भाई
1: हाँ बचपन है, स्वतंत्रता
0: बिल्कुल।
1: सेनानियों की कहानी हम सुना सका हाँ, हमारे स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बच्चों को बता सका, भी हमारी जो स्वतंत्रता आजादी किस प्रकार हमारे जो देशभक्त थे उन्होंने दिलाई, उनको एक कहानी के रूप में पिरो के अगर बच्चों को हम सुनावांगे तो कितनी मतलब एक छुट्टियों का आनंद भी आएगा, और हमारी जो एक इतिहास की जो समझ बच्चों को पैदा होगी वो अलग ही ज्ञान प्राप्त प्रदान करेगी।
0: और नहीं तो भाई देख, फिर आजकल फोटो देखा कि घर में कमरा में 6 बालक बैठे हैं, 4

0: के लाभानी एक प्रस्ताव आते आया करता,
1: बिल्कुल भाई,
0: वो प्रस्ताव आज भी प्रासंगिक है।
1: आज वो फोन पावर,
0: फोन पावर
1: की फोन के फायदे और नुकसान लिखो है।
0: तो इस चीज को हमने खुद समझना होगा, बच्चों को पुस्तकों का किताबें पढ़ने की आदत हमने डालनी पड़ेगी।
1: सही बात बताई भाई, ईप कहानियां की किताब पढ़ने का यो ही टेम है, बड़का दौर बड़ा दौर है।
0: बिल्कुल, तो बातचीत अपनी चलती रहोगी भाई। एक और गीत सुना देवा। हाँ।

0: नूर भाई, ये तो सुने बन भैया ने गीत
1: जी
0: और बातचीत सेहत स्वास्थ्य की अपन करने लग रहे थे। और
1: गांव की ग्रामीण प्रवेश की बदलते रीति रिवाज
0: हाँ,
1: हमारे आदतों के विषय में, तो भाई समझ गए होंगे कि भाई हमने क्यों पुरानी परंपराओं को आज दोबारा वापिस संजो कर रखने की आवश्यकता है, उनको लेके आने की आवश्यकता है, चाहे वो खान पान की है, चाहे हमारे रीति रिवाज की है, चाहे हमारे परिवार के संस्कारों की है। तमाम जो आदतें हैं हमारी ग्रामीण प्रवेश की, वो आज भी मतलब
0: उतनी
1: प्रासंगिक
0: ही
1: है।
0: बिल्कुल भाई, उतनी ही उपयोगी है और उनके बिना काम चालक होनी।
1: बिल्कुल
0: और वो जो बदलाव की अपन बात करें थे कि अपन ने अपने रूटीन में, अपने खान पीन में बदलाव करने की जरूरत का एक टाइम आ गया है भाई। अब तो बिल्कुल अलार्म अब बज गया है अपना,
1: जी,
0: है ना? तो नूर भाई, ये अपना भी अलार्म से बज गया, क्योंकि
1: अलार्म,
0: घड़ी कहने लग
1: हाँ
0: रही है कि रोटियां का टाइम हो रहा है।
1: ग्रह चालन का, और हमारे गांव समाप्त करने की नूरबाई ने,
0: और सुनीता बाण ने दे इजाजत। कार्यक्रम सुनने वाले सारे मन भैया ने राम
1: राम राम।
0: राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे गांव। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.3 MHz पर। आइए सुनते हैं हरियाणवी लोकमंच।

हरियाणवी लोकमंच कार्यक्रम सुन लिए सारे बण भाइया ने आजाद भाई की राम राम। रोटी पानी खा के भाई बाट देखने लाग रहे हैं कि गीत संगीत सुनने मिल जाता कि काम धंधा करके जो लोग बागाव हैं उनकी थकावट दूर हो जा। हमारी लोक सांस्कृतिक विरासत बहुत धनाढ्य है। हमारा गीत संगीत हमारी परंपराएं लोक सांस्कृतिक विरासत को जान के हम बहुत राजी हुआ कर रहे हैं। और भाई देखो समय का बदलाव है, बदलते समय के साथ हमारी परंपराएं भी बदलती जा रही है, हमारा गीत संगीत भी बदलता जा रहा है। एक वो टाइम था जब लोग बाग आपस में बैठ के बतलाया करते, आज भी बतलाव है जरूर।

नई प्योदे नई पीढ़ी अपने दादा दादी काके तावा के पास बैठ के किस्से कहानी सुने ताकि अपने पुराने इतिहास की जानकारी उन्हें मिले। लोक सांस्कृतिक विरासत की अगर बात करें उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो छूटती जा रही हैं, अब छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन उनका भी अपना महत्व हुआ करता। जैसे ही ब्याह शादी हुआ करती उसमें सोन सामण हुआ करते, नई नवेली बहु हुआ करती, अंडौले बंदरवाल लेके आ करती, न्यूबेरा पाठ जा करता, इस घर में छोरा इबे ब्याह है। जहां तक बात इंडौले और बंदरवाल की है, बंदरवाल बालनक आग लगाई जाए और इंडौला दड़जिया दरवाजे में बांधा जाया करता, और इंडोला बांधनी ने इंडोला बंधाई का नेग भी मिला करता, और बंदरवाल घर के दरवाजे का आगे लगाई जा करे। तो फिर आज के हरियाणवी लोक मंच कार्यक्रम में आपने विशेष कार्यक्रम सुनवाऊंगे हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक बंदरवाल। प्रस्तुति आजाद सिंह, प्रस्तुतकर्ता श्री पवन कुमार। ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सके हैं।

हरियाणवी लोक जीवन में बंदरवाल का खास महत्व आ करे। घर में खुशी के मौके पे बारण आगे बांधन के लिए फूल पत्ते धूप ते बनी माड़ा को बंदनवार या बंदरवाल के नाम से जाना जाए। बंदरवाल घर में खुशी की मौके पे संदेश वाहक माला के रूप में पहचानी जाए। इससे जुड़ी लोक जीवन में अनेक परंपराएं मारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आम अशोक पीपल नीम धूप फूल पत्तिया की रस्सी में बांध के घर के बालन आगे लटकाने की परंपरा का सीधा संबंध बंदरवाल से है। बंदरवाल को संस्कृत में वंदन माला भी कहा जाए, जिसका मतलब है दरवाजे पर लगाई जाने वाली वंदन माला। वंदनवार या बंदरवाल वाह माला जो घर के दरवाजे पे खुशी के मौके पर लटकाई जाए। बंदरवाल का सीधा संबंध हरियाणवी लोक सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा है। लोक जीवन में घर में जब नई नवेली बहू आया करे तो पूरे परिवार के लिए खुशी का मौका है। इस टाइम पे बहू घर में जब पहली बार आवे तो खुशी में घर के दरवाजे पे लगाने के लिए बंदरवाल लेके आ करे, जिसको बालना आगे लगा दिया जाए। ये परंपरा बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। कई जगह पे बंदनवार फूल पत्तियां कागज कपड़ा की साज सज्जा भी बनाई जाए।

बंदरवाल स्थानीय और उस जगह की संस्कृति की परिचायक होया करे। इसके साथ ही घर में सगाई, पीली चिट्ठी, लगन, बात, नौंदा, अर्धात, रात जगा, तेल चढ़ाना, कुआ पूजन, मांडा बांधना, ब्याह, बात, बढ़ार गीत, पलकाचार, बंधनवार, विदाई, रात जगे के गीत, देवताओं के गीत, सतगड़ा, खेल के गीत, छम के गीत, बच्चे का जन्म, ब्याह, मांडे के मौके पे घर में दरवाजे पे बंदरवाल बांधने का रिवाज रहा है।

इतनी खास बात है कि लोक जीवन में बंदरवाल को बनाने और सजाने का काम हमारी मातृशक्ति या माँ बहने कराया करें। लोक परंपराओं को बढ़ाने में हमारी मातृशक्ति हमारी माताओं बहनों का बहुत योगदान है। महिला जिस इलाके से है उसकी बंदरवाल में उसकी आंचलिक कलात्मकता दिखाई पड़े। पूरे भारत में खुशी के मौके पे बंदरवाल बांधने की परंपरा है। बंदरवाल दो डाल की आकर है, एक तो वह जो दरवाजे के ऊपरी हिस्से पे शामी लाई जा जिसमें पत्ती नुमा कटाई करके लगाई जाए, एक बंदरवाल वह भी वो है जिसमें दरवाजे के एक सिरे से दूसरे सिरे पे बांधी जा है। हरियाणा राजस्थान गुजरात की लोक कलात्मकता के कई रूप देखे जा सके हैं। कपड़े की कटाई गोटा पेमक फूल सितारे शीशे लाके बंदरवाल को बहुत सजाया जा है। लोक पारंपरिक दृष्टि से बंदरवाल हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोक गीता में बंदरवाल का बहुत जिक्र आ कर है। बंदरवाल बंधाई के बदले में नेक की परंपरा भी है जो कि लोक सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के टाइम में यह परंपरा अतीत का हिस्सा बनती जा रही है।

बंदरवाल घर की संस्कार कला लोक परंपरा समृद्धि का द्योतक है। इसते बेड़ा पाट जे की वहाँ की संस्कृति कितनी धनाढ्य है। कई स्थानों पर बंदरवाल के रूप में फसल की बाल लगाने की परंपरा है, जो किसान की समृद्धि का सूचक मानी जा है। इसने तोरण भी कहा करे।

लेकिन तोरण और बंदरवाल अलग अलग चीज हो आकर आज ग्रामीण महिलाओं का बंदरवाल परंपरा को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस डाल अपने ग्रामीण संस्कृति की ये लोक परंपराएं हमारी लोक सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। आज भी अपने पुराने इतिहास को जान के हमारे आने वाली पीढ़ी इन परंपराओं को आगे बढ़ाने का सतत प्रयास कर रहे हैं। हमारी माँ बहने आज भी कोई भी वाड़ा ब्याह शादी के मौके पे बंदरवाल बारनागे टांग्या कर रहे हैं।

ये सुना भाई आपने लोक सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बंदरवाल की बात कार्यक्रम आपने किसक लग गया। इस बारे में ठोस ठीक प्रतिक्रियाएं जरूर लिख दिया करें। इस पते पे कार्यक्रम हरियाणवी लोकमंच द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी एसआर पिन 125001 हमारा एक सतत प्रयास है कि लोक सांस्कृतिक पुरानी बातों को सहेज के रखें, बचा कर रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने स्वर्णिम इतिहास को जान के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और हमारी लोक सांस्कृतिक विरासत को बहुत अच्छे तरीके से सहेज के रखें। इसी के साथ आज का हरियाणवी लोकमंच कार्यक्रम समाप्त करने की अपने भाई आजाद दुवन ने दे अनुमति सारे बन भैया ने। राम राम।

0: कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा इसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये आवाज है भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। ये आवाज है भारत की आजादी की।
5: At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
4: ये आवाज है भारतीय संस्कृति की। ये आवाज है अनेकता में एकता की।
6: मिले सुर मेरा तुम्हारा।
4: ये आवाज है भारत के अदम्य साहस की।
7: At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range.
4: ये आवाज है नए भारत की। 90 वर्षों से भारत की आत्मा की आवाज, आकाशवाणी।
8: अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी लोकमंच। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम खुला आकाश में आइए सुनते हैं संगीत एक फिल्म से, और आज की फिल्म है 1942 अ लव स्टोरी।

कार्यक्रम खुला आकाश में भी आप सुन रहे थे संगीत एक फिल्म से, राज की फिल्म थी 1942 अ लव स्टोरी। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या के लिए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा।

0: भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गई और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
4: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
5: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
4: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने

दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉप हिल नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाले सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
2: 2-3 ब्रांचेस। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी

0: समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
1: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास एक रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुति कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं अर्थ फिल्म के गाने से, जिसे गाया है जगजीत सिंह ने। बोल कैफे आसमी के संगीत कुलदीप सिंह का।

0: प्यार की चुवन अपनेपन का गांव छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आहिस्ता आहिस्ता आप सुनिए इस फिल्म का गीत भूपिंदर की आवाज में। निदा फासली के लिखे इस गीत की धुन बनाई है खयाम ने।

फिल्म के संगीत निर्देशन में एक और गीत सुनिए बाजार फिल्म से। लता मंगेशकर और तलत अजीज ने इस गीत को गाया है। वो लिखे हैं मखदूम।

0: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
1: कहीं बे ख्याल हो कहीं वही चूलिया किसी ने।
0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल, सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

अभी आपने लता मंगेशकर का गायन निवास फिल्म का गीत सुना। बोल गुलजार के थे संगीत आर डी बर्मन का। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, तो ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर।

0: राजू।
1: राज कपूर की शुरुआती फिल्मों में से ज्यादातर फिल्मों में उनका स्क्रीन नेम राजू यही रहा है या राज रहा है, लेकिन इनके माता पिता ने इनका नाम रखा रणवीर राज कपूर। 14 दिसंबर 1924 को खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान के पेशावर शहर में इनका जन्म हुआ, पृथ्वीराज कपूर के घर में। पृथ्वीराज कपूर पहले से ही थिएटर से जुड़े हुए थे, आगे चलकर उन्होंने फिल्मों में भी अपनी एक अलग जगह बनाई और ऐसा ही कुछ करना चाहते थे राज कपूर। जब बड़े हुए तो उनका ध्यान फिल्मों में ज्यादा लगता था। कुछ लोगों का कहना है कि उस समय राज कपूर को देखकर पृथ्वीराज जी अक्सर कहा करते थे कि राज जीवन में कुछ

राज कपूर का ज्यादातर वक्त फिल्मों के इर्द गिर्द ही घूमता। अब ये सब देखकर पृथ्वीराज जी, जिन्हें की पापा जी कहा जाता था, उन्होंने उस दौर के सफल निर्देशक केदार शर्मा जी से मुलाकात की और कहा कि भाई राज बहुत कुछ कर नहीं रहा है और मुझे इसकी बड़ी चिंता है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास भेज दीजिए, देखता हूं क्या कर सकता हूं मैं उसके लिए। इस तरह से राज कपूर साहब केदार शर्मा साहब के पास पहुंच गए और उन्होंने उन्हें अपना सहायक बनाकर

लिया और वहां शुरुआती जो उनका काम था वो क्लैब दिया करते थे केदार शर्मा जी के प्रोडक्शन में। यहां से उनकी जिंदगी की जो शुरुआत है यानी करियर की जो शुरुआत है एक तरह से कही जा सकती है। लेकिन फिल्मों के काम में जिस तरह से राज कपूर ने मन लगाकर काम करना शुरू किया ये देखने के बाद पृथ्वीराज जी थोड़े अचंभित हुए और फिर उन्होंने अपने किसी जानने वाले से ये कहा था कि राज फिल्मी दुनिया में बहुत शानदार काम करेगा। ये बात अलग है कि आज केदार शर्मा ने उसे मेरा बेटा होने के कारण काम दिया है, लेकिन एक दिन राज को पृथ्वीराज का बेटा नहीं बल्कि पृथ्वीराज को राज कपूर का पिता होने के कारण जाना जाएगा। ऐसी दीवानगी है फिल्मों को लेकर।

0: रहे।
1: राज कपूर सहायक के रूप में काम कर रहे थे निर्देशक केदार शर्मा के साथ, और केदार शर्मा ने एक दिन, बल्कि क्या अक्सर वो इस बात पर गौर किया करते थे कि राज कपूर जो हैं वो हमेशा आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारा करते हैं या अपने आप को अलग अलग एंगल से देखा करते हैं, और उनसे बातचीत और उनके विचारों के जरिए भी केदार शर्मा ने ये महसूस किया कि इस लड़के में एक्टर बनने के गुण ज्यादा हैं, और बस उनको समझ में आ गया कि ये लड़का एक अच्छा अभिनेता बन सकता है। बस फिर क्या था, 1947 में केदार शर्मा ने राज कपूर को हीरो लेकर फिल्म बना दी नीलकमल। फिल्म नीलकमल में राज कपूर के साथ हीरोइन थी मधुबाला, और यह सच्चाई तो पूरी दुनिया जानती है कि इन दोनों ही कलाकारों ने आगे जाकर हिंदी सिने संसार पर राज किया। आज भी राज कपूर और मधुबाला के बिना हिंदी फिल्मों के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहरहाल फिल्मों में राज कपूर की जो पारी 1947 में शुरू हुई बतौर नायक, वो कहीं ना कहीं राज कपूर के लिए भी सिर्फ एक स्टार्टिंग वाली बात थी। उनको तो पता था कि उन्हें आगे जाकर

बहुत कुछ करना है और इसकी शुरुआत 1948 में ही उन्होंने कर दी। उन्होंने बतौर निर्माता, निर्देशक और हीरो फिल्म पेश कर दी आग।

फिल्म आग कई कारणों से विवादग्रस्त रही और राज कपूर की अपनी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं कर सकी। लेकिन राज कपूर घबराए नहीं, 1949 में वो लेकर आ गए आग की सारी तपिश बुझाने के लिए बरसात।

बरसात अपने साथ साथ सफलता का सैलाब लेकर आई और इसी के साथ राज कपूर की एक नई टीम बनी, संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसर जयपुरी और शैलेंद्र, और ये फिल्म लिखी थी रामानंद सागर ने, जो आगे जाकर बहुत बड़े निर्माता निर्देशक बने। तो फिल्म बरसात रामानंद सागर ने लिखी थी और इस फिल्म की नायिका भी नई थी निम्मी, और कैमरामैन राधु कर्मरकर। राधु कर्मरकर ये वही कैमरामैन है जो आगे जाकर जिस देश में गंगा बहती है फिल्म के निर्देशक बने। इसके प्रोड्यूसर भी राज कपूर ही थे। तो मैं बात कर रहा था फिल्म बरसात की। बरसात में सिर्फ अदाकारी और कहानी ही नहीं, उसका संगीत भी इतना बेहतरीन था, आज भी यूं लगता है जैसे बारिश की बूंदें टप टप टप गिर रही हों, इतना तरोताजा बरसात का संगीत उस समय भी था और आज भी है।

अब बात 1950 की। 1950 में राज कपूर की 6 फिल्में आईं और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि 6 फिल्में एक साल में राज कपूर की 1950 के बाद फिर कभी नहीं आईं। बहरहाल इन 6 फिल्मों में नरगिस, गीता बाली, सुरैया, निम्मी और रेहाना थी। जान पहचान, प्यार, दास्तान, भंवरा, सरगम और बांवरे ने

पीछे की 6 फिल्में सुपरहिट फिल्में रहीं और इन फिल्मों के सुपरहिट होने के कारण उस समय के जो दिग्गज निर्माता निर्देशक थे महबूब खान, केदार शर्मा, नितिन बोस, बिमल रॉय, महेश कौल, वी शांताराम, इन सबको कहीं ना कहीं ये लगता था कि हमारी टक्कर में कोई आ गया है। लेकिन फिर भी राज कपूर ने अभी वो मायार हासिल नहीं किया था, वो ऐसा खुद समझते थे और उनको लगता था कि मुझे अभी एक ऐसी फिल्म तो जरूर बनानी है कि मैं इनकी श्रेणी में जाकर खड़ा हो जाऊं। और शायद उन्हें इंतजार था

इस फिल्म आवारा की लोकप्रियता ने राज कपूर को देश ही नहीं विदेशों में लोकप्रिय कर दिया। भारतीय फिल्म संगीत देश की सीमाओं को लांघकर गूंजने लगा और आज भी कई देशों में ये फिल्म

अपनी पहचान बनाए हुए हैं। अब बात 1952 की। बतौर नायक राज कपूर की 4 फिल्में इस साल रिलीज हुई, अंबर, अनहोनी, बेवफा और आशियाना। और इन चारों ही फिल्मों में उनके साथ थी नरगिस,

अगला साल राज कपूर के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, या ये कह लें कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। 1953 में राज कपूर की तीन फिल्में आईं, धुन, पापी और आह।

की बेहद सफल हो सकती थी वाली फिल्म थी, क्योंकि आ फिल्म में ऐसी हर वो बात थी जो एक फिल्म की सफलता की गारंटी बन सकती थी, जो एक फिल्म को सफलता की सीढ़ियों पर ले जा सकती थी। लेकिन बावजूद उसके ये फिल्म राज कपूर के लिए एक आ ही साबित हुई।

राज कपूर जैसी शख्सियत के बारे में सिर्फ एक ही कार्यक्रम में सब कुछ कह देना या बता देना कितना मुश्किल हो सकता है, ये तो आप भी समझ सकते हैं।

हमारी फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा शोमैन अपने हिस्से का किरदार निभाकर 2 जून 1988 को इस दुनिया के रंगमंच से विदा हो गया, लेकिन सबको सिखा गया शो मस्ट गो ऑन।

हो न हो घर भी तारे रहेंगे सदा। वो लोग तुम

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम। राज कपूर साहब पर हमने कुछ बातचीत की। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से। स्वर शोध और आलेख अमरकांत का और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। फिलहाल नमस्ते।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे। यदि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो उठाइए फोन और हमें मैसेज कीजिए, भेजिए अपना संदेश। हमारा नंबर है 9729253272। ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से सुधाकर जाधे, राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचित, प्रथमेश प्रणाली, सर्वद और सानवी ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा है गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा हैं भेजने वाले। नलेश्वर नगर नवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, सोपान तायडे, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहेकर ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हमारे पास आया है गांव चूली देशवाली जिला हिसार।

से मास्टर ओम प्रकाश, दरौली से रघुबीर, मास्टर विनोद जाखड़, मास्टर इंद्र मोहन शर्मा और राम निवास जी का। एक और मैसेज हमारे पास पहुंचा है मजनू का टीला से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक हैं इस मैसेज को भेजने वाले। कुली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओम प्रकाश, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़ भी जुड़े हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय भी जुड़े हैं हमारे साथ। गांव फांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा है कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से मास्टर सैयद मसरू, शायना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब हसन हैं इसे भेजने वाले। बागपत उत्तर प्रदेश से ममता ढेंगिया और कुणाल ढेंगिया ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हम तक पहुंचा है रेंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा हैं भेजने वाले। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराई और मेहराज जहां जुड़ गए हमारे साथ आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, यश प्रियान, शिवम, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा ने भी हमें मैसेज किया है। एक और मैसेज लेंगे अगले गाने से पहले, जो कि हमें भेजा है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने। आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

आकाशवाणी हिसार से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश, आपके गीत हमारे। यदि आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9729253272। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चनाताई गोंडा ने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडा ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तनवी बोट का, एकता कॉलोनी रोहतक से, पटियाली रोड गंज रुंडवाड़ा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाज कुरैशी, आकिल कुरैशी और बेबी अरीबा हबीबा ने हमें मैसेज भेजा है। जमशेदपुर झारखंड सुपाही साही गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवेन जी ने मैसेज भेजा है हमें। मनदीप सिंह, नसीब, मीनू, शगुन, बबलू और विनी घोलू खड़क कुनिया से सुन रहे हैं हमें। अगला मैसेज हमारे पास आया है सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, फाजल का पंजाब से ये हमें भेजे हैं मैसेज। शर्मा कॉलोनी जीन से मीनू, अक्षिता, रक्षित, आरव और अंकित परिवार सहित हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा है जो कि हमें भेजा है व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल हैं इस मैसेज को भेजने वाले। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक ने हमें मैसेज भेजा है। आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश, आपके गीत हमारे आकाशवाणी हिसार FM 102.3 MHz पर। यदि आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं इस कार्यक्रम का तो उठाइए फोन, हमें मैसेज कीजिए। हमारा नंबर है 9729253272। मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और कलीम अंसारी का मैसेज हमारे पास पहुंचा है। अगला मैसेज हमारे पास आया है गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश कड़वासरा, योगेश कड़वासरा व युद्धव कड़वासरा हैं इस मैसेज को लिखने वाले। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मनीष पंवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा ने भी हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज आया है हमारे पास रेनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा है इस मैसेज को लिखने वाले। पद्मा टॉकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने मैसेज भेजा है। चक 15 है PS जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से सरबजीत सिंह जोसन, सरबजीत कौर जोसन, गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जोसन और वैंकूवर कनाडा से रॉबिन सिंह जोसन ने भी हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हमारे पास आया है संभाजी चौक सिरकुंडी नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति गायकवाड़, आशा दीपांजलि दीक्षा वाघमारे और शशांक वाघमारे बोल रहे हैं कि हम न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपको सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप भी हमारे से दूर हैं, किसी और देश में हैं, किसी और प्रदेश में हैं, तो हमें सुनना बड़ा आसान है। आप न्यूज ऑन AIR पर हमें सुन सकते हैं। ये आपको ऐप मिल जाएगी प्ले स्टोर पर। यदि वहां से आप नहीं सुन पा रहे हमें तो सिंपल आप गूगल पर सर्च कीजिए 102.3 FM हिसार, आकाशवाणी हिसार, तो भी आप हमें ढूंढ सकते हैं और हमारे प्रोग्राम आप सुन सकते हैं इस पूरे दुनिया में कहीं बैठ करके। मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजा रानी और हिना कौसर ने हमें मैसेज भेजा है मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से। और एक और मैसेज लेंगे अगले गाने से पहले, जो कि आया है गांव लोहगढ़ ठाकुरवाड़ा से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अभिराज सिंह। आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश। आपके गीत हमारे आकाशवाणी हिसार FM 102.3 MHz पर। मैं हूँ आनंद और हमारा नंबर है 97-292-53-272। आप भी हमें इस नंबर पर मैसेज भेजकर अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पास मैसेज आया है वेदपाल में मंदेरना का, VPO दरौली हिसार से। अगला मैसेज हमारे पास आया है वरुणखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली आरती अरोड़ा ने भेजा है। गांव घमरिया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया, प्रमिला ढुकिया, सरिता ज्योति, तमन्ना, सचिन, विष्णु शिवम और एवा धारणिया ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हमारे पास आया है जो कि भेजा है रघुनाथपुरा जिला गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी है इस मैसेज को भेजने वाले। अगला मैसेज हमारे पास आया है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, JS नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार इस वक्त हमें सुन रहे हैं। शिवांश चौधरी और विश्वास हमारे साथ जुड़े हैं बाल समंद से। और एक और मैसेज हमारे पास पहुंचा है मुंदीचक भागलपुर से, दिलीप कुमार सोनी हैं इसको भेजने वाले। नई बस्ती गंज डुंडवाड़ा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, तैमूर और मोहम्मद कलीम ने मैसेज भेजा है हमें। पांढरकवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे भी जुड़े हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश, आपके गीत हमारे, मेरे यानी आन के साथ आकाशवाणी हिसार एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यदि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो उठाइए फोन, हमें मैसेज कीजिए। हमारा नंबर है 9729253272। मैसेज वहां तक पहुंचा है दाऊद सराय सहारनपुर से, अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी का। अगला मैसेज हमारे पास आया है जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो हैं हमें मैसेज भेजने वाले। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर शिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता ने हमें मैसेज किया है। और अगला मैसेज हम तक जो पहुंचा है वो पहुंचा है पतौड़ा से मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल और उनका पूरा परिवार। हिंदुस्तान रेडियो मित्र टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा ने भी हमें मैसेज भेजा है। यदि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो उठाइए फोन और मैसेज भेजिए हमें। हमारा नंबर है

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर मेरे यानी आनंद के साथ। यदि आप भी बनना चाहते हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा तो उठाइए फोन और हमें मैसेज कीजिए 9729253272 पर। महमद रजा ईता से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हमारे पास आया है महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और दर्श राजपूत ने भेजा ये मैसेज। गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमरजीत कौर ने भी मैसेज भेजा है। जयराद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया निशानी और निमित आहूजा ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हम तक पहुंचा है अग्रोहा से महेंद्र सिंह हुडा, दयावंती हुडा, नरेंद्र हुडा, अंकिता हुडा, सुमु और तानिया हुडा का। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। तो उससे पहले एक और मैसेज आ गया है पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू हैं भेजने वाले। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, लगावली जरा मुरादाबाद से और दादरी के भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा ने हमें मैसेज भेजा है। तो आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश, आपके गीत हमारे आकाशवाणी हिसार FM 102.3 MHz पर। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होना तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9729253272, यानी 9792253272। शिवाजी नगर वड़ाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिव सागर इंदिराबाई खोबरखेड़े, शकुली ताई खोबरखेड़े, खानवी बुल्ढाणा से दीपाली राम धाड़े, स्वराज राम धाड़े, थिलोरी अमरावती से सुनैना तनुजर तनुज पवन ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हमारे पास आया है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान और पूरा अब्बासी परिवार जो है वो जुड़ा है हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम में। तहसील रोड गंज डुंडवा से KH रही गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी और हम्माद जमील ने हमें मैसेज भेजा है। कुलदीप, असीन, सुमित, अक्षित, अंश, अंशिका, सौरभ, यश और सारा परिवार नहरा

फतेह आवाज से इस वक्त हमारे साथ है। एक और मैसेज आया है संबलपुर कांकेर से, फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव हैं भेजने वाले। सब्जी मंडी बुल्डाना से शब्बीर हुसैन, शहनवाज हुसैन, मुज्जू बाबा और आयजा अनम मुदस्सिर हुसैन ने हमें मैसेज भेजा है। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

और आइए चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ, जिसके लिए हमें मैसेज भेजा है भोपाल का राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार, उनके साथ ही हैं नर्मदा पार्क मंगल बेढ़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, सीकर राजस्थान से दादा सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत ने मैसेज भेजा है, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा, बाबा साहेब करवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय और पी बी कुलथे, पदमपुर जिला गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका

अरोड़ा ने भी हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से, विनोदपुरी, वीपी, रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाश, नीलम, रमा, पाली, सुनील और वीकेपुरी ने हमें मैसेज भेजा है। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी, शालिनी, टिवांशी खेड़ा और पूरा खेड़ा परिवार हमारे साथ है। इस वक्त फौजियों के गांव बानाहेड़ी, जिला हिसार से जगदीश चंद्र जांगरा, कृष्ण, सतबीर और मुबारक ने भी मैसेज भेजा है हमें। अगला मैसेज हमारे पास आया है आदर्श नगर।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे आकाशवाणी हिसार एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर मेरे यानी आनंद के साथ। कैसा लगा आपके प्रोग्राम? आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं। नंबर हमारा वही है 972922।

आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 11 बजने को है। अब समाचार होंगे, अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिडी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर रात्रि के 11 बजने को है। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार के निरंतर

0: वियर्स। चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, ना सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
1: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर बेहतर बनाने की, उन्नत दिशा में ले जाने में एक अहम रोल अदा किया है कहा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर, कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों, कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्व, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी और या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग, मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना पाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का एक नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हार्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हार्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं, इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के, चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे, जिनके पास जमीन थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं। इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं, और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारी से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खोल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है, फिशरी में गांव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया। उसमें जब पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे, और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहाँ बेचेगा वो, एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है। तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया, और उसकी चेन इतनी है कि गांव का, हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े ना हो। जी
0: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज यू नो आउटलाइंड सो ब्यूटीफुली दैट व्हाट हैज बीन द बेसिक चेंज इन द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द स्टेबिलिटी एंड द मोमेंटम दैट वी हैव सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इवन इन द डिफिकल्ट How do you see the approach of the government? What, according to you, have been the, you know, major areas where the government you feel has you know, hit the bullseye, and which is why we are seeing this buoyancy in our agriculture sector?
2: Yeah, you know, for over a decade, you know, government of India under Prime Minister Modi ji's direction, you know, has placed agriculture at the heart of a vision. Viksit Bharat, agriculture is at the core of it.

0: And that is why over the last 10 years, you have seen several schemes that have been launched, several projects. They are so interconnected, which ensures there is latest research also plays a part, technology plays a part,
1: Yes.
0: and farmers are empowered to ensure productivity and also their livelihoods become sustainable. Come on, farmers. So whatever ideas you have seen in the last 10 years has been directed at that. And as recently, just a few days ago, we saw the Prime Minister giving a clarion call that if India's economy is going to reach the third largest economy, that
1: Yes.
0: India should be Annadata for the entire world. See,
1: Yes.
0: that is a kind of concept, that is a kind of imaginative vision with which this government is approaching agriculture. Yes, our farmers have been handheld. उनको मदद किया गया है, उनको हाथ पकड़ के खड़े होने के लिए जो भी साधन की जरूरत है वो सारी चीजें भी देते हुए भविष्य को भारत कृषि क्षेत्र में हाउ इट विल गो अहेड एंड हाउ इट विल बिकम द प्रोवाइडर फॉर द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज बिहाइंड इट. सो इन दिस ड्रीम, यू नो, टू सी दैट द रूरल इंडिया ट्रांसफॉर्म्स, यू हैव सीन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इनटू अकाउंट ऑल द न्यू प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग लाइक क्लाइमेट चेंज, सेटिंग अप ऑफ वेयर हाउसेस, सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेजेस एंड ऑल्सो रनिंग ग्रीन रेंज, यू नो,
1: यस
0: प्रोड्यूस फ्रॉम वन रीजन इज इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड टू द लार्ज मार्केट. सो टूडे इफ यू आर सीइंग कर्नाटका टोमेटोज बींग अवेलेबल इन डेली, नासिक ऑनियंस आर मूविंग टू बॉम्बे एंड टू साउथ, दैट दिस होल थिंग दैट एंटायर इंडिया बींग वन मार्केट सो दैट आवर
1: यस
0: फार्मर्स गेट अ बेटर प्राइस हैज बीन इज जस्ट वन इंडिकेशन हाउ थिंग्स आर मूविंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, you have also seen there are several other things which this government has done, which is, you know, looking at direct income support. For
1: राइट
0: instance, the PM Kisan, then there is a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, you know, to provide a safety net for the crop loss against natural disasters. Because somewhere other you have a cyclone or a flood or, you know, something or the other happens for which our farmer is not prepared. Then credit access, the Kisan credit card, you know, that
1: यस
0: is also a big thing to provide short term and long term credit. Apart from that, you have also seen in this budget initiative has been where, you know, like a PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, so
1: यस
0: that, you know, it focuses on low productivity districts,
1: यस
0: focus on that. Then also the overall thing is, you know, mission for Atmanirbharta in
1: यस
0: pulses, which is the new area, the thrust area to see that we don't have to depend. And lastly, I must add, the Prime Minister has also brought focus to natural farming so
1: राइट
0: that the future is natural farming. We can have chemical-free agriculture. And towards that goal, seeing a lot of steps being taken of late.
1: यस मिस्टर सिंह, जैसा कि मिस्टर अय्यर ने कहा कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, अलग अलग जो स्टेज होती है एक एग्रीकल्चर इनपुट्स की, उसकी बात करें तो उसमें क्वालिटी इनपुट्स अफोर्डेबल रेट्स पर मुहैया कराना, इस पर जो प्रमुख कार्य किया गया है उसको अगर आप सटीक रूप में हमें बता सकें।
2: खेती में इनपुट की लागत को घटाना और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है। तभी फायदा होगा जब इनपुट कॉस्ट घटेगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी मूल्य लाभकारी मूल्य मिलेगा। उसके लिए सबसे दो दो हिस्सों में बांट के देखा जाए तो खेती के लिए जरूरी होती है मिट्टी, खाद, पानी, बीज और किसान, लेबर, ये और पैसा।
1: जी
2: तो इन सब चीजों का कैसे किया, मिट्टी की सबसे पहले सेहत जांची गई, सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है। जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था।
1: जी
2: लगभग
1: बात
2: सभी किसानों के करा
1: जी
2: दिया गया। उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है ताकि इससे ये पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए।
1: जी
2: दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का। हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही। तो आखिर कहां से खाद की उपलब्धता कहां से आ गई? ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी। उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे बचा। तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई। सिंचाई के हिसाब से देखे तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता है, पंप होता है या नहरों से जाता है, वो सिंचाई के काम में आता है। लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी। और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी। माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है, जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी। फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी, बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है। चौथा था बीज, बेहतर सीड। अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, बीज नहीं उपयोग करते हैं तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया, और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी। कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं। ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए, और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों का असर कम से कम हो या न्यूनतम हो, ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से, वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल जाता है,
1: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल
2: जाता है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन में। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता, किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी और 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को, उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने, इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की, एक तरह से आज से नहीं, बहुत लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही,
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य,
2: न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश यह होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उस MSP के का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपए क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपया मिलता है तो किसान 2700 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर, मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। ये सरकार ने बहुत बेहतर
1: बिल्कुल सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है. मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो. सो हाउ फॉर यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म्स, दे हैव इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर इंडियाज फार्म टू मार्केट स्ट्रेटजी and have been successful.
0: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price.
1: Right.
0: And after that, at the time of harvest, he needs some financial help to take care of the expenditures. Then after the produce is harvested, he needs a market and a good price that will, that will take care of his cost as well as give him some towards his end, what that he revised. Keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan Committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsap was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, with the e-NAM, and along with that, now the lot of attention is being given for storage facilities. See, the biggest problem is when the prices, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. Yes. So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore, particularly to take into account this particular problem.
1: Yes.
0: Because today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity.
1: Yes.
0: So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of cold storage chains in everywhere.
1: Yes.
0: Because invariably when you hear stories of farmer in distress because the production, like for instance a crop like onion or a crop like cotton. Or even a crop like even tomatoes. See, what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government thrust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, caused by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
1: Yes. कमिंग टू यू मिस्टर सिंह, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 हुआ है, और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं, डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनका क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही हैं?
2: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था. इस सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय. जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो और किसान जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, या शुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा. सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है. दुनिया का आज की तारीख में हम 25% केले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में. जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया. तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और यह पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है. इसकी ग्रोथ बहुत तेज है. डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं. 2-4-5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है. कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट. आप समझिए कि हमें लगता है कि 60-70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है, और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पे मिलता है. किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है और उसकी खेती हो जाती है। जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं। हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए

0: छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25 से 28 हजार रुपया, या मैक्सिमम मान लिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में। कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कारपोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, एनसीडीसी बोलते हैं उसका। आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। और पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25 और 30 हजार करोड़ पर टिकी रही।
1: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
0: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी पैक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने सबको केसीसी दे रखा है। आपने जो कहा ना कि सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि केसीसी आपके हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और कि जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानती ही नहीं थी, उनके उनके किसी किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं, या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी केसीसी का आज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको
1: जी
0: पैसा मिल जाता है। इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, कैन यू टेल अस दैट दिस गवर्नमेंट हैज ऑलवेज हैड एन इंक्लूसिव अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट इन एनी एंड एवरी सेक्टर। सो इफ यू टॉक अबाउट द वल्नरेबल सेक्शन, द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऑफकोर्स यू मेंशन द पीएम किसान सम्मान निधि योजना, द वेरी वर्ड सम्मान इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स। देन द फसल बीमा योजना यू टॉक अबाउट, किसान मानधन योजना इज गिविंग पेंशन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म। Also, another very interesting and enlightening statistic is that 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC categories. And of course, you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take the backward area?
2: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak. And this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final produce. In that, whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and irrigation. Now, the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart.
1: Yes.
2: See, apart from major irrigation projects, because the underlying every drop that is being, you know, water, that the productivity must go up, which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requires, you know, all the ministries of the government along with the state governments, they have to work hand in hand to ensure farmers. You mentioned about tribal farmers, they have a problem of their own, a very unique problem that is also being tackled in a different way, particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year, there are places that do not receive rainfall at all. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected. And our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention. Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture productivity. Now, these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticides, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops. You know, where the this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
1: Absolutely. So Mr. Singh, jaisa inhone kaha, Mr. Iyer, उसको भी एक्सपोर्ट करें। हम ऑलरेडी एक्सपोर्टर, मेजर एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर बन गए हैं 2014 से देखें तो 37% बढ़े हैं हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, $51 बिलियन हो गए हैं। और इसमें जो प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स हैं उनका शेयर भी बढ़कर 20% को पार कर गया है। सो एक शिफ्ट है टुवर्ड्स हायर वैल्यू एडेड, सो एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है फूड प्रोसेसिंग की तरफ। फूड भी आया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, इसके बारे में आप हमें थोड़ी बता सकते हैं जो वैल्यू एडेड और फूड प्रोसेसिंग है इस पर बल दिया जाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है?
0: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रॉ फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा। हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है। अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी। इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है, अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा। तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से हमें लगता है 201 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है। यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है। इस सरकार का फोकस पूरा रहा है खासतौर से प्रधान मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा। कोई भी चीज टमाटर के तौर से, टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है, लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर। तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है। और जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं।
1: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक, और जो PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है, और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है जिसमें 4 लाख से अधिक एप्लीकेशंस के माध्यम से 1,70,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है। सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
0: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था और उस फंड का अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा। और अब समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो ये ना आपने बताया मत्स्य संपदा हो चाहे फूड संपदा हो, जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं सब उसका पार्ट है। और कंज्यूमर को फायदा और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, इम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड अ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज कोस्टल रीजन्स एंड अगर ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट एंड आलमंड्स वॉलनट्स एंड पाइन नट्स इन हिली एरियाज, this kind of very focused approach that the government is taking, looking at the very vast and varied geography of India, that is the way to go forward using the strengths of the opportunity?
2: No, you have raised a very, very important dimension to the government's priority. Particularly, yes. You talked of the need for going for high-value crops. You know, in fact, the Prime Minister, soon after the last budget, you know, he specifically addressed a webinar where he spoke about this and he appealed to the farmers to take care of this diverse climatic condition and focus on scaling up the harvest of these high-value crops. Yes. And some of the crops you mentioned. Because today, as the Prime Minister looks at the possibility of Indian farmers getting great access to world market, it is important to take care of quality.

0: to take care of branding and standards of our produce. This is very, very important. And for that, you know, agriculture experts, industry, and farmers will have to jointly work towards this goal, which is actually the thrust area. Because as the markets of the world are opening, as the Prime Minister himself put it, and global demand is changing, so we need to see that how we are more export-oriented in our production. That is very, very important, because we have a rich agroclimatic, you know, zones. That is why, you know, Prime Minister particularly mentioned, you know, ancient cashew, cocoa, sandalwood, and this national mission on edible oil and pulses. And this objective.
1: Thank you so much, Mr. Iyer. We are running out of time. Thank you so much, Mr. Singh, for this in-depth discussion on the various aspects of the progress in agriculture and farmers' welfare that has taken place in the last 12 years of the NDA government and the way forward. Thank you.
0: Thank you very much.
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: इन द स्पेशल सीरीज यू वर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट Empowering farmers through welfare and farmer-centric policies. The participants were Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
4: सरकार के 12 वर्ष ये विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:45 हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा संपन्न होती है। हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा में कल सुबह 5:55 आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।